मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। आज दिन है बुधवार, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 सितंबर सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:55 और 48 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की ये पहली सभा।

सुबह की पावन बेला और चिड़ियों के चहक के साथ आइए करते हैं दिन की शुरुआत। तो नमस्कार, लखनऊ में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करता है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए आइए रुख करते हैं

0: आकाशवाणी दिल्ली की ओर, जहां से अब से बस थोड़ी ही देर बाद यानी कि 6 बजे से रिले किया जाएगा हिंदी समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, चाहे दी गई राशि कितनी भी हो। वित्त मंत्रालय ने कहा गया है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर ढांचे के तहत आने वाले लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपये तक के किए जाने वाले भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में एक शताब्दी सेवा के 100 कार्यों में आरएसएस नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल डॉ तमिलिसाई सौंदरराजन ने लिखी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि यह पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी भर की सेवा, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की सेवा पहल गरीबों, हाशियों पर पड़े लोगों और समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंची है, जिनमें श्रमिक, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने की घोषणा की है। यह निर्णय कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में दिया गया। उन्होंने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवाएं जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण कल उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह औली परीक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। यह अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन व्यवस्था को मजबूत करना, उभरती चुनौतियों का समाधान करना और द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर इससे मध्य और दक्षिण अमेरिका की रूढ़िवादी विचारधारा वाली सरकारों को देने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के विदेश विभाग ने संसद को बताया कि स्लोवाकिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता को पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को देने पर विचार किया जाएगा। विदेश विभाग के अनुसार इस धनराशि का प्रयोग अमेरिका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। सुरक्षा बलों का संयुक्त दल खोज और बचाव अभियान चला रहा है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। क्रिकेट में भारत ने कल दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का

0: तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, सुबह के 6:05 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। इसमें आज सहजन की उन्नत खेती विषय पर जानकारी दे रहे हैं रविंद्र कुमार द्विवेदी और आपसे इस विषय पर भेंट कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां सहजन उत्पादन करना चाहते हैं तो इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं IFFDC लखनऊ से उप परियोजना प्रबंधक RK द्विवेदी साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। द्विवेदी साहब, ये बताएं कि जहां सहजन उत्पादन करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो क्या सलाह है आपकी?
3: किसान भाइयों बहनों नमस्कार। सहजन भारतीय मूल का पौधा है जो पोषण युक्त आहार के लिए बेहतरीन माना गया है। इसमें पोषक तत्व और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और एक अध्ययन के मुताबिक इसमें दूध की तुलना में 4 गुना पोटेशियम और संतरे की तुलना में इसमें 7 गुना विटामिन सी पाया जाता है और अन्य पोषक तत्व तो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस कारण से इसको एक पोषण ट्री नाम से जाना जाता है,
2: यानी चमत्कारी पौधा।
3: चमत्कारी पौधा बिल्कुल कह सकते हैं। और ये 300 से अधिक बीमारियों में इसका प्रयोग भी होता है, इसलिए इसकी खेती करना किसान भाइयों के लिए, खासतौर से पोषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है
2: और फायदेमंद भी।
3: बिल्कुल, बहुत ही फायदेमंद है। खेती से एक अच्छी खासी आमदनी भी हो सकती है, पोषण भी हो सकता है।
2: तो इसके लिए मिट्टी कैसी हो, खेत कैसा हो?
3: जैसा किसान भाइयों, इसके नाम में सहज शब्द जुड़ा है तो इसकी खेती करना बहुत ही सहज है। आमतौर पर अगर बलुई दोमट मिट्टी हो तो इसकी खेती और अच्छी तरीके से की जा सकती है। सामान्य तौर पे ये किसी भी प्रकार की मिट्टी में हो सकता है और यहाँ तक कि ये क्षारीय मृदा में भी इसकी खेती हो सकती है। जहाँ पे 6 से 8 तक का pH होता है तो वहाँ पर भी इसकी खेती बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकती है,
2: बस जल निकास का प्रबंध अच्छा हो।
3: बिल्कुल, इसकी जो जड़ें हैं वो थोड़ा सा जलगड़न नामक बीमारी से प्रभावित होती हैं, इसलिए जल निकास का उचित प्रबंध होना आवश्यक है।
2: अब ये बताएं कि प्रजातियां कौन कौन सी हैं, क्योंकि जो पारंपरिक प्रजातियां हैं उनसे हट के आजकल व्यावसायिक खेती के लिए कुछ अच्छी प्रजातियां भी आ गई हैं।
3: भारतीय मूल का पौधा है तो ये बहुतायत में एक जंगली रूप में भी बहुत सारी जगहों पर पाया जाता है, लेकिन उन्नत खेती के लिए इसकी बहुत सारी प्रजातियां विकसित की गई हैं, जिनमें PKM1, PKM2 और ODC नाम से जो है 2-3 वैरायटी हैं। ODC 1, ODC 2, ODC 3, कोयम्बटूर नाम से भी वैरायटी है। UP में ज्योति वन भी काफी प्रचलित है, लेकिन इन सब वैरायटी में अगर सबसे बेहतर विकल्प चुनना हो किसान भाइयों को तो PKM1 नाम की वैरायटी को आप चुन सकते हैं।
2: और ये 12 मासी भी है?
3: बिल्कुल, ये साल के अंदर ही फल देना शुरू कर देती है और 2 बार जो है फल देती है।
2: तो इसकी पहले नर्सरी करनी होगी द्विवेदी जी?
3: बिल्कुल, इसकी नर्सरी करनी होगी। गड्ढे में हम इसकी नर्सरी कर सकते हैं या पॉलीथीन में भी हम इसकी नर्सरी कर सकते हैं
2: जी।
3: और प्रति थैली कोशिश करें कि हम 2 बीज डालें, इसलिए 2 बीज कि अगर 1 बीज कहीं ना जमा तो दूसरा बीज तो जमेगा ही, इसलिए हम इसकी नर्सरी करने की सलाह देते हैं। दूसरा, गड्ढे में अगर हम करते हैं तो 3x3 मीटर की दूरी पर
2: गड्ढे में सीधी बुआई,
3: गड्ढे में भी सीधी बुआई कर देते हैं। और जब पौधा करीब 1.5 फीट 2 फीट का हो जाता है तो एक बार उसकी हम छटाई कर देते हैं, जिससे उसमें और शाखाएं निकल जाती हैं और फिर उसको हम जो कहते हैं उसमें तैयार कर देते हैं।
2: तो बीज की मात्रा एकड़ पीछे कितना लगेगी? तो
3: एकड़ के पीछे 200 से 250 ग्राम बीज लगेगा। ये पौधे जब 1.5 से 2 फीट के हो जाएं तो इसको हम निकाल करके और उस गड्ढे में, जो जैसा पहले विधि हमने बताई, उस गड्ढे में सीधे भी इसको रोपित किया जा सकता है।
2: द्विवेदी साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे सहजन उत्पादन की उन्नत तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके IFFDC राज्य कार्यालय आना चाहें तो
3: तो अपना

0: मोबाइल नंबर बता दें?
1: बहुत ही आवश्यक आपने सलाह दिया है, हमारी संस्था तो किसानों के लिए ही है, तो पर लिखें, नोट करें, 9555667789555666 768 9555667789555666 768 778।
0: आर के द्विवेदी साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और सहजन उत्पादन की उन्नत तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सहजन की उन्नत खेती विषय पर आज हमारे किसान भाइयों को जानकारी दे रहे थे रविंद्र कुमार द्विवेदी, और आपसे इस विषय पर भेंट कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ कृषि चर्चा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र, और श्रोताओं अब प्रस्तुत है आज का सुविचार मार्गदर्शक।
3: महर्षि बोधायन शिष्यों के अनुरोध पर उस दिन आश्रम से दूर नदी के तट पर गए थे। मछलियों की तरह गुरु और शिष्य घंटों जल विहार करते रहे, फिर भोजन करके अपने उत्तरीय फैलाकर लेट गए, कई घंटों तक सोते रहे। जब महर्षि की निद्रा भंग हुई, सूर्य देव का रथ पश्चिम में काफी नीचे उतर चुका था। वे उठे और समीप ही सोए अपने प्रिय शिष्य गार्ग को जगाने गए। उन्होंने देखा गार्ग जाग गए हैं, पर उनके पैरों से लिपटकर एक सर्प भी सोया हुआ है। गार्ग ने धीरे से कहा, गुरुजी, जब सर्प की नींद पूरी हो जाएगी वो स्वयं चला जाएगा, उसकी निद्रा भंग न करें। और हुआ भी यही, घंटे भर बाद सर्प जागा और गार्ग के पैरों से उतरकर बिल में चला गया। महर्षि बोधायन गार्ग को अंक में भरकर आशीर्वाद देने लगे, वत्स, तुम्हारी ये शील संपदा अक्षय रहे। इस पर चकित होकर दूसरा शिष्य बोला, भगवान, गार्ग ने तो प्रशस्त साहस का परिचय दिया है, शील का नहीं। महर्षि मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, जल का ही घनीभूत रूप हिम है, इसी भांति शील का घनीभूत साहस है, महिमा शील की ही है। जब तक व्यक्ति गुरु से सहयोग और संरक्षण नहीं लेता, तब तक वो नाना प्रकार के बंधनों में बंधा रहता है। उसे पास मुक्त करने वाला व्यक्ति गुरु है, वही है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलता है, बंधनों से मुक्ति दिलाता है और परतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर छलांग लगाने की प्रेरणा देता है। यदि ये सब न हो तो मनुष्य कारावास के कैदियों की तरह तड़पता छटपटाता रहेगा, किंतु ये भी सच है कि उक्त बंधन यदि जन्म जन्मांतरों जितना दीर्घकालीन हुआ तो फिर मनुष्य को बंदी की वो स्थिति सुख कर प्रदान करने लगती है। सामान्य संदर्भ में इसका इतना ही अर्थ हो सकता है कि गुरु का चमत्कार है जो सभी विषयों से शिष्य को दूर करता है। इसमें निश्चय ही कोई गंभीर भाव छुपा हुआ है। जब इसकी दार्शनिक विवेचना की जाती है तब स्पष्ट हो जाता है कि हमारा संकेत किस प्रकार किस ओर था। रामकृष्ण कहा करते थे कि चील कितनी ही ऊपर आकाश में उड़ती रहे, फिर भी उसकी दृष्टि धरती पर पड़े मृत जानवर पर ही लगी रहती है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि उसका शरीर उत्तुंग ऊंचाइयों पर उड़ रहा है, पर मन फिर भी जमीन पर कुछ न कुछ तलाशता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दो हिस्से हैं, प्रलापी और शांत। मनुष्य का असभ्य या क्षुद्र हिस्सा उसका मन है, और हृदय उसका दिव्य भाग है। मन उस पर इस कदर हावी है कि वो बोल नहीं पाता, बोलना चाहता है, अपनी दिव्यता प्रकाशित करने को उत्सुक है, पर उसके लिए कोई अवसर ही नहीं है, जबकि केंद्र वही है। मन तो परिधि है, संसार के क्रियाकलाप में उसकी आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन सत्य की शोध में, अमृत यात्रा में, ईश्वर अनुसंधान में मन से काम नहीं चलेगा, वहाँ हृदय चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे आज का सुविचार शीला मिश्रा के स्वरों में। सुविचार था मार्गदर्शक। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, प्रस्तुत है आस्था, प्रार्थना और परमात्मा के प्रेम भाव से परिपूर्ण कार्यक्रम आराधना का।

भगवान गणेश की महिमा अपरंपार है, भगवान गणेश की माया अपरंपार है। प्रभु अपने भक्तों का सदैव हित करते हैं। यदि प्रभु की कृपा दृष्टि पानी है तो आइए चलते हैं प्रभु के दरबार और लगाते हैं प्रभु की जय जयकार।

प्रभु श्री कृष्ण, जिनको मीरा मन ही मन अपना पति मान चुकी हैं, उनके जीवन में प्रभु के सिवा और कोई नहीं। हर समय उन्हीं की पूजा और आस्था में अपना समय व्यतीत करती मीरा प्रभु के मनमोहक रूप का गुणगान करते हुए कुछ यूं अपनी बात उनसे कहती हैं।

हे भोले शंकर, आज हमारे आंगन पधारो, मन मंदिर में आकर प्रभु प्रेम का दीप निहारो। भक्त पुकारे आपको, अब देर न करो भगवान। भोले शंकर पधारो, बैठे हो छुपके कहाँ, हे प्रभु।

जय रघुनंदन, जय श्री सियाराम, आपके चरणों में शत शत प्रणाम। मन मंदिर में आपको ज्योति जलाकर प्रभु आपकी पूजा करनी है। आपकी कृपा से जीवन धन्य बना दो प्रभु।

प्रभु श्री कृष्ण की बाल लीला बहुत ही मनमोहक है। जब भी प्रभु जमुना के किनारे छोटी छोटी गैया के बीच मुरली की तान छेड़ते हैं, तो चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी, ये पृथ्वी और गगन सब झूम उठते हैं और उनका ये मनमोहक रूप देख सभी का हृदय प्रफुल्लित होता है।

हम सभी पर ईश्वर की कृपा यूं ही बनी रहे। इसी शुभेच्छा के साथ आज का भक्तिमय कार्यक्रम आराधना यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से आज का संगीतमय प्रसंग। आज सुनिए भाग 295।

हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई विभीषण हूं। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरी काया तामसी है। स्वभाव से ही मैं पापी हूं। कानों से आपका सुयश सुनकर आपकी शरण आया हूं। मेरी रक्षा कीजिए।

विभीषण ये वचन कहकर श्रीराम के चरणों में दंडवत आ गिरे। हर्षित होकर श्रीराम उन्हें गले से लगा लेते हैं, कहते हैं, हे लंकेश, परिवार सहित अपना कुशल क्षेम सुनाइए। दिन रात दुष्टों के बीच आपका निवास है, आप अपना धर्म भला किस प्रकार निभाते हैं? मैं जानता हूं कि आप नीति कुशल हैं, अनीति से आपका कोई संबंध नहीं। विभीषण निवेदन करते हैं, हे प्रभु, नरक में रहना श्रेयस्कर है, किंतु विधाता किसी को दुष्टों की संगति न दे। लोभ, मोह, मद और अभिमान तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक श्री रघुनाथ का वहां निवास नहीं होता। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने उन चरणों में शरण प्राप्त कर ली जिनकी पूजा स्वयं ब्रह्मा तथा शिव करते हैं। श्रीराम ने विभीषण को अपनी भक्त वत्सलता से आश्वस्त कर दिया। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण का जीवन धन्य हो गया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज का संगीतमय पाठ। आपने सुना सुरेश वाडकर और श्रीकांत परगांवकर के स्वरों में ये पाठ। संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, सुबह के 6:55 होने को हैं। अब से बस थोड़ी ही देर बाद हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा संस्कृत समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में नीना सोनकर हमें बताने जा रही हैं अपनाएं स्वस्थ और सुरक्षित जीवन शैली, इसके बारे में आइए सुनते हैं।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त नीना सोनकर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। श्रोताओं आज का विषय हर उस श्रोता के दिल के करीब है जिसने कभी कुछ पाने का सपना देखा है, कभी बड़ी बड़ी मंजिलों की ओर देखा है और कभी खुद को जिम्मेदारियों, अपेक्षाओं और भागदौड़ के बीच उलझा पाया है। आज हम बात करेंगे कामयाबी और संतुलन का राज की। जब भी हम कामयाबी की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग अपनी सोच में दौलत, शोहरत, पद, प्रतिष्ठा या कोई बड़ा नाम ही जोड़ लेते हैं। सच तो ये है कि ये सब जीवन के अलग अलग पड़ावों पर मायने रखते हैं, लेकिन क्या यही असली सफलता है या फिर कामयाबी का मतलब है भीतर की संतुष्टि, अपने मूल्यों और सपनों के साथ तालमेल और अपने आप से सच्चा रिश्ता बनाए रखना। हर इंसान की कामयाबी की परिभाषा अलग होती है। किसी के लिए वो नौकरी में प्रमोशन है, किसी के लिए बच्चों की हंसी खुशी, किसी के लिए घर की सुख शांति, तो किसी के लिए अपने भीतर की शांति। और जब हम संतुलन की बात करते हैं तो वो केवल समय का संतुलन नहीं होता, शरीर, मन, भावनाओं और रिश्तों के बीच का संतुलन है। आज की दुनिया तेज है, उम्मीदें बड़ी हैं और समय सीमित है। हम सब कहीं न कहीं एक ऐसी दौड़ में लगे हैं जहां कभी मंजिल सामने दिखती है, कभी धुंध में खो जाती है। ऐसे में कई बार कामयाबी के पीछे भागते भागते हम अपना स्वास्थ्य, अपने संबंध, अपनी नींद, यहाँ तक कि अपनी खुद की पहचान तक भूल जाते हैं। तभी तो कामयाबी और संतुलन का रिश्ता समझना इतना जरूरी है। असल में सच्ची कामयाबी वही है जिसमें आप अपनी ऊर्जा, समय और भावनाओं का ऐसा बंटवारा कर सकें कि जीवन के हर पहलू को पूरा जी सकें। कई बार हम सोचते हैं अगर मैं बस थोड़ी देर और काम कर लूं तो शायद कुछ और पा लूं, लेकिन क्या उस रेस में कहीं हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारा स्वास्थ्य या हमारा मन पीछे तो नहीं छूट रहा। कामयाबी के लिए सबसे पहले अपने भीतर झांकना जरूरी है। खुद से सवाल कीजिए, मैं सच में क्या चाहता हूँ, मेरे लिए खुशी क्या है, क्या जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो मेरे स्वभाव, मेरी पसंद और मेरे मूल्यों के अनुरूप है। और बहुत बार हमारी कामयाबी की छवि समाज, परिवार या मीडिया से बनती है और हम खुद की सच्ची आवाज भूल जाते हैं। संतुलन की सच्ची शुरुआत यहीं से होती है, अपने सपनों, अपनी प्राथमिकताओं और अपनी सीमाओं को पहचानने से। संतुलन का मतलब है दिन भर की व्यस्तता के बीच थोड़ा सा वक्त खुद के लिए निकालना, अपनों के साथ बिताना, अपने शौक, अपनी हॉबीज, अपनी सेहत और अपनी आत्मा की देखभाल करना। और कई बार ये छोटे छोटे काम होते हैं, सुबह की सैर, घर की छत पर 5 मिनट का एकांत, परिवार के साथ मिलकर खाना खाना, किताब पढ़ना या बस एक कप चाय के साथ खिड़की पर बैठना। कामयाबी और संतुलन दोनों ही तब मिलते हैं जब हम अपने मन के भीतर ईमानदारी से संवाद करते हैं, जब हम ना कहना सीखते हैं, बेवजह के कामों, बेवजह की अपेक्षाओं या अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से, जब हम मान लेते हैं कि थकान आना, कभी रुकना, कभी अपनी सीमाएं स्वीकार करना ये कमजोरी नहीं बल्कि संतुलन की पहली सीढ़ी है। आइए सोचिए, जब भी आपने जीवन में सबसे बड़ी खुशी महसूस की तो वो कब थी? क्या वो किसी इनाम के मिलते ही थी या किसी परीक्षा के नंबर मिलने पर, या तब जब किसी मुश्किल वक्त में परिवार ने साथ दिया, किसी दोस्त ने समझा या आपने खुद के लिए कुछ अच्छा किया? ज्यादातर बार असली संतोष भीतर से आता है जब आप अपने प्रयास, अपनी यात्रा और अपने छोटे छोटे बदलावों में संतुष्टि महसूस करते हैं। कामयाबी और संतुलन के बीच एक सेतु है स्वास्थ्य। जब शरीर स्वस्थ रहता है तो मन भी ऊर्जावान रहता है। अगर नींद पूरी हो, खाना संतुलित हो, व्यायाम का समय हो और मन में सकारात्मकता हो तो कोई भी चुनौती, कोई भी मुश्किल, कोई भी लक्ष्य दूर नहीं लगता। अक्सर लोग कहते हैं अभी तो मेहनत करनी है, बाद में आराम करेंगे, लेकिन अगर आज आपने शरीर और मन का ख्याल नहीं रखा तो कल की सारी कामयाबी अधूरी रह जाएगी। रिश्ते भी संतुलन की कुंजी हैं। अपने परिवार, दोस्तों, सहयोगियों और अपने सामाजिक दायरे

0: में संवाद और प्यार बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना अपने काम या लक्ष्य के प्रति समर्पण। जब हम कामयाबी के सफर में अकेले हो जाते हैं तो वो ऊंचाई भी सूनी लगती है, लेकिन जब साथ में अपने हो तो हर छोटी उपलब्धि भी जश्न बन जाती है। अंत में कामयाबी और संतुलन दोनों के लिए एक चीज जरूरी है, वो है कृतज्ञता। अपने पास जो है उसका सम्मान कीजिए, जो पाया है उसके लिए खुद को सराहिए और जो नहीं मिला उसके लिए जीवन को दोषी न मानिए। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो मन हल्का रहता है, प्रतिस्पर्धा की आग ठंडी पड़ती है और सच्ची खुशी खुद ब खुद मिलती है। श्रोताओं, जीवन की दौड़ में तेज भागना जरूरी है, लेकिन दिशा, संतुलन और अपना सच बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सच्ची कामयाबी वही है जिसमें आप स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनों के साथ हैं। मैं नीना सुनकर आपसे यही कहूंगी, कामयाबी की तलाश में खुद को न खोइए। नमस्कार।
1: अपनाएं स्वस्थ और सुरक्षित जीवन शैली, इसके बारे में अभी हमारे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी दे रही थी नीना सुनकर। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, अब आइए डालते हैं एक नजर आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 से हमारे दिल्ली केंद्र से रिले। न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण का अनुप्रसारण समय रहेगा 10:10 का। जिले की हलचल आप सुन सकते हैं 9:15 से, जिसमें आज आप सुनेंगे पीलीभीत और आजमगढ़ जिलों की हलचल। 9:30 का वक्त रहेगा उर्दू प्रोग्राम का। आज की पेशकश होगी आकाशवाणी प्रयागराज के मरकज से। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मकाला अमन का सफीर। मकाला निगार होंगी डॉक्टर अर्शिया सरफराज और कलामी शायर होंगे खुर्शीद अंबर। जीआई टैग से बढ़ता व्यवसाय, इस विषय पर विविधा प्रोग्राम में 7:10 से आपके साथ होंगी सीमा शाही। 7:31 से कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे अंकित सिंह का ख्याल गायन, राग होगा भैरव। लोकगीतों से सजे लोकरंग कार्यक्रम में आज के कलाकार होंगे सुमन प्रजापति, जो आपके लिए प्रस्तुत करेंगी अवधि लोकगीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:50 पर। और साथ ही साथ आपको बता दें, इन्हीं के गाए लोकगीतों को आप सुन सकते हैं लोकमाधुरी कार्यक्रम के अंतर्गत 2:45 पर भी। विज्ञान और किसान, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 2:30 से, जिसमें आज आप सुनेंगे पशुओं के प्रमुख परजीवी और उनका प्रबंधन। इस विषय पर डॉक्टर वेद प्रकाश राय की भेंट वार्ता, भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। मातृ शिशु एवं स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम आंगनबाड़ी के अंतर्गत 1:15 से चर्चा होगी महिलाएं शारीरिक परिवर्तनों को ना करें नजरअंदाज, जरूरी है मानसिक धर्म के दौरान स्वच्छता और समेकित बाल विकास योजना का उद्देश्य इस विषय पर। साथ ही साथ आज की भेंट वार्ता का विषय रहेगा गर्मी और बरसात के मौसम में महिलाएं कैसे करें प्रसव की तैयारी। इस विषय पर वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नयरा शकील से भेंट करेंगी नीना सोनकर। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित ये फोन इन प्रोग्राम आप सुन सकते हैं दिन में 11 बजे से। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय रहेगा दिन में 12 बजे का। तो ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। तो श्रोताओं, नमस्कार। लखनऊ के इस खास सेगमेंट में अब पेश है विविधा।

नमस्कार। लखनऊ के इस खास सेगमेंट में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, आभार। विविधा ये खास प्रोग्राम लेकर आज हाजिर हूँ मैं, सीमा शाही। श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की समृद्ध स्थानीय परंपराओं, कारीगरों की मेहनत और इन उत्पादों की पहचान की, जो किसी खास क्षेत्र की मिट्टी, संस्कृति और विरासत से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, आज के हमारे विविधा कार्यक्रम का विषय है GI टैग से बढ़ता व्यवसाय।

0: भारत विविधताओं का देश है। यहाँ हर क्षेत्र की अपनी भाषा होती है, अपनी संस्कृति होती है, खान पान, कला, हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पाद होते हैं। किसी स्थान की पहचान वहाँ के विशेष उत्पाद से भी होती है, जैसे बनारस की साड़ी हो, कश्मीर का पश्मीना, दार्जिलिंग की चाय हो या फिर उत्तर प्रदेश का कोई पारंपरिक हस्तशिल्प। इन उत्पादों में उस क्षेत्र की वर्षों पुरानी परंपरा और लोगों की मेहनत छिपी होती है, जिससे हम अपनी परंपरा से जुड़े होते हैं। यहीं पर GI टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। सरल शब्दों में समझें तो GI टैग किसी ऐसे उत्पाद की विशिष्ट पहचान है जिसकी गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या फिर विशेषता किसी खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी होती है। ये पहचान उपभोक्ता को ये समझने में मदद करती है कि वो उत्पाद किसी विशेष स्थान या फिर उसकी पारंपरिक विशेषताओं से संबंधित होता है।
1: आज से कल बदलता, यही से शुरू हो रहा है सपनों की।
0: दोस्तों, GI टैग मिलने के बाद किसी स्थानीय उत्पाद को एक अलग पहचान प्राप्त होती है। इससे उस उत्पाद की बाजार में विश्वसनीयता बढ़ सकती है और उपभोक्ताओं के बीच उसके प्रति रुचि भी बढ़ती है। यही पहचान आगे चलकर स्थानीय कारीगरों, किसानों और छोटे उद्यमियों के व्यवसाय के लिए नए नए अवसर पैदा कर सकती है। दोस्तों, ये कल्पना कीजिए कि किसी छोटे से गांव में वर्षों से एक विशेष प्रकार का हस्तशिल्प बनाया जा रहा है। उस उत्पाद की पहचान सिर्फ उस गांव या जिले तक सीमित नहीं है। जब उसे GI टैग के माध्यम से व्यापक पहचान मिलती है तो देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी उसके बारे में जानने लगते हैं। इससे बाजार का दायरा भी बढ़ सकता है और स्थानीय उत्पाद को नए ग्राहक भी मिल सकते हैं। जी हाँ, GI टैग का एक महत्वपूर्ण पहलू स्थानीय कारीगरों और उत्पादकों की पहचान भी है। जो लोग पीढ़ियों से किसी कला या पारंपरिक उत्पाद को जीवित रखे हुए हैं, उनके काम को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में ये पहचान मददगार हो सकती है।

भारत में अनेक पारंपरिक उत्पादों को जीआई पहचान मिली हुई है। दार्जिलिंग की चाय, कांजीपुरम सिल्क, बनारसी साड़ी और शिल्प, अल्फांसो आम और कश्मीर का पश्मीना जैसे उत्पाद अपने अपने क्षेत्रों के विशिष्ट पहचान से जुड़े हुए हैं। इन उत्पादों की विशेषता सिर्फ उनकी गुणवत्ता में नहीं बल्कि उनके पीछे मौजूद परंपरा और स्थानीय ज्ञान में भी है। और यही नहीं दोस्तों, जीआई टैग पर्यटन को भी बढ़ावा दे सकता है। वो कैसे, आइए जानते हैं। जब किसी शहर या क्षेत्र का कोई विशेष उत्पाद प्रसिद्ध होता है तो लोग उस उत्पाद को देखने या फिर खरीदने के लिए और उसकी निर्माण प्रक्रिया को समझने के लिए उस क्षेत्र की यात्रा भी कर सकते हैं। इससे स्थानीय दुकानदारों, कारीगरों, होटल

और परिवहन जैसे अन्य छोटे छोटे व्यवसायों को भी लाभ मिल सकता है। दोस्तों, आज डिजिटल युग में स्थानीय उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना पहले की तुलना में आसान हो गया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से छोटे उत्पादक अपने सामान की पहचान देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे में GI टैग उनके उत्पाद की विशिष्टता को सामने रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। लेकिन केवल GI टैग मिल जाना ही व्यवसाय की सफलता की गारंटी नहीं है। उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखना, उचित पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ग्राहक सेवा, आधुनिक बाजार की आवश्यकताओं को समझना और सही विपणन रणनीति अपनाना भी आवश्यक है। जब पारंपरिक पहचान को आधुनिक व्यवसायिक सोच के साथ जोड़ा जाता है, तभी स्थानीय उत्पाद बड़े बाजार में मजबूती से अपनी जगह बना सकते हैं। दोस्तों, GI टैग का एक और महत्वपूर्ण पक्ष हमारी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण है। जब किसी पारंपरिक कला या उत्पाद की बाजार में मांग बढ़ती है, तो नई पीढ़ी भी उस कला को सीखने और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित हो सकती है। दोस्तों, हमारे देश के कारीगरों और स्थानीय उत्पादकों की मेहनत केवल एक वस्तु तैयार नहीं करती, बल्कि वो भारत की संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाती है। इसलिए जब हम किसी GI उत्पाद को खरीदते हैं, तो हम केवल एक सामान नहीं खरीद रहे होते, बल्कि उस उत्पाद से जुड़े कारीगरों, किसानों और स्थानीय समुदाय की मेहनत को भी सम्मान दे रहे होते हैं। दोस्तों, अंत में चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगी, GI टैग किसी उत्पाद को केवल पहचान नहीं देता, बल्कि उसकी पहचान को बाजार, व्यवसाय और विरासत से जोड़ने का अवसर भी देता है। आइए हम अपने देश के स्थानीय और पारंपरिक उत्पादों को पहचाने, उन्हें प्रोत्साहित करें और वोकल फॉर लोकल की भावना को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब स्थानीय हुनर को सही पहचान और सही बाजार मिलता है, तो उससे केवल एक व्यक्ति का व्यवसाय नहीं बढ़ता, बल्कि पूरा स्थानीय समुदाय आर्थिक रूप से मजबूत होता है। तो इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आज के विविधा कार्यक्रम से सीमा शाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रही थी नमस्कार लखनऊ का ये खास प्रोग्राम विविधा। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। अब से बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे गोरखपुर केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्म विकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर किए हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जल संसाधनों के समुचित उपयोग और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा ये कदम। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 23 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। मंत्रिपरिषद ने पीआरडी जवानों और उनके परिवार वालों को प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का लिया फैसला। लोगों के बीच यूपीआई से लेनदेन पर नहीं लगेगा कोई शुल्क। वित्त मंत्रालय ने कहा, छोटे व्यापारियों के लिए भी 2,000 रुपए तक का लेनदेन रहेगा निःशुल्क। और प्रदेश में शिक्षकों के 15,012 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश सहित देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कल यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा ये 10वां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने किशाऊ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है।
1: इस परियोजना का लगभग 90% वित्तीय भार भारत सरकार वहन करेगी और शेष 10% राशि 1994 के समझौते के अनुसार भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस समझौते को जल संसाधनों के समुचित उपयोग और भावी पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि परियोजना के साकार होने से उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से अन्नदाताओं को संबल, पेयजल की उपलब्धता को मजबूती और यमुना की अविरलता को नई शक्ति मिलेगी। इस परियोजना के तहत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बहने वाली टोंस नदी पर कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनेगा, जहां 1,562 मिलियन क्यूबिक मीटर जल संग्रहण होगा। इससे 97,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 1,476 मिलियन यूनिट स्वच्छ जल विद्युत भी प्राप्त होगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 23 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने मथुरा के छाता में एथेनॉल प्लांट को मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्लांट में साल के 11 महीने एथेनॉल बनाने का काम होगा।
2: 19 वर्ष पहले रेल शुगर फैक्ट्री बंद होती, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में जो प्रस्ताव पास हुआ है, इथेनॉल प्लांट जो गन्ने से मक्का और धान, गन्ना समाप्त होने के बाद मक्का और धान से इथेनॉल बनाया जाएगा। ये प्लांट साल में 11 महीने चलेगा। जो भी इथेनॉल की मात्रा 3,96,00,000 लीटर एक साल में इथेनॉल बनेगा।
0: मंत्रिपरिषद ने अलीगढ़ में नई यूनिवर्सिटी को भी मंजूरी दे दी। मंत्रिपरिषद ने इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत प्रदेश के पीआरडी जवानों और उनके परिवार वालों को प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा दिए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया। मंत्रिपरिषद ने अयोध्या में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय एमएचए को निःशुल्क भूमि हस्तांतरित करने को भी मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह करीब 3 करोड़ की लागत से बने कल्याण मंडपम का लोकार्पण करेंगे। हमारे गोरखपुर प्रतिनिधि ने बताया कि जंगल नकहा नंबर 2 में 300 लोगों की क्षमता वाला ये कल्याण मंडपम 2 तल में बनाया गया है। मुख्यमंत्री आज ही आईएमए के चैरिटेबल ब्लड सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कल से सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत होगी। इसे लेकर प्रदेश भर में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में अभियान के संबंध में समीक्षा बैठक कर इसे सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी क्रम में हापुड़ जिले के प्रभारी मंत्री के भी

0: पब्लिक ने कल अधिकारियों के साथ बैठक कर एक माह तक चलने वाले अभियान की कार्ययोजना के बारे में चर्चा की। शाहजहांपुर के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अधिकारियों को सेवा संकल्प अभियान के सभी कार्यक्रम प्रभावी ढंग से कराने और अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने बताया कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सेवा काल की जन कल्याणकारी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना और नागरिकों को विकसित भारत 2047 के संकल्प से जोड़ना है।
1: सेवा संकल्प के अभियान को सफल बनाने के लिए शासन प्रशासन और संगठन के समन्वय के साथ कार्य योजना तैयार की है। 17 सितम्बर को शाहजहांपुर जनपद में रक्तदान का आयोजन किया जाएगा। हम इसके बाद 17 अक्टूबर तक बहुत सारे अभियानों के माध्यम से कल्याण योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को देने का काम भी शुरू होगा।
0: प्रादेशिक समाचार अब आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारी यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2,000 रुपए से ज्यादा के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यवसायी या कारोबारी का ये शुल्क UPI से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर न लगाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब अंतिम भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि भविष्य में निर्माण की गुणवत्ता बनी रहे इसके लिए निर्माण कंपनियों से बैंक गारंटी ली जा रही है। साथ ही निर्माण के अंतिम भुगतान का ऑडिट भी थर्ड पार्टी से कराने का फैसला लिया गया है। श्री मिश्र ने बताया कि वहां अब राम कथा संग्रहालय का काम शुरू होगा।
2: संग्रहालय का जो सबसे बड़ा कार्य अब शुरुआत होगी, आने वाले 10 अक्टूबर तक टेंडर जारी की जो टेक्नोलॉजी होगी उसका हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, वह बनाना है और उसको अंतिम रूप दिया जाए। अनुमान की टेंडर फाइनलाइज जो कि अक्टूबर के अंत तक कदाचित हो पाएगा, उसके बाद लगभग 6 महीने लगेंगे गैलरी को कम्प्लीट करने में।
0: प्रदेश में शिक्षकों के 15,012 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी के 897 रिक्त पदों और बेसिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापक शहरी के 11,508 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। इनके लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। आयोग ने प्रवक्ता संवर्ग के 2,607 पदों के लिए भी विज्ञापन जारी कर दिए हैं। इनके लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू होगी। अंतरिक्ष यात्री और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने लखनऊ में चल रहे गोमती पुस्तक महोत्सव में कल अपनी किताब द सेकेंड ऑर्बिट का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों और युवाओं के साथ संवाद किया और अपनी अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव भी साझा किए। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि ये जुर्माना गलत ट्रेड प्रैक्टिस, गलत अनुबंध और डार्क पैटर्न के लिए लगाया गया है। इसमें राइड कन्फर्म होने से पहले राइडर्स से ज्यादा पैसे देने के लिए कहा जाता है। ये कार्रवाई भारत में चल रहे कैब और बाइक टैक्सी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म की सेक्टर वाइड जांच के बाद की गई है। जांच के दौरान CCPA ने पाया कि रैपिडो का एल्गोरिदम कंफर्म शेमिंग जैसा था, जो डार्क पैटर्न की रोकथाम और रेगुलेशन के लिए 2023 के दिशा निर्देशों के तहत पहचाना गया डार्क पैटर्न है। इसमें उपभोक्ता को ज्यादा पैसे देने के लिए सहमत नहीं होने पर राइड खोने का डर

0: पैदा करता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर किया हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जल संसाधनों के समुचित उपयोग और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा यह कदम। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 23 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। मंत्रिपरिषद ने पीआरडी जवानों और उनके परिवार वालों को प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का लिया फैसला। लोगों के बीच यूपीआई से लेनदेन पर नहीं लगेगा कोई शुल्क। वित्त मंत्रालय ने कहा, छोटे व्यापारियों के लिए भी 2,000 रुपए तक का लेनदेन रहेगा निःशुल्क। और प्रदेश में शिक्षकों के 15,012 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, सुबह के 7:31 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज सुनिए अंकित सिंह का ख्याल गायन, राग है भैरव। विलंबित रचना 1 ताल में और द्रुत रचना 3 ताल में निबद्ध है। आइए सुनते हैं।

कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आप सुन रही थी अंकित सिंह का ख्याल गायन। राग था भैरव, विलंबित रचना एक ताल में और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध थी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। सुबह के 8 बजने को हैं, थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा समाचार प्रभात। कृपया प्रतीक्षा करें।

सरकार ने कहा लोगों के बीच किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों के लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ

0: मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए 0 व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। छूट दर केवल 2,000 रुपए के अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेनदेन पर ही लागू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुल छूट दर संग्रह के 5% से छोटे व्यापारियों को UPI के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित कोष स्थापित किया जाएगा।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि UPI शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि UPI ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी UPI भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रुपए से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेनदेन होगी। वहीं व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी P2PM श्रेणी के तहत UPI QR कोड के माध्यम से हर महीने 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को सभी लेनदेन पर अनिवार्य रूप से 0 MDR की सुविधा जारी रहेगी। इसके अलावा व्यक्तियों के लिए मुफ्त UPI लेनदेन पर कोई मासिक सीमा, लेनदेन की संख्या की सीमा या अलग अलग स्रोतों के आधार पर कोई कैप नहीं है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गन्ना किसानों और चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
2: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में गन्ना किसानों को FRP का लगभग 99.5% का नुकसान हो चुका है और FRP भुगतान के मामले में महाराष्ट्र देश में पहले स्थान पर है। आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 26 हेक्टेयर बंजर भूमि केंद्रीय गृह मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह भूमि अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए दी गई है।
3: मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक और रणनीतिक केंद्र के रूप में उभरा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विशिष्ट अतिथि और पर्यटक लगातार वहां आ रहे हैं। ऐसे में इस इलाके की सुरक्षा संवेदनशीलता काफी बढ़ गई है। खन्ना ने कहा कि इस क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से अयोध्या में NSG की तैनाती स्थायी तौर पर जरूरी हो गई है। NSG केंद्र की स्थापना राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अयोध्या में किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौती से निपटने में सहायता करने के उद्देश्य से की जा रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दी है। एक रिपोर्ट।
4: ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवा जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। आमतौर पर प्रत्येक आशा कार्यकर्ता लगभग 2,000 लोगों या 400 परिवारों से जुड़ी होती हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 10,000 छात्रों के लिए छात्रावास बनाने का भी निर्णय लिया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.com

0: www.jiobi.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली में आयोजित किया गया। औली प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में दोनों सेनाओं के 600 सैनिकों ने भाग लिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभ्यास औली के साथ साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है।
3: इस अभ्यास का उद्देश्य पर्वतीय और अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य अभियानों के लिए दोनों सेनाओं की क्षमता बढ़ाना है। इसमें पैदल सेना आधारित अभियानों पर विशेष जोर दिया जाएगा। अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं परिचालन पद्धतियों का आदान प्रदान करेंगी और संयुक्त योजना एवं संचालन को मजबूत करेंगी। प्रशिक्षण में निगरानी और टोही के लिए ड्रोन तथा स्वायत्त प्रणालियों का उपयोग किया गया है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आधुनिक हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन भी होगा। दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ उभरती तकनीकों और बहुक्षेत्रीय युद्ध से विकास पर विचार भी साझा करेंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर श्री चौहान राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करेंगे और प्रभावित किसानों के परिवारों से भेंट करेंगे।
4: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने दौरे की शुरुआत पटना के दिघवारा और मनेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण से करेंगे। इसके बाद वे हाजीपुर के तरसिया और सरायपुर गांव का दौरा करेंगे। पटना में श्री चौहान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 15 जिलों में लगभग 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अभिषेक दास, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
5: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही सभी भारतीय सामान न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त मिलेंगे। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने पर सहमति जताई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत में अपनी मजबूत आर्थिक नींव, निजी क्षेत्र की गतिशीलता और बढ़ती तकनीकी क्षमताओं के बल पर वैश्विक विकास को गति देने की क्षमता है। कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने ये बयान भारत की 5 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद जारी किया है। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी से मुलाकात की थी। अमरीकी सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर मध्य और दक्षिण अमरीकी सरकार को देगी। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्लोवाकिया, उत्तरी मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को दी जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस धनराशि का उपयोग अमरीका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। नई दिल्ली में कल अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 15वें ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने सर्वाधिक 57 रन बनाए।

0: नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में ही खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी आज ऐसी ही स्थिति रहेगी। बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज ऐसी ही स्थिति रह सकती है। वहीं केरलम में एर्नाकुलम, पत्तनमथिट्टा और इडुक्की जिलों में तेज वर्षा की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों में तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की भी चेतावनी दी गई है। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। करीब 5170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 6 राज्यों के बीच हुए जल समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की गागर में बढ़ेगा जल, यमुना भी होगी स्वच्छ। पत्र के अनुसार 32 किलोमीटर लंबी झील बनवाने का प्रस्ताव, 97,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। दैनिक जागरण के अनुसार 8 दशक से लंबे किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों के बीच समझौता। अमर उजाला लिखता है, 90% पैसा केंद्र का, 4 राज्यों को पानी, 2 को बिजली का लाभ। जनसत्ता का शीर्षक है, निर्यात की छलांग, व्यापार घाटा कम, चालू खाते ने लगाया गोता। पत्र के अनुसार निर्यात 26.12% बढ़कर $44 अरब हुआ। लोकसत्ता के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विमर्श 2026 सम्मेलन में कहा, AI और ड्रोन से बदलेगा भविष्य का युद्ध, रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत की आधारशिला। पंजाब केसरी ने बाल सुरक्षा जरूरी शीर्षक से लिखा है, भारतीय कानून के सामने झुका बेटा, बच्चों के यौन शोषण की सूचना देने को राजी। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, ट्रंप प्रशासन को झटका, अमेरिका में नए स्टूडेंट वीजा नियमों पर कोर्ट की रोक, डाक मतपत्र पर रोक का ट्रंप का प्रस्ताव खारिज। राजस्थान पत्रिका ने सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा निर्णय देते हुए लिखा है, डॉक्टर उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में ही रहेंगे, 31 साल पुराने फैसले में दखल देने से इनकार। फैसले से मरीज चिकित्सा सेवाओं में कमी पर उपभोक्ता आयोग में जा सकेंगे। दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, उत्तराखंड में केदारनाथ पैदल मार्ग पर अब हेलमेट के बिना एंट्री नहीं, गिर रहे पत्थर, 100-100 के जत्थे में जा रहे श्रद्धालु, 21 किलोमीटर रास्ते पर 13 डेंजर जोन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, लोगों के बीच किसी भी राशि के UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों की लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया। और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट,
3: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8:15 हुए हैं और ये समय है कार्यक्रम यंग बरेली का।

श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम यंग बरेली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम यंग बरेली जो है समर्पित है युवाओं के लिए। और साथियों, बात करें अपने बरेली शहर के युवाओं की, इसमें हम बात करते हैं और आपको सुनवाते हैं अपने किसी शहर के यंग अचीवर से की गई बातचीत। और साथियों, आज जैसे बरेली को नाथ नगरी के नाम से जाना जाता है, सब लोग जानते हैं दूर दूर तक, वैसे ही

0: बरेली को एक सांस्कृतिक शहर के रूप में भी पहचान मिली है। इसे कलाकारों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ संगीत, नृत्य, रंगमंच और साहित्य के क्षेत्र में अनेक प्रतिभाशाली कलाकार हुए हैं। बरेली की लोक संस्कृति और पारंपरिक कला इसकी विशेष पहचान है। साथियों, यहाँ के मेले, त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। शहर की कला और संस्कृति में स्थानीय परंपराओं की सुंदर झलक दिखाई देती है। बरेली के कलाकार अपनी प्रतिभा से शहर का नाम देश विदेश में रोशन कर रहे हैं। ये शहर कला, संस्कृति और रचनात्मकता का सुंदर संगम है। साथियों, ऐसे ही आज हमने बातचीत की एक कलाकार जो कोरियोग्राफर हैं, ऋतिक सक्सेना जी। आइए आपको सुनवाते हैं उनसे की गई ये बातचीत।
1: यंग बरेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आप एक कोरियोग्राफर हैं हमारे बरेली शहर से ही, जिन्होंने अपनी ख्याति सिर्फ बरेली में ही नहीं, बरेली शहर के बाहर भी आपकी ख्याति है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं ऋतिक जी कि अपने इस यात्रा के बारे में बताएं, कैसे आपको प्रेरणा मिली कि इस क्षेत्र में आना चाहिए।
2: सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूँगा शीशपाल जी कि आपने मुझे आमंत्रित किया, और आकाशवाणी का बहुत आभार इसके लिए। और सबसे पहले तो शुरुआत मेरी यहाँ बरेली से ही हुई थी मेरे डांस क्षेत्र में जाने के लिए। मुझे बचपन से ही शौक था डांस करने का।
1: अच्छा।
2: और लेकिन ये बात बहुत पुरानी है, सन 2007-08 की। तो उस समय पे क्या होता था, डांस का इतना स्कोप नहीं था इस क्षेत्र में जाने के लिए भी लोग सोचते थे, या फिर पेरेंट्स अलाउड नहीं करते थे। स्पेशली लड़कियों को तो डांस के नजरिए से देख सकते हैं, लेकिन लड़कों को तो उस समय पे बिल्कुल नहीं देखा जाता था। तो अगर वो डांस करते भी थे तो इसको बहुत खराब माना जाता था। तो सबसे पहला शुरुआत तो स्ट्रगल की इस क्षेत्र में अपने घर से ही हुई।
1: अच्छा।
2: कि अपने पिताजी को मनाना और अपनी फैमिली को मनाना इसके लिए कि मैं एक लड़का हूँ और मैं भी डांस कर सकता हूँ, या मुझे इस क्षेत्र में जाना है।
1: हाँ।
2: तो ये मनाने के लिए मुझे बहुत प्रयास करने पड़े, बहुत जतन करने पड़े। कभी कभी तो छुप छुप के अपने पापा से डांस के लिए मुझे जाना पड़ा।
1: अच्छा।
2: लेकिन धीरे धीरे बाकी सब फैमिली का सपोर्ट रहा, पापा का भी धीरे धीरे सपोर्ट हुआ, लेकिन वो बहुत बाद में जाके हुआ, जब उनको लगा कि हाँ अब मैं भी इस क्षेत्र में कुछ कर सकता हूँ। और टीवी पे रियलिटी शोज आना शुरू हो गए थे 5-6 साल बाद ही, मतलब 2011-12 से रियलिटी शोज आना शुरू हो गए। तो मतलब थोड़ा सा स्कोप बढ़ा, तो लोगों को भी देख के टीवी को समझ में आया, पेरेंट्स को भी कि हाँ बच्चे इस क्षेत्र में भी टीवी पर भी आ रहे हैं और जा भी रहे हैं, तो इसमें भी कुछ हो सकता है। तो फिर ये शुरुआत वहां से हुई थी कि धीरे धीरे करके मैंने बरेली से शुरू किया अपना डांस का सफर।
1: तो इस सफर में आगे क्या रहा, क्या अचीवमेंट रहे, कैसा माहौल मिला आपको, उस बारे में कुछ बताइए।
2: जी, सन 2016 में मैं मेरे मित्र के साथ में मुंबई गया, और मतलब कुछ प्लान नहीं था कि क्या करना है, कैसे जाना है, लेकिन मुझे ये था कि हाँ वहां जाके भी कुछ ट्राई करना है। कि क्योंकि ये बोलते हैं कि वो सपनों की नगरी है, और सारा कुछ जो भी एंटरटेनमेंट से होता है रिलेटेड वो वहां पर बहुत ज्यादा होता है। तो उसके लिए मैं अपने दोस्त के साथ में मुंबई गया, और उस समय मुझे पता नहीं था कि कहाँ कैसे जाना है, किससे मिलना है, कुछ नहीं पता था। तो लेकिन वहां जाके स्ट्रगल शुरू किया, और इस दौरान क्या हुआ था कि बरेली में एक प्रोग्राम हुआ था, एक शो हुआ था 2013 के आसपास, 12 या 13 के आसपास। तो यहाँ पर एक एक प्रख्यात कोरियोग्राफर है पॉलसन थॉमस सर, जो एक रियलिटी शो में आ चुके थे, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई।
1: अच्छा।
2: बरेली में तो वो एक ऐसी नॉर्मल उनसे गेट टुगेदर था। तो जब मैं मुंबई गया तो मुझे पता चला कि पॉलसन सर का भी वहाँ पे एक स्टूडियो है मुंबई में। तो मैंने उनको एक मैसेज ड्रॉप किया, मतलब फेसबुक पर ही किया, क्योंकि ऐसे तो उनका नंबर नहीं था मेरे पे। तो मैंने उनको मैसेज ड्रॉप किया कि सर मैं इस तरीके से मुंबई आया हूँ और मैं काम ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने ऐसे ही ये मैसेज मैंने एक उनको नहीं, ऐसे बहुत सारे कोरियोग्राफर्स को किया।
1: अच्छा। कि कहीं से शायद बुलावा आ जाए।
2: कि शायद कहीं से बुलावा आ जाए, कुछ तो वहां पे मुझे एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए मिले। तो 2 दिन हो गए किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन तीसरे दिन पॉलसन सर का मेरे पे रिप्लाई आ गया।
1: अच्छा।
2: कि आप आके मेरे स्टूडियो में मिलो। तो मैं वहां गया।

0: फिर सर से मिला पहली बार, तो किसी सेलिब्रिटी को ऐसे सामने से देख रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलना है कैसे बोलना है,
1: जी
0: तो बस मैं सुनता रहा उनकी बात। फिर मैंने उनको बताया कि सर मैं ऐसे ऐसे आया हूँ बरेली के शहर, बरेली शहर से, और मैं यहाँ पे कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे कुछ वीडियोस डांस के देखे, और उन्होंने फिर देखने के बाद मुझे बोला कि अभी आपको और लर्न करना है और सीखना है, तो आप मेरे पास कुछ समय के लिए आओ, और अगर मुझे ठीक लगेगा तो मैं कंटिन्यू आपको अपने साथ में रखूंगा या देखूंगा आगे क्या हो सकता है। तो उसके बाद मैंने सर से जुड़ा, वहाँ क्लासेस स्टार्ट किए, धीरे धीरे करके सर को मुझ पर ट्रस्ट भी हुआ, और फिर मैं उनके साथ में उनकी टीम में काम करने लगा
1: अच्छा
0: जी। और उसी दौरान 2017 लास्ट में सर ने एक मूवी की, कलुआ करके मूवी का नाम था, तो वो मूवी अभी रिलीज नहीं हुई है। उस
1: अच्छा
0: मूवी में एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर मैंने सर के साथ में काम किया,
1: क्या बात
0: जिसमें राजेंद्र शर्मा जी एक्टर थे, और उनको मैंने वो असिस्ट किया सर को। एक सॉन्ग था, वो सॉन्ग का नाम तो मैं अभी नहीं बता सकता, तो वो सॉन्ग को मैंने सर के साथ में उनको असिस्ट किया। इसके अलावा सर के साथ में मैंने आईफा अवार्ड्स, और एक आपका वहाँ पे केरला में शूट हुआ था जो टॉलीवुड का इंडस्ट्री है, वहाँ का एक अवार्ड शो वो, और इसके अलावा काफी सारे टीवी सीरियल्स, ये सब मैंने सर के साथ में वहाँ पे किए
1: क्या बात है।
0: एज असिस्टेंट कोरियोग्राफर।
1: तो
0: और इसके अलावा सर के साथ के सर की सपोर्ट की वजह से ही वहाँ पे 2018 में मैंने अपना स्टूडियो भी स्टार्ट किया,
1: क्या बात
0: डांस
1: है, मतलब
0: स्टूडियो
1: रास्ते बनते चले गए उनसे मिलने
0: जी।
1: के बाद, और
0: हाँ, वो
1: ये
0: एक
1: कुछ
0: बस एक
1: दिन की बात
0: स्टेप मिलना, एक स्टेप आगे बढ़ना था, एक राह देखनी थी कि कहाँ से जा सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। वो जैसे ही मुझे सर मिले और
1: है।
0: उनका मुझे सारा चीजें उन्होंने मुझे बताई कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वहां मैंने बहुत कुछ सीखा उनके साथ में
1: हाँ, खुद की लगन भी होनी चाहिए ना, वो
0: जी।
1: सर मिले आपको, आगे एक नई दिशा मिली आपको, लेकिन आपकी लगन भी बहुत है कि आप यहाँ से बरेली जैसे छोटे शहर से निकल के माया नगरी पहुंचे और वहां
0: जी,
1: शुरुआत करी।
0: तो वही सफर अपना रहा, और सर के साथ में इतना सारा काम करके बहुत कुछ सीखा, क्योंकि डांस एक ऐसी फील्ड है कि उसमें सिर्फ सिखाना या सीखना ही नहीं, और भी बहुत सारे रास्ते होते हैं जो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो
1: हाँ, बहुत
0: डांस
1: बड़ा
0: फील्ड में।
1: क्षेत्र है डांस का।
0: यस, तो सिर्फ बच्चों को सिखाने से ही नहीं, आप इंडस्ट्री में एज एन कोरियोग्राफर या फिर आप ऐसा डांस डायरेक्टर, तो बहुत सारे मतलब इसका क्षेत्र बहुत विख्यात है, मतलब आप जितना इसमें अंदर जाओगे उतना आपको बहुत तरह की चीजें मिलेंगी जो
1: बिल्कुल।
0: आप डांस कोरियोग्राफर बनकर कर सकते हो।
1: तो ऋतिक जी, हमें ये बताइए, हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनको बताइए कि इस क्षेत्र में किस प्रकार की चुनौतियां जो हैं वो सामने आती हैं।
0: देखिए, क्योंकि कंपटीशन का टाइम है, और मतलब हर क्षेत्र में आप देखेंगे तो बहुत कंपटीशन है,
1: बिल्कुल
0: आप किसी भी फील्ड में जाओ, तो चुनौतियों से मतलब ये है कि आप कौन सा, क्योंकि डांस में भी देखिए डांस एक तरीके का नहीं होता, डांस में भी बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, कि अलग अलग स्टाइल्स हैं, हिप हॉप है, कंटेम्प्रेरी है, सालसा है, बॉलीवुड है, बी बोइंग है, तो बहुत सारे स्टाइल्स हैं। तो आपको सिर्फ एक स्टाइल को लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते, आगे बढ़ने से मतलब है अगर आपको एज अ कोरियोग्राफर काम करना है तो फिर आप एक स्टाइल को सीख कर सिर्फ आगे नहीं बढ़ सकते, आप एज अ डांसर तो आगे बढ़ सकते हो एक स्टाइल को
1: बिल्कुल
0: लेके, लेकिन एक कोरियोग्राफर अगर आपको बनना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्टाइल्स की जानकारी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल। तो ऋतिक जी, अब हमें ये बताइए कि जो छात्र या जो युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, इस क्षेत्र को अपनाना चाहते हैं, जिनकी रुचि है इसमें, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो वो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा अपने डांस को समय देंगे, उतना ज़्यादा वो उस चीज़ को जान पाएंगे, डांस को जान पाएंगे, म्यूजिकलिटी क्या होती है वो जान पाएंगे, तो उनको टाइम देना पड़ेगा उसके लिए, मतलब प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एक अच्छा कोरियोग्राफर बनना है, एक अच्छा डांसर बनना है, तो प्रैक्टिस इज द मस्ट। तो अगर प्रैक्टिस आप करोगे तभी आगे की चीजें, जैसे पढ़ाई होती है, आप स्टडी करोगे तभी एग्जाम्स में पास होगे, नहीं
1: बिल्कुल
0: करोगे तो नहीं पास होगे, ऐसे ही डांस का है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको चीजें जानने को मिलेंगी और आपकी बॉडी

0: डांस के लिए रेडी होगी, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है।
1: बिल्कुल ऋतिक जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं के लिए
0: जी
1: और इतना समय, अपना कीमती समय हमको दिया आकाशवाणी बरेली को, तो
0: जी
1: इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शिष्यपाल जी, कि आपने मुझे आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली के इंद्र 100.4 एफएम और सुन रहे हैं कार्यक्रम यंग बरेली। साथियों, आज है 16 सितंबर और आज हम मना रहे हैं विश्व ओजोन दिवस। साथियों, ये दिवस हर वर्ष 16 सितंबर यानी आज के दिन ही मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को ओजोन परत के महत्व और उसके संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। साथियों, ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों को रोककर पृथ्वी पर जीवन

की रक्षा करती है। साथियों, वायु प्रदूषण और कुछ रासायनिक पदार्थों के कारण ओजोन परत को नुकसान पहुंचा है। ओजोन परत के कमजोर होने से मनुष्यों में त्वचा रोग, आंखों की समस्याएं और अन्य स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़ सकते हैं। इसका प्रभाव पेड़ पौधों, समुद्री जीवों और पर्यावरण पर भी पड़ता है। साथियों, ओजोन परत की रक्षा के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था। इसके माध्यम से ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उपयोग को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए। हमें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनना चाहिए। साथियों, सबसे ज्यादा हम युवाओं को इसके लिए आगे आना पड़ेगा और इसके लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे। प्रदूषण कम करना चाहिए हम लोगों को मिलकर, और ओजोन अनुकूल तकनीकों को बढ़ावा देना चाहिए। विश्व ओजोन दिवस हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी की सुरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

साथियों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यंग बरेली। साथियों अब बरेली की कुछ बात करते हैं। साथियों आपको बता दें कि नाथ मंदिरों में जलेंगे आशीर्वाद के दिए। साथियों सेवा संकल्प अभियान के पहले दिन 17 सितंबर यानी कल नाथ मंदिरों में आशीर्वाद के दिए जलाए जाएंगे। इसमें जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी सम्मिलित होंगे। पर्यटन विभाग को आयोजन कराकर वीडियो पोर्टल पर भी अपलोड किए जाएंगे। अभियान के दौरान शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक के धार्मिक स्थलों पर महीने भर विविध कार्यक्रम के आयोजन किए जाएंगे। साथियों 17 सितंबर को सेवा दिवस आशीर्वाद का दिया के तहत सेवा गतिविधियों के साथ शाम 7 बजे दीप प्रज्वलन होगा। और इसी दिन मतलब 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक विद्यालयों में चित्रकला और भाषण तथा उच्च शिक्षण

साथियों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM सुन रहे कार्यक्रम यंग बरेली। साथियों अगर आप भी डिजिटल दुनिया की भागदौड़ से उकता गए हैं, सोशल मीडिया से उकता गए हैं, तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है बरेली वासियों के लिए। साथियों डिजिटल दुनिया की भागदौड़ और लगातार बजती फोन नोटिफिकेशंस के बीच बरेली के युवाओं ने वीकेंड बिताने का एक नया और सुकून भरा रास्ता ढूंढ लिया है। शहर के कैफे, पार्कों और खुले मैदानों में अब केवल शोर शराबा या पार्टी कल्चर ही नहीं बल्कि एक शांत क्रांति देखने को मिल रही है। साइलेंट लिटरेचर क्लब्स के नाम से मशहूर ये नया ट्रेंड युवाओं को स्क्रीन से दूर ऑफलाइन दुनिया में बिना किसी प्रेशर के एक दूसरे से जोड़ रहा है। अलग अलग उम्र, बैकग्राउंड और रुचियों के लोग अपनी अपनी पसंदीदा किताबें लेकर एक जगह जमा होते हैं और पढ़ने का आनंद लेते हैं। तो साथियों आप भी अपना एक ऐसा ग्रुप बना सकते हैं जहां पर आप अपने दोस्तों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक ऐसी जगह चुनें जो शांत हो और जहां बैठकर आप पढ़ सकें, तो थोड़ा आपको मानसिक सुकून मिलेगा। और हफ्ते में एक दिन ऐसा किया जा सकता है क्योंकि सभी लोग सोशल मीडिया पर उसका इस्तेमाल करते करते थोड़ा थक से गए हैं, तो ये एक नया तरीका है अपना वीकेंड को एंजॉय करने का भी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यंग बरेली 100.4 FM पर। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8:45 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं लोकगीत। श्रोताओं, लोकगीतों के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अमित चंद्र शर्मा के गाए इस लोकगीत के साथ।

श्रोताओं, इंदु शर्मा की गाई इसी लोकगीत के साथ लोकगीतों का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। आइए अब आपको जोड़ते हैं विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।

आपने ट्यून किया है विविध भारती और प्रोग्राम है चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवाते हैं रामलीला गोलियों की रासलीला। इस फिल्म का गीत श्रेया घोषाल और उस्मान मीर की आवाजों में, सिद्धार्थ गरिमा ने इसे लिखा है, संजय लीला भंसाली का संगीत।

साथियों, आज इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी भी है, यानी कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हृदय स्वास्थ्य और आधुनिक चिकित्सा तकनीकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का ये अवसर है। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी एक एंजियोलॉजी स्वास्थ्य में सुधार करती है, जीवन प्रत्याशा बढ़ाती है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है। पहली कोरोनरी एंजियोप्लास्टी डॉक्टर एंड्रियास गुंट

0: गुंड ग्रुंड जिग द्वारा 16 सितंबर 1977 को की गई थी। सितंबर 2022 में महासभा ने 16 सितंबर को इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया। वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं विशाल ददलानी, के नीति मोहन और बप्पी लाहिड़ी की आवाजों में गुंडे फिल्म का गीत। इरशाद कामिल के बोल हैं, सोहेल सेन का संगीत।

0: बैंग बैंग फिल्म का गीत अभी आपने सुना हर्षदीप कौर और बैनी दयाल की आवाजों में। अन्विता दत्त ने इसे लिखा था और विशाल शेखर का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: एआर रहमान के संगीत निर्देशन में सुनिए इरशाद कामिल का लिखा ये गीत। अलका याग्निक और अरिजीत सिंह ने इसे स्वर दिए हैं और फिल्म का नाम है तमाशा।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं ABCD फिल्म का गीत हार्डकोर की आवाज में। मयूर पुरी ने इसे लिखा है, सागर जिगर का संगीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉर्ट किया मैंने, शुक्र।

0: गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

संगीतकार राम लक्ष्मण का असली नाम है विजय पाटिल। संगीत का शौक बचपन से ही था और वो पहले कॉलेज के जमाने में नागपुर में और फिर मुंबई में स्टेज प्रोग्राम्स दिया करते थे और उसमें बजाया करते थे। विजय पाटिल अकॉर्डियन बहुत अच्छा बजाते थे। फिर उन्होंने मुंबई में अपना एक दल बनाया और अपनी बनाई तर्जों को ही स्टेज पर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक कार्यक्रम में दर्शक थे दादा।

कौन के। वो इनसे इतना प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म पांडु हवलदार का संगीत उन्हें सौंप डाला। उन्होंने ही विजय पाटिल का नाम भी बदला। वास्तव में राम और लक्ष्मण दो व्यक्ति थे, पर उनमें से एक साथ ही राम की मृत्यु हो गई, लेकिन नाम दोनों का ही चलता रहा, यानी राम लक्ष्मण के नाम से ही संगीत चलता रहा।

0: तबीयत है जनाब की?
1: संगीतकार राम लक्ष्मण का मानना था कि लोकप्रियता उसी गीत की होती है जिसे हर आम आदमी गुनगुना पाए। अपने संगीत में इस तत्व का उन्होंने हमेशा ही ख्याल रखा। राम लक्ष्मण की पहली सुपरहिट फिल्म रही राजश्री प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत तराना। ये आई थी 1979 में। इस फिल्म के लगभग सभी गाने बहुत ही मशहूर हुए और लोगों ने इस संगीत को बहुत बहुत पसंद किया।

संगीतकार राम लक्ष्मण ने अपने सुरीले रस भरे गीतों से ऐसी ही संगीत वर्षा की। हम आपको बता दें कि गीतकार असद भोपाली के साथ राम लक्ष्मण ने ढेर सारी रचनाएं तैयार की, लेकिन उनमें से अधिकांश तो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकी। राजश्री और दादा कोंडके के अलावा प्राणलाल मेहता और दीपक बाहरी ने भी अपनी फिल्मों के लिए राम लक्ष्मण के संगीत को अक्सर चुना, इसलिए राम लक्ष्मण को मौकों की कमी कभी भी नहीं रही। अगर बात करें 80s की, तो बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में आईं जिसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक उस समय बहुत बहुत सुना गया और सुनने वालों ने, दर्शकों ने बहुत बहुत सराहा। कुछ फिल्मों के नाम याद कर लें, जैसे उस्तादी उस्ताद से, इस फिल्म के सभी गाने बहुत अच्छे थे, और आंगन में तुलसी एक फिल्म थी, उसके गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए, और राजश्री प्रोडक्शन की सुन सजना और सुन मेरी लैला के गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए। और सबसे ज्यादा 80 के दशक में राम लक्ष्मण का जो गीत प्रचलित हुआ, सुना गया, सराहा गया और आज भी उसी चाव से सुना जाता है, वो है हमसे बढ़कर कौन फिल्म का। ये फिल्म आई थी 1981 में और ये गाना बहुत बहुत सुना गया और पसंद किया गया।

मराठी फिल्म पांडु हवलदार या माला घिउंजाला की अपार लोकप्रियता से प्रेरित होकर 1989 में राम लक्ष्मण ने मीनल राव के साथ स्वयं गाकर मराठी हिस्का नाम से एक मराठी पॉप एल्बम भी निकाला था। वैसे राम लक्ष्मण अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। हिंदी फिल्मों में असफल दौर भी उन्होंने देखा, पर राजश्री ने उनका साथ नहीं छोड़ा और 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया, इसने तो लोकप्रियता के कीर्तिमान स्थापित किए और संगीत तो लाजवाब था। राग पहाड़ी और शिवरंजनी की लोक धुनों का इस फिल्म में राम लक्ष्मण ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आधुनिक रिद्म के साथ पहाड़ी के लोक सुरों से सम्मिश्रण से सृजित दिल दीवाना बिन सजना के मानेना गाना बहुत बहुत पसंद किया गया और मैंने प्यार किया की अभूतपूर्व सफलता ने राम लक्ष्मण को वर्षों बाद फिर से एक बार लोकप्रियता का स्वाद चखाया।

राम लक्ष्मण के संगीत में एक अपनापन, एक घरेलूपन सा होता था जिसे सुनने वाले बहुत बहुत पसंद करते थे। हम आपके हैं कौन उनकी ऐसी ही फिल्म थी जिसका एक एक गीत

आपकी है कौन उनकी ऐसी ही फिल्म थी जिसका एक एक गीत बहुत ही मशहूर हुआ। वैसे उनकी फिल्म सातवां आसमान भी एक उल्लेखनीय फिल्म है जिसके गाने बहुत सुने गए।

संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीत से सजी बहुत सारी फिल्में हैं। इस कम समय में उनकी सारी फिल्मों के गानों की हम एक एक लाइन भी नहीं सुनवा सकते हैं, पर फिर भी हमने कुछ कोशिश की।

0: कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था, वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10 बजे हैं और समय होता है सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का।

श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सभी के बहुत सारे संदेश हम तक पहुंच चुके हैं, बहुत सारे कमेंट फरमाइशी हम तक पहुंच चुके हैं हमारे सोशल मीडिया पेज पर। और शुरू करते हैं आपके नामों का सिलसिला। ये हमारे श्रोता हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से, रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीडी छाबड़ा। आप हैं नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, तौसीफ हाशमी, तैमूर और कलीम अंसारी। ओखला संगम बिहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम और सुंदरम गुप्ता। राजनगर गांधी चौक मधुबनी से अरुण गुप्ता, मौसम और शिवम गुप्ता। राजकमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी जिला जालना मराठवाड़ से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, रामबाऊ तांदले, धोतर जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते और अनुष्का सागुते। मगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी। आप हैं कुडवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी दुविहार नेवादा। जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय। होली चौक उत्तमनगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन और दीपांशु खोरवाल। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती विदर्भ से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय कुमार प्रसिद्धि और हीरामण शिंडे जी। पटियाली रोड गंज डुंडवारा से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, आकिल कुरैशी, एजाद कुरैशी और अरीबा हबीबा। बठिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग।

जो नारंग मोहित होता नहीं है नारंग। परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी। पांजरा बोरी जिला भंडारा महाराष्ट्र से भवन रामटेके, वैशाली, अर्षी और आस्था रामटेके। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल लाडी, शालिनी टिवानशी, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बूक। कटरा चांदखा पुराना शहर बरेली से हमारे श्रोता जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि और मानवी मौर्य। ऊंचे गांव नांदेड़ से देवानंद शिंदे पाटिल। ग्राम नवागांव मुड़ही पार जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सोहनलाल साहू, रुक्मणी तेजेश्वर, कुशाल साहू। बहेड़ी से अंजुम भाई, खालदा बेगम। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया। आप हैं ग्राम लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। मोहल्ला हलवाया शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू, साजदा रानी और हिना कौसर। आप हैं ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर, अबरार हुसैन, मुन्ना भाई, आशिक हुसैन। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला, विशाल नावकर। मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान, आशीष। और ये हमारे श्रोता ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। पटेल नगर मलोट से रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू जाजौरिया और गुड्डू। आप हैं गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा और सार्थक शर्मा। चल डोगरी पेपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, जयकिशन साहू, कुमारी साहू, इंद्राणी, माया साहू। आप हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा और हर्ष आहूजा। आज़ाद रेडियो श्रोता संघ रजोखर बाजार अररिया बिहार से शरीफ, आरजू और गुड्डू रंगीला। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना और एसके पप्पी। पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से हमारे श्रोता शिवा गोप, प्रेम, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली गोप। गांव बांडी वाला फजिलका से ओम बगड़िया, क्रियांश, रजत और बेबी गर्मा बगड़िया। गांव खोखरावाली श्री गंगानगर से विनोद बारासा, विशाल विकास, रोशनी और शगुन बारासा। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ साइना और निवान शर्मा। उदयपुर राजस्थान से बाबू भाई, भारती देवी, रमेश नाचानी, विनीत, मिथिला नाचानी, गोपाल तंबोली और तिलक तंबोली। उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भैरूलाल वाक्तरिया, धाकड़, भोला वाक्तरिया, प्रवीण, रियांश और प्रतीक वाक्तरिया। आप हैं शेरवानी स्कूल गंजडुनवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर लुबना और आलिया अंसारी। गड़िया मोजे उसतु से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन, करीना कुमारी, पूजा, आरती और सुनीता देवी। शनि मंदिर चौक कंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता और गौरव सैनी। आप हैं हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनौली, सोनम, आशीष विश्वकर्मा। आप सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं फिल्म महानता का ये गीत जिसको आए हैं अलका याग्निक ने। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के लिए। आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेरा जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। हितेंद्र दास आसाम से हैं, जसपुर उत्तराखंड से। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, सपनीन परवीन और माहिरा नूर। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश तारनी, सूरज ज्योति और बाबू रियांश ठाकुर। जिला नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्णव, दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति जायसवाल। अड़ाव नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा। रेलवे रोड गंज डंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, दबीरुल हसन, शबनम अनवार, नजमा बेगम नाज और सरिता गौतम। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश राज वर्मा, प्रीति कार्तिक, आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पिहू स्वर्णकार। मुजफ्फरपुर से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, रचना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी और नंदिनी कुमारी। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, महेश्वरी देवी, सोनू, मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष, शौर्य और दिनेश। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुतासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद। बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। आप हैं चंदूलाल पटवा, सुनीता, हर्ष कुमार, विनीत कुमार और कुमारी कृष्टि पटवा। धरदेही सरगांव छत्तीसगढ़ से मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु सागर, उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक। ये हमारे श्रोता मोहल्ला सनैया धन सिंह बरेली से। राय सिंह पाल, एनपी सिंह, धर्मवीर भारती, जुगेंद्र यादव, रविंद्र यादव, प्रेमपाल दिवाकर, महेंद्र पाल, अनुज पाल और अनन्या पाल। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीबा, कपिल चीबा, ईशान और पूजा परिहार। शनि बाजार कस्बा उगैती बदायूं से प्रभाकर गुप्ता, अवधेश, सचिन देव, प्रियल, कायरव और गौरी गुप्ता। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा, अलका मिड्डा। आप हैं ग्राम्बा पोस्ट गोठा खंडवा से राम बाबू मिश्रा, कृष्णा देवी, दिलीप, माधुरी, प्रदीप, सविता, सत्यम, शीतल, राधा, सलोनी, शिवम मिश्रा। गंज डंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान, उस्मान यासीन और शमसुल कमर राही। गांव भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन, वकील अहमद। और ये हमारे श्रोता चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। पद्मा टॉकीज नेपानगर, मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। ग्राम नथाना पंजाब से हरजिंदर, छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू, टॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा। आप हैं गंगवार रेडियो श्रोता संघ दलपतपुर बरेली से ओमपाल गंगवार, अनीता गंगवार और आपके मम्मी पापा। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष और विनोद खड़से। आप हैं टीवी टावर नागपुर महाराष्ट्र से नाना डोंगर दीवे, रमाताई, दीक्षा, रीमा और राहुल डोंगर दीवे। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से अलीम पटेल, मुजाहिद और नदीम पटेल। सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और पार्थ हियांश चंदन। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से नारायण भाऊ खड़से, गणेश कार्तिक खड़से, संजना परी, लड्डू देवी चौधरी, स्वाति। और आप हैं गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे और शैलेश लोखंडे। कस्बा गोहती बदायूं से धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, देवेंद्र गुप्ता, डीके हिटलर और आपके परिवार के सभी सदस्य। नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य, बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से। रामचंद्र गुप्ता, शोभा गुप्ता, धनबाद झारखंड से हमारे श्रोता। 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से कुमारी वंदना मराठा।

और रेखा पूजा रघुवंशी, नंदिनी बबीता रघुवंशी, ललिता जगदीश चौहान, चंदा युवराज वानखेड़े, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलगन वर्मा, अंजना ज्योति, प्रहलाद राजेंद्र, रेखा पाथ कश्यप, अजीत कसाना, माया देवी ऋतिक और आदित्य कसाना कांठ रोड लदावली से। आप सभी श्रोताओं के लिए सुनवाते हैं फिल्म मैंने प्यार किया का ये गीत है, जिसको गाया है लता मंगेशकर ने, गीत के बोल असद भोपाली के, संगीत निर्देशन राम लक्ष्मण का।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में गुरुवार दिनांक 17 सितंबर 2026 को 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है माइग्रेन एवं सिरदर्द की समस्या और उसका आधुनिक इलाज, शंकाएं व समाधान। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे बुधवार दिनांक 16 सितंबर 2026 यानी आज 4:30 से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 0581251720 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के न्यूरोसर्जन डॉक्टर विकास गुप्ता उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लें। विषय है माइग्रेन एवं सिरदर्द की समस्या और उसका आधुनिक इलाज, शंकाएं व समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, बुधवार दिनांक 16 सितंबर 2026 यानी आज 4:30 से। और हमारा टेलीफोन नंबर है 0581251720। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के लिए कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार राहुल रणजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका मन्नत गुरकीरत राहुल गुरशब सिंह राहुल दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा पारसमढ़ी पुष्पेंद्रमणि और नोखीलाल वर्मा आप हैं राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े ज्योति नरवाड़े आकांक्षा और आकाश कुमार जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा अर्चना अनुज आयुषी रमेश चंद्र वर्मा शेख मूसा राजकुमार बोड़ाना सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी रोहित ऋतु और मुकेश जगताप आप हैं धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह सुनीता अंकिता और गुड़िया वेदा सिंह बुलंदशहर से उमेश गौड़ रानी गौड़ कस्बा क्योलड़िया नवाबगंज जिला बरेली से राजेंद्र गंगवार प्रेमपाल धर्मवीर सचिन अनुज अनमोल कमलेश तुलाराम अंकुश राजू चंद्रपाल उल्फत शर्मा बबलू वेदपाल और संजीव गंगवार गांधीनगर महेश्वर मध्य प्रदेश से श्याम यादव सोना यादव सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से गजानू येले नवदीप विश्वदीप और अवंतिका येले मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी शहनाज अब्बासी नवेद हसन सुहेल और अनम यशफ किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान ये हमारे श्रोता शिवानी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार अमर दिलीप वर्मा राजू रजन रजक संजीव वर्मा विपिन गुप्ता अरुण कनौजिया संजय सोनी पवन यादव सुनील जैन लालू सोना मोना हनी यश सौम्या और आपके बहुत सारे साथी ग्राम खकल तहसील कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर सत्यम सिंह अंशुराज और आपका समस्त परिवार बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया नमन और अपार ढिंगिया

हैं सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब राम टेके और यशोधरा राम टेके, सेक्टर नंबर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज, दुर्गा कॉलोनी हादसे से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। आप सभी श्रोताओं के लिए सुनवाते हैं फिल्म तलाश का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में।

श्रोताओं स्वर परीक्षा हेतु सूचना सुनिए। आकाशवाणी बरेली करने जा रहा है अपने एसआईनी पैनल का विस्तार। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए है सुनहरा मौका। है आपकी आवाज में वो दम, वो क्रिएटिविटी जो रेडियो पर चला सके अपना जादू, तो देर किस बात की। चले आइए आकाशवाणी बरेली। आकाशवाणी बरेली अनाउंसमेंट, ट्रांसमिशन और स्पेशल ऑडियंस कार्यक्रम जैसे नारी संसार और युववाणी, ग्राम जगत, अंकुर कार्यक्रम में असाइनमेंट के आधार पर कार्य करने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आपकी उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए, युववाणी के लिए 10+2 और बाकी के लिए कम से कम ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, और हाँ बरेली नगर निगम में ही रहते हों यह भी जरूरी है। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए 1 सितंबर से किसी भी वर्किंग डे और वर्किंग टाइम में आकाशवाणी आकर आवेदन पत्र लेना होगा। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है 20 सितंबर। तो किस बात का इंतजार है, चले आइए और हमसे जुड़ जाइए। सूचना समाप्त हुई। कार्यक्रम का ये गीत आप सभी श्रोताओं के लिए। आप हैं गुमला झारखंड से नजमुल हुदा एसएम जावेद, दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से भाई प्रेम सिंह बड़वाल, सुखवीर काजल बड़वाल, लखवीर रानू, कृष्णा, श्रीमती शिंदो, प्रवीण शीतल, नवीन रंगीला, निशान अनमोल और चटकू मटकू। ये हमारे श्रोता अकोट जिला अकोला महाराष्ट्र से राम राव नितोने, शारदा नितोने, सानिका और रिया। ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जाधव, अनुसुईया और पवन राजे जाधव। कटा चांदखा पुराना शहर बरेली मौर्य मंदिर से रतन माला मौर्य, मुकेश, प्रिंस, प्रियांशी, पुष्पा, गौरव, चंद्रप्रकाश और मनु भाई। धनौली तेली वाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू। आप हैं सोमिया नजमीन, रुकैया आफरीन, रेहाना प्रवीण, माहे आरजू, अररिया बिहार से। कस्बा गहती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, प्रिंस कुमार प्रशांत और कार्तिक गुप्ता। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, आसमान आज अंसारी, शबनम बानो। जेल रोड बक्सर से राज एस डी अंसारी और फातमा नाज। चमन पार्क दिल्ली से सोनम और अदीबा। बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार, मालवीय दर्द, सरिता मालवीय। आप हैं नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार, नुजत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद, इकबाल अहमद, वसीम और पप्पू भाई अंसारी। रसूलपुर मीरगंज से अल्ताफ हुसैन अंसारी। और ये हमारे श्रोता हैं नारायण खांडे, रजनी, तुषार और समीर खांडे। मन की लोरमी छत्तीसगढ़ से मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे, वसंतराव भोजने, पीएस नावकर और मोहन करांगले। चमनपुरा उदयपुर से नजीब खान, सबीहा खानम, फरीदा, जब्बार मोहम्मद, अशरफ खान और रईसा खातून। ग्राम चतुरपुर कुंदर की मुरादाबाद से एम मुनाजिर खान, फिरासत फारूकी, मुअज्जम मुस्तफा और गौसिया भी। नगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण, राहुल और मनीष शर्मा। आप हैं बहेड़ी से इश्तियाक अहमद इदरीसी, दीपक जाधव बुलढाणा महाराष्ट्र से, जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल। गांव काबरेल जिला हिसार हरियाणा से सुरजीत सिंह इंदौरा, विशाल कुमार इंदौरा। अमरावती महाराष्ट्र से शारदा वर्धे, सतीश वर्धे और रिशा। तिवर्ता डबरीपारा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती मरकाम, ममता मनीष, सुरेंद्र मरकाम, मोहन सिंह मरकाम और सहोदरी भाई मरकाम, चंद्रपाल मरावी। मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। आप हैं पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। गांव टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका और पाणी थांदी। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश्वरी, ट्विंकल, टिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। जमनी मोहल्ला इस्लामनगर बताई से मुजफ्फर अली खान, मतीन खान, अल्फिया, इंशा, हादिया खान। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर।

सदानंद बंदुरकर कुमार गौरव, आप हैं पूर्णा देगांव से सदाशिव थोरात, कविता थोरात, श्रेया और बंटी थोरात, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराने शहर बरेली से अनोखीलाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू आरोही और स्वाति मौर्य। ये हमारे श्रोता गांव झरी जिला परभणी महाराष्ट्र से दत्ता जगाड़े, राघव और गौरी जगाड़े, मल्हार जगाड़े और आपका पूरा परिवार। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतेग और मीका विरक। आकोट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए, के संजीव डावेराव। विरम गांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश कुमार भावसार और सनी भावसार। आप हैं विष्णु मिस्कीन, रितिका आरोही वाणी और आपका समस्त परिवार। दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से, जिला मुरादाबाद, ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी। आप सभी श्रोताओं के लिए सुनवाते हैं फिल्म ब्लफ मास्टर का ये गीत, जिसको गाया है मुकेश ने। गीत के बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं और संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का।

कार्यक्रम का अगला गीत आप श्रोताओं के लिए मोहल्ला ख्वाजा नगर कुंदरकी से जकर खान, नजीम खान, सोहेब खान, जिक्रा नूर, सादी फातिमा और अरीब खान। यह हमारे श्रोता जय जिनेन्द्र, श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संगई, महेश प्रगेश और प्रतीश संगई, साथ में आपका समस्त परिवार।

अगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू, आप हैं कोलसिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, कमल कुमार और मोहम्मद अफजाल मलिक, मुंडा टोला बालूत से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल, कामेश और माहिर नेताम, आप हैं राजेश भारती रेडियो श्रोता संघ कुलीपाड़ा कटिहार से राजेश भारती, बेवारानी, आदित्य राज, प्रिया भारती, प्रियंका, प्रेरणा, प्रगति, आशीष, प्रिंस, संतोष, लक्ष्मी, संजीव, रश्मि, मीठी, आयुष और कैंडी और साक्षी। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश, राजेश कुमार, रूबी भारती, एकता, दिव्या, रचना, ओमवती, खनक, शगुन, सारांश, अंश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रताप सिंह। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोड़ाना। भोला कॉलोनी घरौंडा जिला करनाल हरियाणा से बिजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल, वाणी जयजान और ये हमारे श्रोता हैं। सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से पवन गौड़, सुयश गौड़, आशीष तन्मय और अपूर्वा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। आप हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून। एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, डब्बू सम्राट, चैतन्य मस्किन और मेगा मस्किन। साई की शिरडी से सुरेश मालोदे, वर्षा मालोदे, श्रद्धा और मानसी मालोदे। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याण, सुरेंद्र शमशेर और मनोज भ्याण। ये हमारे श्रोता हैं। गांव जलालपुरा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम आर्यन, लवेश और मुनेश देवी प्रजापति। गांव सिद्धूवाला सूरतगढ़ राजस्थान से इंद्राज जियाणी और अंकुश जियाणी। कुलस्वामिनी रेडियो श्रोता संघ श्रीरामपुर भोकर से भोकर महाराष्ट्र से हरिभाऊ बिडवे, पूजा, शुभांगी, श्रावण, अनिकेत और अनिता बिडवे। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रेहान और तुलसी चुग। ये हमारे श्रोता। जनकपुरी नई दिल्ली निकट मेगांता मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली से प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा और प्रथम सलूजा। आप हैं मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित और पीयूष कुमार। शाहजीनगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मी मल्होत्रा, कोयल नानक चंद, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल डुग्गू, भाविक सिक्का। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, बेबी गर्भी और हिमाक्ष। आप हैं गंज टुंडवारा उत्तर प्रदेश से खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाज शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी और राधा नामदेव। इस्लाम नगर पवसरा जिला बदायूं से सत्यदेव कुमार राणा और विष्णु कुमार राणा। कड़ी कोटहा जिला पंचकुला हरियाणा से सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, अकरम अंसारी, शानिया अंसारी, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद हुसैन, अक्सा अंसारी, आयशा, उमर अंसारी और समीना अंसारी। विवेक रमण रेडियो श्रोता संघ भारती नगर मुश्कीपुर खगड़िया से विवेक रमण, अक्षित, परिधि, विनीता, बबीता, राजेश, कैंडी, बाबूजी, साक्षी, रश्मि, संतोष, अक्षित और अंशु, शिवम। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास और रानी मानिकपुरी। आप हैं जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा और राजकुमार बोड़ाना। सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष, अंशिका, यूसुफ, यूनिस खान और सोफिया खान। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला, सबाहत, किरत हुजरे, रेहान शेख। और आप हैं अमरावती से श्याम किटे, वंदना किटे। रंगोली रेडियो लिसनर्स ग्रुप राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत सिंह राजपूत, चुलबुल रानी। दरभंगा से क्रांति भगत, कामेश्वर प्रसाद भगत, मेनका मुखिया, संगीता पासवान। अनूपपुर मध्य प्रदेश से जय मंत्री केवट और अंजलि केवट। आप हैं उत्तम कुमार बघेल, रुकमणी बघेल, साहिल भारती बघेल, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। और ये हमारे श्रोता जावेद इनायत, यूसुफ इनायत, लीजेस्टर इंग्लैंड से।
ग्राम पंचायत बाकरगंज तहसील।

0: फरीदपुर पानी की टंकी के पास से सुनील बाबू, शिवम सिंह, अभय मित्र, भगवान देई, स्वाति सिंह, तान्या गौतम और आपके सभी मित्रगण, ग्राम करेली जिला बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, माहिनूर अंसारी, नसरीन अंसारी, समा अंसारी, शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम, अजीम, अदीम, अब्दुल गनी, अलमीर और जन्नत, ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी, रईस दुला अंसारी, और ये हमारे श्रोता मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब, बाजार रोड मुगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमर निशा शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना, अलिजबा, अयान मंसूरी, यश मंसूरी और नुमैर मंसूरी। आप हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा। आप सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं फिल्म अनोखी अदा का ये गीत, किशोर कुमार की आवाज में, गीत केवल मजरू के, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: दिलों का न पूछो सनम आप।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के लिए वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद अल्तमश खत्री और मोहम्मद शादाब खत्री, ग्राम बपोत हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शरुनूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान। आप हैं चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से मुकेश गौतम, सुनील अमन गौतम, बुद्धनगर खंडवा से नदीम भाई, बैजोई से राजू यादव, मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, सुनीता योगेश, मुस्कान जितेंद्र, धर्मेंद्र, रीना, निशा, मीरा और हैप्पी मालाकार। सुरेंद्र खुराना न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से हैं हमारे श्रोता। ये ग्राम अलगी डांड़ जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से जोहित यादव, विपिन, आयुष, अतुल और फूलजी यादव। ये हमारे श्रोता अलखनाथ मंदिर के सामने से।

बेचेलाल गंगवार, गुड्डी देवी, प्रशांत देव, ज्ञानेंद्र देव, इला देवी गंगवार, बर्फा देवी, सुनील यादव, महावीर कश्यप, संजय अग्रवाल, अश्विनी कुमार मौर्य, बाबू भाई, रमेश चंद्र सैनी, गौतम राम, श्री राम राठौर, पारस और राज कश्यप। और आप हैं सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा। मौलागढ़ नई बस्ती बरेली से तरन्नुम अंसारी, तराना अंसारी, अजरुद्दीन मोहम्मद हसन अंसारी। ग्राम करेली भिंडी मोहल्ला बरेली से ईशाक अहमद अंसारी, अफसार अहमद अंसारी, अंसार अहमद, दिलदार अहमद, मोहम्मद अर्श और मोहम्मद आरिश। गंज डंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन, फातिमा और अनु खान। आप हैं नंदन कुमार सिंह, अंकित कुमार सिंह जिला बेगूसराय बिहार से, संदीप कुमार सिंह, संजय कुमार और जिला मोतिहारी बिहार से, सलार पहलगांव का।

दीन मोहम्मद हसन अंसारी, ग्राम करेली भिंडी मोहल्ला बरेली से इशाक अहमद अंसारी, अफसार अहमद अंसारी, अंसार अहमद, दिलदार अहमद, मोहम्मद अर्श और मोहम्मद आरिश, गंज डंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा और अनु खान, आप हैं नंदन कुमार सिंह, अंकित कुमार सिंह जिला बेगूसराय बिहार से, संदीप कुमार सिंह, संजय कुमार और जिला मोतिहारी बिहार से, सलार पहलगांव कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, कैसरुद्दीन और आप हैं चनौरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता, राम और श्याम, रवि, आर्यन और आपके सभी साथी। स्मिता रेडियो रिपोर्टिंग ग्रुप भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, अकिता जोशी, अंकिता जोशी, गीता श्रीनिवास श्रीवास, लक्ष्मी ध्रुव, रानू अग्रवाल, वैदेही जोशी और हंसका जोशी। जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू जी। ग्राम पंचायत बाकरगंज तहसील फरीदपुर जिला बरेली से राजकश्यप, सर्वेश, अमित, सुमित, सत्यदेव, आर्यन, दीपेश, शिवम, रचित, आप हैं गांव लाहौरडेरा जिला बागपत से। जगमोहन सिंह प्रजापत, मनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन, भुवनेश्वरी देवी, सुधीर नूतन, रामानंद कश्यप, करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति और सुमन देवी। जेल रोड दिल्ली से लालबाबू दीवाना महाराज, दिव्या भारती, बेताब रेडियो लिसनर्स क्लब बिहार से वसीम अकरम, बेबी जोई और गुड़िया खातून। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना गुरुवंश सिंह जोड़ा, गांव हीरावाला फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु, पार्वती, हिमांशु गोदारा और हमारे ये श्रोता हैं पूजा रेडियो श्रोता संघ पलेरा हाल टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, राजेश कुमार अकेला, यशोदा यादव, राजीव और संजीव यादव। पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सैयद भाई, सुफियान, अनस, आयजा, सरोज चौक से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया, आफिया और मुस्तफा खान। श्री गंगानगर राजस्थान से नेकीराम बंसीवाल, आप हैं कोरिया से डोनट पावो, छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया और गौरैया, जालंधर से अशोक जाटव। माउली रेडियो श्रोता संघ आसल गांव बाजार बुलढाणा महाराष्ट्र से राजू माठे, गजानन संजय और ज्ञानेश्वर माठे। ओल्ड लिसनर्स ग्रुप बिहार जोन से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, अरविंद कुमार झा, फैसल इमाम, राजेश भारती, रामदेव पटेल, मौसम गुप्ता और रुद्र भाई। गांव जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। गांव भोजपुर तका चिलकाना सहारनपुर से मोहम्मद जावेद, अदीब हन्नान, जीनत जावेद, नाहिद रानी, आयत सिकंदर और मोहम्मद इंतजार। बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से विनोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। आप हैं प्रदीप सलूजा जनकपुरी नई दिल्ली से। ईदगाह जनूबी जिला भक्कड़ पंजाब से रेहाना खान, मुबारकपुर ऊंची तकी आजमगढ़ से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार हैदर, कनी सकीना, हसीना दिलशाद, रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और ये हमारे श्रोता नाना जी लाम से, मीना लाम से, तेजस और हर्षिता लाम से, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेडी से और श्री काशी नगर काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनीत, विनती, विनायक सिंह, मोहिनी, मोहित सिंह और कोको रानी। पतली गली बनारस से मुश्ताक सुलेमानी और शाहिद सुलेमानी। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव और ये हमारे श्रोता हैं चौखड़ा धाम कॉलोनी सनावत जिला खरगोन से कृष्णपाल सिंह चौहान, तारा देवी, नवोदित सिंह चौहान, वैभवपाल ध्रुवी और प्रद्युम्न सिंह चौहान। आप सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं फिल्म दर्द का ये गीत जिसको अपनी आवाज़ दी है उमा देवी ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरंग। श्रोताओं, कार्यक्रम सबरंग में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुरेश वाडेकर के गाए इस भजन के साथ।

श्रोता हूँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM और सुन रहे कार्यक्रम सबरंग। आई कार्यक्रम सबरंग में अब आपको सुनवाते हैं अनिता जौहरी और सखियों के स्वर में ये लोकगीत।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 7 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: श्रोताओं, ये कार्यक्रम सबरंग में अब आपको सुनवाते हैं कैलाश खेर का गाया ये गीत।

श्रोताओं, मिताली सिंह की गाई इसी गजल के साथ कार्यक्रम सबरंगी यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:30 होने को हैं। आइए अब हम आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे FM रेनबो के कार्यक्रम।

0: क्या धारणा मैंने की है, या जो विशेष ट्रांजेक्शंस की हमने बात की थी कि फॉरेन ट्रेवल ना किया हो या बिजली का बिल ना भरा, और अगर नई रिजीम में तो 4 लाख।
1: बिल्कुल, और हमें उम्मीद है कि उन्होंने हमारा कार्यक्रम अगर सुना होगा तो उनको पहले ही जवाब मिल गया होगा। और अभी प्रशांत जी ने हमें मेल किया है बाराबंकी से, ये लिखते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और कुछ चीज़ों के बारे में जानना चाहता हूँ, जैसे कि ITR है, क्रिप्टो है, बिटकॉइन है, और इनके टैक्सेशंस के बारे में।
0: ओके,
1: तो कुछ क्योंकि ये युवा है और उनकी जानकारी वाकई में वाजिब है। तो
0: ये,
1: मतलब
0: ये जो बिटकॉइन जी जो मेल में, प्रशांत जी तो आपको आभार, ये जो बिटकॉइन जो एक विषय है, ये आज का एक बहुत उभरता हुआ विषय है। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। ये एक डिजिटल करेंसी है बेसिकली, है ना। डिजिटल करेंसी का मतलब ये हो गया, जो हम लोग आजकल देख रहे हैं ये रुपए नॉर्मल रुपए की तरह नहीं है, ये एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमी है, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मनी है।
1: यानी कि तो, जो आपको कैश में नहीं दिख रहा है लेकिन वो है, जो कैश में परिवर्तित हो
0: तो
1: सकता
0: ये जो क्रिप्टो करेंसी कहलाया ये जी। तो क्रिप्टो करेंसी आज की डेट में कई तरह की है, जैसे इन्होंने एक नाम लिखा बिटकॉइन, तो इथीरियम है और बहुत सारी और क्रिप्टो करेंसीज है। तो क्रिप्टो करेंसी के जो रेगुलराइजेशन और टैक्सेशन से संबंधित व्यवस्था है, ये आयकर अधिनियम ने वित्त विधेयक 2022 से लाई। उससे पहले इससे रिलेटेड जो व्यवस्था थी थोड़ी अधर में थी। RBI ने इसको पहले अवैधानिक घोषित कर दिया था 2018 में ये क्रिप्टो करेंसी को, और फाइनली इसका जो टैक्सेशन रिजीम है वो आयकर अधिनियम फाइनेंस एक्ट 2022 के अधिनियम से लाया गया, और इसके लिए एक विशेष कर की व्यवस्था बनाई गई, और इसको नाम दिया गया है इस तरह की जो असेट्स होते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का असेट है, जैसे मनी भी एक असेट होता है, आपकी एक संपत्ति होती है, तो इसको नाम दिया गया है वर्चुअल डिजिटल असेट। ऐसा असेट जो कि वर्चुअल है, डिजिटल फॉर्म में है, उसका डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है और ये एक असेट है, तो इसको लिए विशेष परिभाषाएं गठित की गई आयकर अधिनियम की धारा 2 में, पुराने और नए अधिनियम दोनों में, और इसके टैक्सेशन और TDS की व्यवस्था बनाई गई है। तो जो इनका प्रश्न है कि एक स्टूडेंट है और बिटकॉइन क्रिप्टो के बारे में, उसके टैक्सेशन के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो उसका विस्तृत जवाब यही है कि इसमें TDS के भी प्रोविजंस आते हैं। TDS के प्रोविजंस कैसे आएंगे कि अगर इन्होंने किसी एक्सचेंज के माध्यम से, जैसे स्टॉक एक्सचेंज से हम शेयर खरीदते हैं, तो किसी एक्सचेंज के माध्यम से अगर बिटकॉइन खरीदा है, या पीयर टू पीयर किसी से दूसरे से खरीदा है बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी, जिसको कि वर्चुअल डिजिटल एसेट कहते हैं, खरीदा है, तो TDS की दायरे में

0: आएंगे, जो टीडीएस कौन काटता है, जो कोई भी ट्रांजेक्शन का, जैसे मान लीजिए मुझे पेमेंट करना है ना,
1: डिडक्शन है।
0: डिडक्शन
1: जी
0: है,
1: जी
0: पेयर को काटना होता है,
1: जी
0: तो उसको टीडीएस काटना होगा। तो इसके लिए आयकर अधिनियम की इस विशेष धारा, जो नए अधिनियम में 393 है और पुराने अधिनियम में 194 है, जो कि फाइनेंस एक्ट 2022 से, जुलाई 2022 से लागू है, तो
1: जी
0: टीडीएस कटेगा 1% अगर ट्रांजेक्शन की वैल्यू 10,000 से ज्यादा है इंडिविजुअल के केस में,
1: जी
0: और अगर उसका थ्रेशोल्ड नॉर्मल बिजनेस और ट्रेडर है 50,000 से ज्यादा है तो भी 1% का टीडीएस कटेगा, पहली बात तो ये। और इसके टैक्सेशन की जो व्यवस्था है वो नए अधिनियम की धारा 194 में पूरी तरह से उल्लिखित की हुई है, और इसमें फ्लैट 30% का टैक्स होता है, किसी भी तरह की डिडक्शन, किसी भी तरह की छूट नहीं होती, किसी भी तरह का सेट ऑफ आपका अगर मान लीजिए लॉस हो गया, जैसे शेयर ट्रेडिंग हम करते हैं तो उसमें अगर आपस में कुछ लॉस हो जाता है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, तो उसका सेट ऑफ करने की, उसका निस्तारण करने की व्यवस्था अधिनियम में दे रखी है। लेकिन ये एक विशेष असेट है, वर्चुअल डिजिटल असेट, तो इसके टैक्सेशन में जो रेट है टैक्सेशन का वो फ्लैट है, यानी अगर आपने बेचा और आपको कुछ लाभ हुआ, लाभ कब होता है किसी भी एसेट को बेचने में, मतलब कब होता है, जब हम बेचते हैं और खरीदे दाम से हमें उसका ज्यादा मिलता है
1: ज्यादा।
0: तो लाभ हो जाता है, तो सेम इसी तरीके से इसका टैक्सेशन है, लेकिन इसका जो टैक्सेशन रेट है वो फ्लैट है, वो 30% पे है,
1: यानी कि
0: प्लस
1: अगर 100 रुपए
0: एजुकेशन, हाँ प्लस एजुकेशन सेस और जो लगता है वो लगेगा, है ना। और अगर मान लीजिए 100 रुपये में खरीदा, 300 रुपये में बेचा, तो 100 रुपये सिर्फ माइनस हो जाएंगे, जिसको कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन खरीदते हैं कहते हैं,
1: अच्छा
0: खरीद
1: जी
0: दाम,
1: जी
0: बाकी किसी भी प्रकार की कोई छूट इस तरह के वर्चुअल डिजिटल एसेट में, क्रिप्टो करेंसी के उसमें लेन देन में नहीं है। ये विशेष प्रावधान इस तरह के क्रिप्टो करेंसी यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांजेक्शन को बनाया, बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय
1: सवाल।
0: उठाया, बहुत ही
1: जी
0: उभरता हुआ विषय है आज
1: जी
0: के, हमारे जितने भी यंग जनरेशन हैं, जेन जी, जेन अल्फा,
1: जी
0: ये क्रिप्टो में आज की डेट में बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं।
1: जी और अब ये लीगल है, अब ये इलीगल नहीं
0: हाँ,
1: रहेगा।
0: इलीगल नहीं है, हालांकि इसके जो रेगुलराइजेशन है, रेगुलेशंस हैं, वो अभी भारत सरकार में अंडर कंसिडरेशंस हैं, अभी इसके रेगुलेशंस भी और आने बाकी हैं,
1: जी
0: लेकिन इसके टैक्सेशन की व्यवस्था आयकर अधिनियम में रेगुलराइज कर दी गई है।
1: जी और इसके ऊपर जैसे कि आपने कहा कोई छूट नहीं है, इसका
0: जी
1: मतलब आपको टैक्स देना है
0: जी
1: और वो उसमें एक मतलब जो अमाउंट है वो फिक्स्ड है
0: जी
1: कि 30% आपको
0: थर्टी
1: देना है।
0: परसेंट का अगर उसमें किसी भी तरह का लाभ अगर आप बेचने पे कमा रहे हैं तो 30% का टैक्सेशन है
1: और अभी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए
0: जी।
1: हैं, आर के शुक्ला जी लखनऊ से, इनका फोन आया है और इन्होंने कुछ जानकारी चाहिए है, तो हम उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो हाँ शुक्ला जी हेलो, हमें लगता है कि कुछ दिक्कत आ रही है, टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है क्योंकि अभी हम उनसे जुड़ नहीं पा रहे, तब तक हम एक मेल ले लेते हैं।
0: जी
1: हमारे पास एक मेल आया है गौरी का, इन्होंने लखनऊ से लिखा है, लखनऊ चौक से। ये लिखते हैं कि मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है लास्ट ईयर फर्म के नाम से, मैं अपना ITR फर्स्ट टाइम भरना चाहती हूँ, प्लीज़ गाइड करें कि मैं कैसे कौन सा ITR फाइल करूँ।
0: जी, ये हमारे उन तरह नए करदाताओं के लिए है कि
1: जी
0: जैसे नया नया काम शुरू किया,
1: जी
0: चाहे वो वेतन भोगी हों, जैसे इन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है। पहली बात देखिए, इसमें इन दो प्रश्न उठ के आते हैं। इन्होंने कहा कि मैंने अपना पिछले वित्तीय वर्ष में पहली बार एक बुटीक का वर्ड लिखा
1: जी
0: है, बिजनेस शुरू किया
1: जी
0: है ना, कि बिजनेस जो शुरू किया है इन्होंने फर्म के नाम से, तो फर्म की भी दो कैटेगरी हैं।
1: अच्छा
0: अगर ये एक इंडिविजुअल व्यक्ति है और वो ये कहता है कि मैंने अपना प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस शुरू किया है,
1: अच्छा
0: तो जो अधिनियम है उसके अनुसार वो फर्म बेसिकली सिर्फ कहने के लिए प्रोप्राइटरशिप फर्म है, मालिकाना हक की फर्म है, तो उस केस में वो अगर बिजनेस है तो ITR 3 भरेगा, अगर वो इंडिविजुअल व्यक्ति है सिर्फ और बिजनेस कर रहा है, जैसे मान लीजिए इनका नाम गौरिका है, ये गौरिका ट्रेडर्स के नाम से या किसी नाम से काम कर रही हैं, और पैन जो है वो इनका इंडिविजुअल का ही लगा हुआ है अगर, तो इस केस में जो ये ITR फाइल करेंगी,
1: जी
0: ये ITR 3 फाइल करेंगी।
1: अच्छा
0: अगर ड्यू डेट के मतलब इनका ऑडिट नहीं है, यानी कि जो टर्नओवर है जैसा अभी हमने चर्चा की थी, 1 करोड़ से कम है या 10 करोड़ से कम है कैश ट्रांजेक्शन है जिसकी बात, तो क्या होगा, 31 अगस्त थी उसकी ड्यू डेट, और अगर ऑडिट के दायरे में आते हैं, यानी टर्नओवर जो पिछले साल का था, ग्रॉस जो रिसीट थी वो 1 करोड़ को क्रॉस करती है, तो ये ऑडिट कराएंगे पहले और फिर उसकी ड्यू डेट 30 सितंबर है, तो ITR इस तरीके से फाइल करेंगे, और उस केस में जो ITR होगा वो भी ITR 3 होगा, लेकिन उसकी ड्यू डेट चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 31 अक्टूबर। और
1: अच्छा
0: अगर ये पार्टनरशिप फर्म है, मान लीजिए किसी के साथ साझा व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने सिर्फ फर्म लिखा, ये नहीं लिखा है कि ये पार्टनरशिप फर्म है या नॉर्मल फर्म है, तो मैं इसमें क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर ये पार्ट

0: फर्म है। तो पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होगा कि जो आईटीआर का जो संख्या है, आईटीआर की जो फॉर्म है वो ITR 5 है।
1: फाइव,
0: जी,
1: ओके,
0: तो अगर पार्टनरशिप फर्म है और ऑडिट हो रहा है तो इसके लिए इसका ये जो ITR भरेंगे ये
1: ये
0: 5 होगा और इसकी जो ड्यू डेट होगी 31 अक्टूबर होगी।
1: 31 अक्टूबर है,
0: जी
1: यानी कि ITR 3 का जो है वो 30 सितंबर है,
0: हाँ,
1: अगर फॉर्म के हिसाब से।
0: नहीं, 30 सितंबर ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की
1: अच्छा,
0: है,
1: ऑडिट रिपोर्ट फाइल।
0: रिटर्न फाइल करने की, चाहे वो ITR 3 हो ऑडिटेड रिटर्न, चाहे वो ITR 5 हो, चाहे कंपनी का रिटर्न हो वो ITR 6, वो सबकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर है।
1: अच्छा,
0: उसकी ऑडिट रिपोर्ट जो होती है, जो चार्टर्ड
1: हाँ
0: अकाउंटेंट से फाइल करानी होती है, वो फॉर्म नंबर 26 है नए अधिनियम में, नए रूल के अकॉर्डिंग, उसमें प्रिस्क्राइब फॉर्म दे रखा है,
1: जी।
0: वो 30 सितंबर है।
1: अच्छा,
0: जी
1: तो मुझे लगता है कि गौरिका को आपका
0: जी
1: आपके सवाल, जो उनका सवाल था, उसका उत्तर जरूर मिल गया होगा, और उनकी जो भी शंका थी वो उनके वो दूर हो गई होगी। तो राकेश जी, जैसे कि आपने बताया कि अलग अलग फॉर्म्स हैं और वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से वो
0: जी
1: फॉर्म चुन सकता
0: जी
1: है,
0: जी
1: और इसकी सारी जानकारी क्या किसी पोर्टल में मिल सकती है?
0: बिल्कुल, जो हमारे जो पोर्टल हैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव पोर्टल हैं, बहुत ही उसमें सेल्फ ट्यूटोरियल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। वो दो पोर्टल क्या हैं, मैं बहुत ही धीरे से उसको रिपीट करना चाहूँगा, www.incometax.gov.in, ये हमारी ई फाइलिंग की वेबसाइट है। हमारे सभी करदाता जो अपना ITR ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं वो इसी वेबसाइट की थ्रू ही कर रहे हैं, इसी पे जाके अपने पैन के थ्रू, पैन उनकी लॉगिन आईडी होती है और अपना पासवर्ड वो क्रिएट करते हैं। और जो दूसरी हमारी वेबसाइट है, जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है CBDT की, वो है www.incometaxindia.gov.in। इन दोनों ही वेबसाइट्स पे विभिन्न प्रकार के जो करदाता हमारे हैं, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, इन सभी के लिए ITR कैसे भरें, क्या क्या फॉर्म उनके लिए लागू होंगे, ये सभी कुछ चीज़ें FAQ के माध्यम से भी, विभिन्न प्रकार के प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी और सेल्फ ट्यूटोरियल के माध्यम से भी दे रखी हुई हैं।
1: जी, तो ये जो दो आपने वेबसाइट बताए हैं, साइट्स www.incometax.gov.in, और दूसरा जो पोर्टल है वो है www.incometaxindia.gov.in। इस दोनों साइट का इस्तेमाल श्रोता
0: जी
1: अपने करदाता कर सकते हैं और सारी जानकारी इसमें उनको
0: जी
1: मिल सकती है। तो इन्हीं के माध्यम से, जैसे कि आपने बताया, और अभी हमारे RK शुक्ला जी
0: जी
1: फिर आ गए हैं लाइन पे, तो आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार जी। शुक्ला जी, आप हमारे साथ विशेषज्ञ हैं। मुझे लगता है फिर इनका जो है फोन कट गया है, तो अभी आवाज नहीं मिल रही है, और
0: बहुत धीरे आवाज आ
1: रत्ना,
0: रही थी।
1: हाँ,
0: हाँ
1: बहुत धीमी आवाज भी आ रही थी, और रत्ना पूरी कोशिश कर रही है शुक्ला जी आपसे हम अपने संबंध फिर बनाने के लिए, संपर्क बनाने के लिए। और इसके पहले एक हमारे पास मेल आ चुका है वीरपाल सिंह जी का। वो लिखते हैं कि मैम जी, आपके प्रोग्राम सभी अच्छे होते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में उनका कुछ खास संदेश नहीं है, बस यही है कि उनके उनको कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और हम चाहेंगे कि आप हमारे सभी कार्यक्रम सुने, क्योंकि ये कार्यक्रम भी बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति के साथ लगभग जुड़ा हुआ है, जो भी आय में अपना दखल रखते हैं, जो आय कर रहे हैं, तो उनको इनकम टैक्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है।
0: जी
1: और हमारे साथ हैं श्री राकेश श्रीवास्तव जी, इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और आपके सवालों के, आपकी कोई भी क्वेरीज के जवाब दे रहे हैं। तो राकेश जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते
0: जी
1: हैं और फिर आते हैं दोबारा इस विषय पर।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितम्बर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी सीएससी केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं

0: विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: लखनऊ के बुक लवर्स तैयार हो जाइए, गोमती पुस्तक महोत्सव इज बैक विद 5th edition,
5: जहां होंगे 200 से ज्यादा बुक स्टॉल्स, 22 से ज्यादा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की किताबें, बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग, स्केचिंग, क्विज, थिएटर वर्कशॉप, साथ ही होंगे मशहूर लेखक और रंगमंच पर एक्साइटिंग कल्चरल एंड बैंड परफॉर्मेंसेस।
4: तो आइए 12-20 सितंबर सुबह 11 बजे से 8 बजे तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में। एंट्री फ्री। ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन, उत्तर प्रदेश एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी।
6: 100.7 जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती समझाने

0: कार्यक्रम, जिस पर आज हमारे साथ स्टूडियोज में एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं श्री राकेश श्रीवास्तव जी, आयकर अधिकारी, और आपसे बातचीत कर रही हैं सुश्री सुमोना पांडे जी। अगर आपका आयकर से संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप हमें डायल कर सकते हैं 0522, इसके अलावा 2238845, यानी कि 2238845, या फिर 2238852, और या फिर अगर आप मेल करना चाहते हैं तो आपको हम मेल आईडी भी एक बार फिर से याद दिला देते हैं, fmakashwani@gmail.com। इन दोनों माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर आपका आयकर से संबंधित कोई भी क्वेरी है तो।
1: जी, और चूंकि ये इतना गंभीर विषय है, इतना महत्वपूर्ण विषय है, तो समय का भी पता नहीं चल रहा है। राकेश जी, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम अभी भी जानना चाहेंगे। एक मैसेज आया हुआ है एम के राज जी का, इन्होंने लिखा है कि क्या साइबर ठगी अगर किसी के साथ होती है तो ऐसे स्थिति में कोई छूट या कोई लाभ मिल सकता है क्या?
2: ये देखिए, किसी के साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, चोरी हो रही है, एक तरीके की चोरी या ठगी हो गई, यानी कि एक तरीके का क्राइम हुआ, तो इसकी कोई छूट की व्यवस्था आयकर अधिनियम में नहीं है। इसके लिए भारतीय दंड संहिता में और जो साइबर क्राइम्स के ऑफेंसेस हैं उसी में ही वो अपने अकॉर्डिंग वो चीजें उसको कर सकते हैं, तो आयकर अधिनियम में उसकी छूट की कोई व्यवस्था नहीं।
1: जी बिल्कुल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और फॉर्म 26AS क्या है और आयकर भरते समय इनका मिलान करना क्यों जरूरी है?
2: देखिए, बहुत ही ये अच्छा विषय है, इस पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरी जानकारी के अनुसार है कि जो फॉर्म 16 जो थोड़ी देर पहले चर्चा हुई वो एक उस बात का प्रमाण पत्र होता है। फॉर्म 16 या फॉर्म 16A सैलरी के लिए फॉर्म 16 होता है, और जो अदर देन सैलरी है, जैसे बैंक TDS काट ले रहा है या हम कोई वेंडर को पेमेंट करते हैं किसी भी कार्य के लिए उसमें काट लेते हैं, तो वो फॉर्म 16A है। नए अधिनियम में ये फॉर्म नंबर 130 और 131 बन गए, यानी अगले साल से हम इनके फॉर्म जो जानेंगे वो फॉर्म नंबर 130 और 131 के नाम से जानेंगे, जो फॉर्म नंबर 16 और फॉर्म नंबर 16। ये इस बात का सर्टिफिकेट है कि आपका TDS टैक्स कितना कटा, ये आपको एक प्रमाण पत्र है जो कि जो डिडक्टर है वो दे देता है, एक सर्टिफिकेट है। लेकिन वो पैसा एग्जैक्टली भारत सरकार यानी आयकर खाते में जो भारतीय राजकोष है उसमें पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसको देखने के लिए जो फॉर्म है वो कहलाता है फॉर्म नंबर 26AS, जो कि नए अधिनियम में अगले साल से हम उसको जानेंगे फॉर्म नंबर 168 के रूप में, 168 के रूप में। तो उसमें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS का मिलान होना चाहिए। प्रमाण पत्र तो आपके पास है कि इतना पैसा कटा, ₹10,000 TDS कटा, लेकिन अगर फॉर्म नंबर 26AS में 8,000 दिखा रहा है तो इसका मतलब ₹2,000 का अभी मिसमैच है, यानी या तो जिसने डिडक्टर ने अपना विवरण दाखिल किया, जिसने टैक्स काटा जो कि टैन होल्डर है डिडक्टर, DDO जिसको कह लीजिए सैलरी के फॉर्म में और अदर फॉर्म में डिडक्टर, उसने जो अपना एक स्टेटमेंट फाइल किया, यानी उसमें कोई गलती हुई थी, कोई मिसमैच था, जिसकी वजह से आपने जो पैसा भरा भारतीय राजकोष में वो प्रॉपरली जमा नहीं हो पाया, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, परिलक्षित नहीं हो रहा है, तो ये 26AS बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। जितने प्रकार के TDS या TCS कटे होते हैं उसका पूरा ब्योरा कि पूरे साल भर में आपको कहां कहां से कितना पैसा मिला, सैलरी से, अदर देन सैलरी से, आपने कितना प्रीपेड टैक्स जमा किया एडवांस टैक्स के माध्यम से, सेल्फ असेसमेंट टैक्स के माध्यम से, ये सभी चीजों का ब्योरा आपका एक प्रमाण पत्र, एक विशेष है वही फॉर्म नंबर 26AS, फॉर्म नंबर 168 नए अधिनियम में, जिसमें ये दिखता है। ये एक तरीके की बैंक पासबुक है जो बताता है कि भारत सरकार के राजकोष में कितना पैसा आपका जमा हुआ, किस किस मद में।
1: अच्छा, अगर जैसे मिसमैच है तो वो हम रेक्टिफाई कर सकते हैं जब हम मिलान करते हैं तो हम उसमें,
2: ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मिलान की व्यवस्था है, यानी जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, करदाता है, उनको थोड़ा सजग होना चाहिए कि अगर फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS यानी फॉर्म नंबर 168 में कोई अगर मिसमैच है, मिलान नहीं हो रहा है, तो तुरंत अपने डिडक्टर से संपर्क करें, क्योंकि उसने जो रिटर्न फाइल किया, स्टेटमेंट क्वार्टरली फाइल करता है वो, फॉर्म नंबर 24Q और 26Q के माध्यम से वो फाइल करता है, कहां फाइल करता है, आयकर विभाग के पास, उसमें किसी न किसी प्रकार की त्रुटि है, या तो पैन नंबर गलत है, या अमाउंट गलत कोट हो गया, मान लीजिए 20,000 जमा होना था, गलती से 10 कम कर दिया, गलत पैन कोट कर दिया तो किसी दूसरे के खाते में चला गया, सस्पेंस अकाउंट जैसे बैंक में हो सकता है, तो उसको तुरंत उससे संपर्क करना चाहिए, क्योंकि अब वो त्रुटि का सुधार भी जो डिडक्टर है वो 2 साल तक ही कर सकता है।
1: जी, और जिम्मेदारी एक्चुअली टैक्स पेयर की ही होती है, वो जो भी है, मतलब जिसका
2: आपका अगर डिडक्ट कोई भी कर रहा है, अगर बैंक में आपका पैसा किसी वजह से नहीं जमा हो पाया तो लॉस एट द एंड आपका है, आपका जैसे पैसा है तो उसी तरह भारतीय राजकोष में वो आपका पैसा है जो आपके नाम से जमा हुआ है उस राष्ट्र निर्माण में, अगर उसमें कोई मिसमैच है तो पहली जिम्मेदारी, अधिकार, सब कुछ आपका है, उसके त्रुटि का सुधार आप कराएं, लेकिन वो सुधार प्राइमा फेसाई सबसे पहले वो डिडक्टर

0: ही कर सकता है और वह 2 साल तक ही कर सकता है।
1: जी।
0: तो अगर वो 2 साल के अंदर भी निस्तारण नहीं होता है तो प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जाती है। फिर क्या होता है, आपको नोटिस आती है सीपीसी से कि डिमांड आ रही है, क्योंकि वहां तो दिखेगा ना मिसमैच की वजह से 2000 रुपए का अभी भी टैक्स बचा हुआ है, आपको नोटिस आती रहेंगी बार बार, है ना, तो उसका निस्तारण या उसका रेक्टिफिकेशन थोड़ा कठिन हो जाता है। एक जो विषय आपने और पूछा वो AIS, आज की डेट में 2023 के बाद से करदाताओं को एक सुविधा और दे दी गई है कि जितने भी वो पैन बेस्ड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, चाहे वो लेन देन हो, सेल परचेज हो, किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन, बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, सारे प्रकार की लेन देन, फॉर्म 26S उन्हीं चीज का ब्यौरा देता है कि जितना भी आपको पेमेंट मिला या TDS कटा या जितना आपने टैक्स पे किया उसका ब्यौरा देता है। फॉर्म नंबर जो AIS है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जो कि आयकर अधिनियम, नए वीन अधिनियम की धारा

0: है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जो कि आयकर अधिनियम नवीन अधिनियम की धारा 510 में उसका ब्यौरा दे रखा है। तो वो क्या सुविधा, ऐप भी है उसका, ये भी आपको बता दें, गूगल प्ले स्टोर से हम ऐप भी उसका डाउनलोड कर सकते हैं और अदरवाइज ई फाइलिंग पे भी वो दिखता है। वो क्या बताता है कि पूरे वित्तीय वर्ष में आपने कितने भी लेन देन पैन बेस किए, शेयर खरीदा बेचा, कोई बिजनेस किया बेचा, वो कंप्लीट ब्यौरा है। हाँ। वो टैक्स पेड का ब्यौरा नहीं है,
1: वो कंप्लीट ब्यौरा है, तो आप उसे मिलान
0: कर लें। और... क्योंकि कई बार क्या होता है कि आईटीआर आज की डेट में आयकर विभाग हर चीज पे ये नजर रखे हुए है कि यदि किसी ने अपने पिछले साल या रिसेंट पास्ट में किए गए ट्रांजेक्शन को अपने आईटीआर में रिफ्लेक्ट नहीं किया है, तो ई वेरिफिकेशन के माध्यम से, नच कैंपेन के माध्यम से वो उसको नोटिस देके अवेयर कराता है और कहता है कि आपके ये ट्रांजेक्शन है, तो कृपया मिलान करें। यदि मिलान ठीक है तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप उसको देख के फिर उसके अपना फर्दर और सुधारात्मक कार्यवाही करें।
1: जी, और हमारे साथ एक बहुत लंबे समय से कॉलर जुड़े हुए हैं। हेलो।
2: हेलो,
1: हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: मेरा नाम डीके शरण है।
1: जी शरण जी, स्वागत हमारे कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? हमारे साथ राकेश जी हैं।
2: मेरा एक सवाल ये है कि जैसे मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और उसके बाद में उसका रिडेम्पशन लेता हूँ, टैक्स किस हिसाब से लगेगा?
0: जी नमस्कार शरण जी, म्यूचुअल फंड अगर आपने लिया है और उसका जो आप रिडम्पशन कर रहे हैं, तो देखिए पहली बात तो आपने म्यूचुअल फंड को होल्ड कितने पीरियड तक किया है, यानी कि अगर वो होल्डिंग, होल्ड करने का मतलब जब परचेस किया और जब बेचा, उसकी होल्डिंग 12 महीने अगर क्रॉस हो जा रही है, ठीक है, तो अगर 12 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म कहलाएगा, 12 महीने से कम में ही बेच दिया अगर आपने, ठीक है। म्यूचुअल फंड और शेयर दोनों के लिए सेम नियमावलियाँ हैं, ठीक, वो जो हमारे आयकर अधिनियम है उसकी धारा 111A से कवर होती है। तो उसमें क्या है कि अगर आपने 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करने के बाद बेचा है तो ये लॉन्ग टर्म कहलाएगा, ठीक। 2019 से पहले इस पर कोई टैक्सेशन नहीं था, आज की डेट में अगर आप आज की डेट की हम बात करें तो 1,25,000 तक इस पर कोई छूट, मतलब कोई टैक्स नहीं होगा, 1,25,000 तक का एग्जम्पशन है इसके ऊपर। और अगर आपने मान लीजिए म्यूचुअल फंड बेचे हैं पिछले वित्तीय वर्ष में, एग्जाम्पल ले लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, और बेचने के बाद जो टोटल बेचने पे आपको जो प्रॉफिट आ रहा है, गेन आ रहा है, वो 1,25,000 तक है, तो आप ITR 1 में भी इसको शो कर सकते हैं अपने, अगर आप ITR 1 भरते हैं तो एग्जम्प्टेड है। 1,25,000 के ऊपर सेक्शन 111A के अकॉर्डिंग आपको 12.5% का टैक्स और जो नए इसमें 15% का टैक्स आपको चला जाएगा लॉन्ग टर्म में।
1: जी
2: तो मतलब है कि अगर मैंने 1,50,000 रुपए अगर मान लीजिए प्रॉफिट गेन किया तो 25,000 पे देना पड़ेगा पूरे 1,50,000?
0: नहीं नहीं, 25,000 पे देना पड़ेगा, 1,25,000 तक छूट तब भी बरकरार रहेगी।
2: अच्छा, जैसे पहले से इन्वेस्टमेंट किया है 15-16 साल से, कभी जो 2019 तक जो छूट मिल रही थी वो काउंट होगी क्या?
0: वो ग्रैंडफादरिंग वाले में, हाँ 2019 तक में, क्योंकि 2019 से ही अधिनियम आया, क्योंकि उससे पहले लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड पे टैक्सेशन था ही नहीं। 2019 के फाइनेंस एक्ट से इस पे टैक्सेशन की व्यवस्था बना दी गई कि एक लिमिट को क्रॉस करने के बाद यदि गेन होता है तो टैक्स आएगा।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया शरण जी फोन करने के लिए। और ये भी एक अहम सवाल, क्योंकि ऐसी चीजें जो है लोगों के मन में आती हैं। और देखिए लगातार हम बात कर रहे हैं आयकर के विषय में, इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में, और राकेश जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए और लोगों को जानकारी दी, और लगातार हम साझा कर रहे हैं इसके बारे में। तो एक बार चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप कुछ विशेष बताना चाहेंगे और खासतौर पर अपने पोर्टल के बारे में भी जरूर बताएंगे।
0: जी बस मैं ये बार बार ये कहना चाहूंगा कि हमने ये पिछले भी संवादों में अपनी चर्चाओं में कहा है कि जो हमारे करदाता हैं, आयकरदाता हैं, वो राष्ट्र निर्माता हैं। ये जो हमारे यानी हमारा जो ये अधिकार कर्तव्य, ये खाली ये आप मत सोचें कि हम टैक्स पे कर रहे हैं आयकर विभाग को या भारत सरकार को, भारत सरकार और कोई नहीं है, वो हमारे द्वारा क्रिएट किया हुआ ही एक संविधान का एक अंग है, कार्यपालिका है, और जो हम पैसा दे रहे हैं वो भारत सरकार को नहीं, वो भारतीय राजकोष में जा रहा है, सेंट्रल ट्रेजरी में जा रहा है, भारत की संचित निधि में जा रहा है।
1: राकेश जी, जैसे हम लोग भी घर में बचत करते हैं, थोड़ा पैसा अलग रख देते हैं, कुछ उसी तरह से कि जो काम आए बाद में।
0: जी काम आए, क्योंकि उसी से हम अपने घर का निर्माण करते हैं या कुछ और चीजें करते हैं, कुछ परचेज करना होता है, कुछ और चीजें करनी होती है। तो आप ये जान लें कि ये देश हमारा है, हमारे परिवार की तरह ही है, तो ये एक संवैधानिक अधिकार भी है, संवैधानिक बाध्यता भी है। आयकर अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जो सिर्फ और सिर्फ विधायिका यानी पार्लियामेंट ने डायरेक्टली नहीं बनाया, इसकी जो जड़ें हैं, इसके जो अधिकार हैं, सीधे संविधान की भारत संचित निधि से निकल कर आ रहे हैं।
1: जी
0: तो भारत के संचित निधि में अपना योगदान करना ये सबका कर्तव्य भी है, मौलिक कर्तव्य है, और ये एक कानूनी संवैधानिक बाध्यता है कि हम उस राजकोष में, जो लोग, देखिए कितना सुंदर है कि 4 लाख तक के लिए

0: कोई छूट, सबको छूट दे रखी
1: जी
0: हुई है।
1: जी
0: हमारे जो आईटीआर फाइलर हैं कुल उतने हैं ही नहीं, मधुमक्खी की तरह आयकर विभाग मधुमक्खी का जो सिद्धांत है, मधुकर सिद्धांत, उसी के हिसाब से कर लेता है ना। तो हम यही कहेंगे कि आयकर विभाग हमेशा आपका सहयोगी है, आपके साथ है। अपने जितने भी विवरण हैं अपने ट्रांजेक्शन को सही से दर्शाइए, अपना आईटीआर टाइम पे भरिए, जिससे कि आपको विलंब शुल्क या पेनल्टी या किसी भी तरह की नोटिस का सामना ना करना पड़े।
1: और अगर नहीं भी भरा है तो उसके लिए भी सुविधा दे रखी
0: जी,
1: है।
0: बिल्कुल।
1: तो आज हम इस अंक को यही समाप्त करते हैं और हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हमारे साथ राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी क्षेत्रीय परिसर लखनऊ के अधिकारी इनकम टैक्स ऑफिसर श्री राकेश श्रीवास्तव जी स्टूडियो में मौजूद थे और आपके सवालों के जवाब दे रहे थे, हमारे श्रोताओं के जो भी शंकाएं थी उनका समाधान कर रहे थे। राकेश जी आपका बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम में आने के लिए।
0: हमारे श्रोताओं का, आकाशवाणी लखनऊ का और विशेषकर से आपका मैम बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार।
1: नमस्कार, और हम अपने श्रोताओं से भी नमस्कार कहेंगे रत्ना, और नाउ ओवर टू यू। तो अपने सभी श्रोताओं को हम नमस्कार कहेंगे और अगले अंक के लिए बिल्कुल आप प्रतीक्षा रखिएगा, क्योंकि हम इस तरह के कार्यक्रम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे जिससे आपकी जानकारी बढ़ती रहे। धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद हमारे एक्सपर्ट आपका श्री राकेश श्रीवास्तव जी और हमारी सुश्री सुमोना पांडे जी मैम का। और बस इसके साथ बिल्कुल वक्त इजाजत नहीं दे रहा, अगले किसी कार्यक्रम की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला कार्यक्रम लेकर शालिनी आपके बीच मौजूद रहेंगी। बने रहिए 100.7 FM रेनबो पर।

नमस्कार, दोपहर के 12 बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल जनभवन परिसर में नवनिर्मित बोनसाई गार्डन का लोकार्पण किया। लोकार्पण के उपरांत राज्यपाल ने गार्डन का अवलोकन किया और परिसर में स्थापित भगवान धन्वंतरी जी के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस गार्डन में आकर्षक वाटरफॉल व फिश पाउंड का निर्माण किया गया। उन्होंने जनभवन परिसर में गंगोत्री से गंगा सागर की थीम पर आधारित गंगा सागर नमो नमः परियोजना पर चल रहे कार्यों की सराहना की। इस परियोजना का लोकार्पण 17 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 76वें जन्मदिवस के अवसर पर प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश सहित देश के 6 राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने कल यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए केशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किया। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा यह 10वां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि परियोजना के साकार होने से उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से अन्नदाताओं को संबल, पेयजल की उपलब्धता को मजबूती और यमुना की अविरलता को नई शक्ति मिलेगी। इस परियोजना के तहत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बहने वाली टोस नदी पर कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनेगा। आज विश्व ओजोन दिवस है। यह दिन पृथ्वी पर जीवन की रक्षा में ओजोन परत की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। यह प्रकृति सुरक्षा कवच त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद से बचाव और पारिस्थितिकी तंत्र को बहने वाले जोखिम को काफी कम करता है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: रंग हमारे संग तुम्हारे। सुनते रहिए जिंदगी की सतरंगी धुन
1: 100.7 FM रेनबो।
2: सुरों का लखनवी एहसास।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: जिंदगी बहुत कीमती है,
6: उससे तो सस्ता ही है।
7: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
8: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

मेरे प्यारे रेडियो की सखियों, माताओं, बहनों और भाइयों, मैं आपकी दोस्त शालिनी, आपके पसंदीदा शो यानी कि शत्रुपा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज क्या है, 16 सितंबर, सुबह से ही पता चल रहा होगा जो अगर हमारा आप FM सुन रहे होंगे। और कैलेंडर का यह दिन हमारे लिए सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि यह याद दिलाने का जरिया है कि हमारी धरती माँ कितनी नाजुक है। पूरी दुनिया विश्व ओजोन दिवस मना रही है ना। ओजोन परत का नाम तो आपने सुना ही होगा, और ये जो ओजोन परत है आसमान में फैली वो नीली चादर है जो सूरज की जानलेवा पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और हम तक सिर्फ प्यारी प्यारी धूप पहुंचने देती है। अगर दोस्तों ये ओजोन परत ना हो तो धरती पर जीवन समाप्त ही हो जाएगा। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा ये ट्रैक और कुछ बातें आज करेंगे इसी से रिलेटेड। बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, आपको फोन कॉल्स भी करनी है, ईमेल्स भी करने हैं, तो रेडी रहिए। क्या होगी बात वो हम बताएंगे आपको इस गाने के बाद।

0: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: जिंदगी बहुत कीमती है।

0: इससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
2: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: लखनऊ के बुक लवर्स तैयार हो जाइए, गोमती पुस्तक महोत्सव इज बैक विद 5th edition,
4: जहां होंगे 200 से ज्यादा बुक स्टॉल्स, 22 से ज्यादा भारतीय और अंतरराष्ट्रीय भाषाओं की किताबें, बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग, स्केचिंग, क्विज, थिएटर वर्कशॉप, साथ ही होंगे मशहूर लेखक और रंगमंच पर एक्साइटिंग कल्चरल एंड बैंड परफॉर्मेंसेस।
3: तो आइए 12 से 20 सितंबर सुबह 11 बजे से 8 बजे तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में एंट्री फ्री, ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन, उत्तर प्रदेश एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी।
5: दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है।
6: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
7: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
8: ओनली 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।
9: कुछ भी नहीं,
10: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी।

कितना प्यारा सा ट्रैक है ना दोस्तों। और वैसे भी जो ये नेचर है ना, इसकी जो सुंदरता है, चाहे वो झरनों का पानी हो बहता, नदियाँ हो, पेड़ पौधे हो, पहाड़ हो, सब बस जब ये नज़ारा देखते हैं ना तो बस देखते ही रह जाते हैं। और फिर कभी कभी ये जो नज़ारे हैं अपना रौद्र रूप भी ले लेते हैं, और तब लेते हैं तब हमारे मुंह से सिर्फ आह निकलती है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात ले लीजिए, नेपाल का हादसा याद है ना हम सभी को। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड के लिए आप अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए, क्यों हम हर पल, हर दिन, हर रोज प्रकृति से खिलवाड़ करते जा रहे हैं, जाने अनजाने में ही सही पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, और तरक्की की राह को देखते हुए फैक्ट्रियां लगाते चले जा रहे हैं। लेकिन अफसोस, हमारे बढ़ते प्रदूषण और फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, इस चादर जो हमारी ओजोन परत की चादर है उस पे छेद कर दिया है। आज हम जानेंगे कि कैसे हमारी रसोई, हमारे आंगन और हमारे घर के आसपास के लगे पेड़ पौधे इस ओजोन परत को दोबारा मजबूत कर सकते हैं और हमें भरपूर ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो आज बातें भी होंगी, सेहत की सुरक्षा भी होगी और बेहतरीन गाने भी होंगे। लेकिन आपको बताना होगा कि ओजोन और पौधों का अनोखा रिश्ता क्यों जरूरी है हरियाली। जी हाँ, ओजोन और पौधों का जो अनोखा रिश्ता है उसके बारे में और क्यों जरूरी है हरियाली, इसके लिए आपको हमें ईमेल करना होगा, फोन कॉल्स भी करने होंगे, जो हमारा नंबर है 2238852 और 2238845, और मेल आईडी है हमारी fmakashwani@gmail.com। फटाफट कर डालिए और हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए सुरों का लखनवी एहसास।

बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि ओजोन परत जो है वो आसमान में है, फिर जमीन पर पौधे उगाने से क्या फायदा? तो मेरी प्यारी सखियों, विज्ञान को आसान शब्दों में समझिए। जब हम गाड़ी चलाते हैं, एसी चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, तो पता है उनमें से भी कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं जो ऊपर जाकर ओजोन को नुकसान पहुंचाती हैं, धरती को गर्म करती हैं, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो आप बताइए ना, एसी तो हम नीचे चलाते हैं, धरती पे चलाते हैं, गाड़ियां तो हम धरती पे चलाते हैं, तो इसके धुएं से हमारी ओजोन परत को नुकसान कैसे पहुंचता है? ठीक वैसे ही पौधे हम जमीन पर उगाएंगे, लेकिन उनसे हमारी जो ओजोन परत है वो मजबूत होगी। जब हम ऐसे पौधे लगाते हैं जो भारी मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं, तो

वे हवा के प्रदूषण को सोख लेते हैं, वातावरण को ठंडा रखते हैं और हमारी ओजोन परत को फटने से बचाते हैं। यानी कि सीधे शब्दों में, जितने ज्यादा पौधे उतनी सुरक्षित हमारी ओजोन परत। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक।

दोस्तों चलिए बात करते हैं उन पेड़ों की जिन्हें हमारे पूर्वज पूजते थे। जी हाँ, जिनकी हम पूजा करते आए हुए हैं। और अगर उनमें से अपनी लिस्ट में हम देखें तो सबसे पहला नाम पीपल और बरगद का आता है। पीपल का पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये कुदरत का वो जादू है जो 24 घंटे लगातार शुद्ध ऑक्सीजन देता है। जी हाँ, पीपल और बरगद का जो फैलाव है ना, वो इतना बड़ा होता है कि एक दिन में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं जितनी कई गाड़ियां मिलकर पूरे हफ्ते में जहरीली गैसें छोड़ती हैं। जिन गांवों में या कॉलोनियों में पीपल और बरगद के पुराने पेड़ है ना दोस्तों, वहां की हवा हमेशा शुद्ध रहती है और वहां ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों का असर खत्म हो जाता है। तो इस ओजोन डे पर आप अपने आसपास किसी खाली मैदान में एक पीपल का या बरगद का पेड़ जरूर लगाइए। जी हाँ, सोचिए जरा, सोचने से हर कुछ हो जाता है।

0: दोस्तों 12:35 और 53 सेकंड हो चले और हमारे साथ फोन लाइन पर कोई जुड़ चुका है, तो चलिए बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। नाम बताएं अपना।
1: मेरा नाम अल्तमस अली है।
0: कहाँ से बात हो रही है अल्तमस आपसे?
1: लखीमपुर खीरी से।
0: अरे वाह, तो आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, जरा लोगों से कुछ कहिए ओजोन परत के बारे में। आज हम लोग विश्व ओजोन दिवस मना रहे हैं।
1: मैम, सबसे पहले तो विश्व ओजोन दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
0: जी, आपको भी।
1: मैम, हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे आजकल देखिए मैम, पेड़ इतने कटते हैं कि सबको, कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। प्लीज पेड़ को काटे मत और 3-4 पेड़ भी लगा दे। और देखिए मैम, कारखानों की वजह से कुछ ओजोन की जो परत है उस पर भी नुकसान आता है, तो कारखाने इतने नहीं करें कि जो नुकसान हो, ये कहना चाहते हैं।
0: हाँ अल्तमस, आपने कितने पेड़ लगाए हैं अब तक?
1: जी मैम, हमने अभी 2 पेड़ लगाए हैं।
0: अभी आपकी उम्र कितनी होगी अगर आप बताना चाहें तो?
1: जी मैम, हमारी 14 साल है और 2 महीने हुए होंगे तब हमने पेड़ लगाया था।
0: अच्छा, तो उनसे आपकी कितनी बातचीत होती है पेड़ पौधों से?
1: नहीं मैम, इस वक्त खेतों में पानी भरा है तो जा नहीं पाते हैं।
0: अच्छा, हमारा बातचीत करने से मतलब समझे ना आप। हाँ, कोई भी रिश्ते, किसी भी रिश्ते की हम जब शुरुआत करते हैं तो उनसे मुलाकातें जरूरी होती है ना, बिना मुला। हाँ जी
1: मैम, बहुत अच्छा लगता है जब पेड़ लगाओ, उसमें पानी डालो और पेड़ बड़ा होता है, सब बहुत अच्छा लगता है।
0: हाँ, बहुत अच्छा लगा अल्तमस आपसे बात करके, और ये बातें आप अपने आसपास के लोगों को समझाएं, बताएं कि पेड़ जरूर लगाएं, और केवल पेड़ लगाना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है उसे। हाँ जी
1: मैम, जब पेड़ लगाओ तो ऐसा लगता है कि बात पेड़ से कर रहे हो।
0: हाँ बिल्कुल,
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: हाँ बिल्कुल, आप जिस अंदाज में आप बात कर रहे हैं ना, दिल की जो बात हमें बता रहे हैं, तो बस लग रहा है, और हो सकता है पेड़ पौधे भी हमें सुन रहे हो, जो आपने लगाया है वो मुस्कुरा रहे होंगे इस वक्त। चलिए, थैंक यू अल्तमस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दोस्तों, इस तरह की बात आपके पास भी है अगर, तो हमसे करिए और बताइए कि ओजोन परत से और पौधों से क्या रिश्ता है। जी, और 12:38 और 30 सेकंड हो चले हैं। शालिनी है आपके साथ इस प्यारे से ट्रैक के साथ, और आप

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा,
3: जानो फिर मानो।
4: लखनऊ के बुक लवर्स तैयार हो जाइए, गोमती पुस्तक महोत्सव इज बैक विद 5th edition,
5: जहां होंगे 200 से ज्यादा बुक स्टॉल्स, 22 से ज्यादा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की किताबें, बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग, स्केचिंग, क्विज, थिएटर वर्कशॉप, साथ ही होंगे मशहूर लेखक और रंगमंच पर एक्साइटिंग कल्चरल एंड बैंड परफॉर्मेंसेस।
4: तो आइए 12 से 20 सितंबर सुबह 11 बजे से 8 बजे तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में एंट्री फ्री, ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन, उत्तर प्रदेश एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा,
3: जानो फिर मानो।
6: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।

जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग सुन रहे हैं ओजोन डे स्पेशल शत्रुपा शो। और अब पीपल के बाद हमारे दूसरे सबसे बड़े रक्षक कौन कौन से हैं? नीम और सहजन का पेड़। नीम को आयुर्वेद में वैद यानी कि डॉक्टर भी कहा गया है, लेकिन ये जो है ना पर्यावरण का भी सबसे बड़ा डॉक्टर है। नीम के पत्ते हवा में जो मौजूद होती है ना सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों को जो ओजोन परत की सबसे बड़ी दुश्मन है उन्हें फिल्टर कर देते हैं। सहजन का पेड़ भी बहुत तेजी से बढ़ता है और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को कई गुना बढ़ा देता है। और अगर हम दोनों पेड़ की बात करें ना, तो मुझे तो याद है जो हमारी दादी और नानी थी ना, अगर हमारी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो नीम की जो पत्तियां थी उनको बॉईल कर देती थी, उसको खौला के जो पानी उसका होता था ठंडा करने के बाद उससे नहला देती थी। नीम के पेड़ की छाल को घिस कर उस पर लगाया जाता था, नीम की पत्तियों को पीस कर चेहरे पर लगा लेते थे अगर कहीं पर भी पिंपल्स निकल आते थे, यहाँ तक कि जो नीम के सॉफ्ट टहनियाँ होती हैं एकदम सॉफ्ट सी, उसे कहते थे कि सुबह सुबह खाली पेट चबा कर खा लीजिए, नीम की पत्तियों को खा लीजिए तो आपका पेट साफ हो जाएगा। तो सोचिए वो पौधा जिसमें अनगिनत खूबियाँ हैं, छाया भी देता है, जब सावन आता था तो हम झूला भी नीम के ही पेड़ पर डालते, बरगद के पेड़ पर भी डालते हैं जो बड़े छायादार होते हैं। और गाँव में जब गर्मी लगती थी तो जो ठंडी हवा का झोंका है ना यही पेड़ देता था, सहजन का पेड़। सहजन का जो उसमें सहजन निकलता है पेड़, उसे ही कहते हैं सहजन का पेड़। और उसमें जो फल निकलता है, जो सब्जी, आपके जोड़ों में दर्द कितनी भी हो कितना आराम मिलता है। सहजन की पत्तियों से हम अपने जब मोच आ जाती थी, पैरों में स्वेलिंग आ जाती थी, उससे सिकाई करते थे, पत्ती को बांधते थे, सहजन की सब्जी खाते हैं, हर तरह से आप बना सकते हैं ना। तो देखिए प्रकृति हमें कितना कुछ दे रही है बिना कुछ दिए। हाँ थोड़ी सी मेहनत जरूरी है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी तक इसका फायदा होता है ना, बिना कुछ दिए बहुत कुछ मिलता है ना दोस्तों।

दोस्तों 12:54 और 23 सेकंड, बातें ढेर सारी हैं करने के लिए, लेकिन समय कह रहा है कि शालिनी अब इससे ज्यादा बातें नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, आज बहुत से लोग शहरों में फ्लैट में रहते हैं और कहते हैं कि हमारे पास आंगन नहीं है तो वो पौधे कहाँ लगाएं। दोस्तों अगर आप कुछ भी करना चाहें तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, हर मुश्किल का हल होता है। आप स्नेक प्लांट, एलोवेरा का प्लांट, ये सब आप अपने घर में लगा सकते हैं। स्पाइडर प्लांट और मनी प्लांट को तो आप भूल ही नहीं सकते, ये लगा सकते हैं। और आज विशेष ओजोन दिवस के प्रोग्राम में हमने जाना कि आसमान की जो नीली चादर की रक्षा है वो हमारी रसोई और हमारे आंगन से ही शुरू होती है। तो आज 16 सितंबर को एक पौधा जरूर लगाएं, ये प्रण करना है, प्लास्टिक को ना कहें और अपनी धरती माँ को सुरक्षित बनाएं। याद रखिए, घर घर पौधे लगाएंगे, भरपूर ऑक्सीजन पाएंगे और मिलकर अपनी ओजोन परत बचाएंगे। बस इसी के साथ शत्रुपा से लेते हैं विदा और नेक्स्ट प्रोग्राम ओ छुपी तेरी बात आप सुनेंगे शालिनी के साथ।

0: नमस्कार, दोपहर के 1 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश में शिक्षकों के 15,012 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है।
1: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोता हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत।

श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम अनुरोध गीत में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं आपके बहुत सारे पत्र हम तक पहुंच चुके हैं जिसमें आपने अपने पसंद के गीतों का अनुरोध किया है सुनने का, तो शुरू करते हैं आपके पत्रों का सिलसिला। ये पहला पत्र हमें मिला है अशरफ खां पानी की टंकी के पास होली चौक बरेली से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं राम प्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना, मनोरमा, अजय, विनोद और रीता, वंश और कनिष्क। आदर्श नगर मलोट से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी शर्मा, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा। इंदिरा विहार रायगढ़ से वसीम अकरम, नूरजहां, डब्लू अकरम, वली अकरम, उल्ला अकरम, नूरजहां। राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ, इमरान और इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम और आदिवा तिवारी। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म साथी का ये गीत, जिसको अपनी आवाजें दी हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुर ने। गीत के बोल मजरू के, संगीत निर्देशन नौशाद का।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य। परिमहल कासगंज से आवाद खान, नबील खान, आरफा, इल्मा, आफरीन, असलम, सैफी। आप हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गोगलानी, जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर और सुनीता शर्मा। आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है फिल्म राजकुमार का ये गीत, जिसको गाया है लता मंगेशकर ने। गीत के बोल शैलेंद्र के, संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर शांति विहार बरेली से अमर मिश्रा, सत्या कुशाग्र और इनके बहुत सारे दोस्त, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा, सालिया, शोएब खान, सायमा मुस्तवा, आफिया खान, राउफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही मेहरा जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, कोटवा नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म सौतन का ये गीत, जिसको अपनी आवाज दी है किशोर कुमार ने। गीत के बोल सावन कुमार के और संगीत निर्देशन उषा खन्ना का।

श्रोताओं रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में गुरुवार दिनांक 17 सितंबर 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है माइग्रेन एवं सिरदर्द की समस्या और उसका आधुनिक इलाज, शंकाएं व समाधान। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे बुधवार दिनांक 16 सितंबर 2026 यानी आज शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 0581251700 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के न्यूरो सर्जन डॉक्टर विकास गुप्ता उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लें। विषय है माइग्रेन एवं सिरदर्द की समस्या और उसका आधुनिक इलाज, शंकाएं व समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा बुधवार दिनांक 16 सितंबर 2026 यानी आज शाम 4 बजे से। और हमारा टेलीफोन नंबर है 0581251700। सूचना समाप्त हुई। कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। आप हैं जिला बदायूं ग्राम दूने नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह।

कठेरिया, मनोज कुमार कठेरिया, सत्येंद्र कुमार, गुड्डू, विशाल संगम, वैभव, आदर्श, आदित्य, अमित, रेणु, कुमकुम, निव्या, सरिता और अंतिमा। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक और झाविंद्र कुमार वर्मा। आप हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा। आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है फिल्म चित्तौर का ये गीत, जिसको अपनी आवाज दी है येसुदास ने। गीत और संगीत रविन्द्र जैन का।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म रफू चक्कर से। इस गीत को अपनी आवाज दी है शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले ने। गीत के बोल गुलशन बाबरा के हैं और संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत को सुनने का अनुरोध किया है हमारे आप सभी श्रोताओं ने। नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार, नुजत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद, इसरार अहमद, तस्लीम रजा और मुन्ना भाई। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवांडकर, राही सरिता गवांडकर, प्रिंस एकांश गवांडकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवांडकर, प्रणीता गवांडकर और अर्जुन गवांडकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवांडकर, सुमित और कुमारी धोनी गवांडकर, परी गांव लाहौडडा, जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन और सुधीर नूतन। आप सभी को सुनवाते हैं आपके अनुरोध पर फिल्म रफू चक्कर का ये गीत।

आइए श्रोताओं, आप चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर, जिसको सुनने का अनुरोध किया है आप सभी ने। मोहला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू, साजदा रानी और हिना कौसर। चांडुर बिस्वा तालुका नांदुरा जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से नारायण भाऊ खड़से, रक्षताई खड़से, ललिता संजना खड़से, गणेश और कार्तिक खड़से। साथ में है मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढेंगिया, नमन ढेंगिया और अपार ढेंगिया। बरेली जंक्शन से गरीब भाई, नासिर भाई और विक्की भारद्वाज। आइए आप सभी को सुनवाते हैं आपके अनुरोध पर फिल्म नागिन का ये गीत, जिसको अपनी आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने। गीत के बोल बर्मा मलिक के और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी के अनुरोध पर, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकमा खत्री, अलतमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना, योगेश मेंडी, सौरभ साइना और निवान शर्मा, पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जजौरिया। आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है फिल्म शोर का ये गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। गीत के बोल संतोष आनंद के और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर निकट बिजली घर कस्बा मीरगंज बरेली से कल्लू भाई मिस्त्री मोहम्मद नईम मोहम्मद फहीम दानिश यशपाल दिवाकर चंदपुर जोगियान सीबीगंज बरेली से अली बहादुर यूसुफ अली इरशाद जाहिद अली तालिब अली सारिक अफसार और मोहम्मद अली सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुल्ढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े ज्योति नरवाड़े आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार आप हैं कालका से शुभचंद्र बजाज साहिल बजाज बिट्टा बजाज सेक्टर नंबर 67 मोहाली से टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा चंडीगढ़ से सतीश अनेजा बिमला अनेजा नखासा रोड उसहत बदायूं से मसरूर खान सरफराज खान विकास सक्सेना करमवीर गोस्वामी प्रवीण रावत अमन अब्बासी अनस मंसूरी दीपक बाल्मीकि मेघनाथ बाल्मीकि और आपके बहुत सारे साथी आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म अर्जुन पंडित का ये गीत शंकर महादेवन और प्रीति उत्तम की आवाज़ों में गीत के बोल जावेद अख्तर के हैं और संगीत निर्देशन दिलीप सेन समीर का

कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर सदर बाजार कैंट बरेली से हमारे श्रोता हरि सिंह, रॉकी सिंह, मीना सिंह, टीना, मेगा, प्रिया आप हैं, मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करियाना बरेली से पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह, धर्मवीर, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश, रूबी, रचना, एकता, दिव्या, ममता चौधरी, ओमवती भारती, खनक, नकुल, नैन्सी और सारांश। इसी गीत को सुनने का अनुरोध किया है एरोड्रम थाने के पास वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से रेखा, संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे। आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म रहना है तेरे दिल में का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के लिए छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्तरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार वर्मा। आप हैं जमशेदपुर झारखंड गांव सुपाही साही से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश कुमार, कुमारी निशा, रेशमा, प्रीति और देवेंद्र जी। पंचकूला सेक्टर नंबर 9 से आशु चोग, अश्विनी चोग, गोविंद चोग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे भाविक डिंगरा। सेक्टर नंबर 11 पंचकूला से अतुल शर्मा। इसी गीत को सुनना चाहते हैं आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा मीन।

चाहते हैं। आदर्श नगर मलोर पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश और मैंडी। पीएससी नकटिया से ताराचंद्र और बबली। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू निहारिका और वंश बत्ता। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म सिर्फ तुम का ये गीत अमीन साबरी और फरीद साबरी की आवाजों में। गीत के बोल समीर के।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम रसरंग में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस लोकगीत से, जिसको अपनी आवाज दी है कल्पना एस वर्मन ने।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं का इकराम, रसरंग में आइए। अब आपको सुनवाते हैं ये गजल जिसको गाया है जगजीत सिंह ने।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, ये अब आपको सुनवाते हैं गुलाम अली की गाई ये गजल।

0: मिताली सिंह की गाई इसी गजल के साथ कार्यक्रम रसरंग यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। आइए अब आपको जोड़ते हैं विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: प्रिय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, फिल्म का नाम आरती, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन।

ये स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के थे। फिल्म का नाम था आरती। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म आशिक, आवाज मुकेश की, शब्दकार शैलेंद्र हैं और धुन शंकर जयकिशन की।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कार्यक्रम का अगला गीत SH बिहारी का लिखा हुआ, रवि का संगीतबद्ध किया हुआ, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की, फिल्म का नाम अपना बना के देखो।

0: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
1: क्या बात है।
0: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
2: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
0: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: बिल्कुल।
2: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है माँ बेटा, गाने वाले कलाकार लता मंगेशकर और मुकेश, गीत रचना प्रेम धवन की और संगीत हेमंत कुमार का है।

उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम

0: एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: और आइए अब सुनते हैं फिल्म रंगोली का दो गाना, स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के। इसे शैलेंद्र ने लिखा है और तर्ज शंकर जयकिशन की है।

और आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम है बंबई का चोर। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार रवि हैं।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
0: सुनिए
2: कहिए।
1: सुनिए एक खुशखबरी।
2: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियाँ फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
0: सुनिए
2: कहिए।
1: सुनिए एक खुशखबरी।
2: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियाँ फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम समाप्त होता है। ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों में।

0: सखी सहेली
1: सभी सुनने वालों को सखियों को सहेलियों को सखाओं को श्रोताओं को चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार
2: और सभी श्रोताओं को हमारी सखियों को दीपा माहेश्वरी का चंचल आपको भी
1: दीपा आपको भी
2: हेल्दी नमस्कार।
1: हाँ जी हेल्दी नमस्कार। और त्योहार आते हैं ना तो उस वक्त हम इतने कई बार मसरूफ हो जाते हैं ना कि सेहत की तरफ ध्यान नहीं जाता क्योंकि
2: बिल्कुल।
1: हम बिल्कुल सुबह जल्दी उठ रहे होते हैं रात को देर से सो रहे होते हैं और खाने पीने का समय है वो भी अनियमित हो जाता है खाने पीने की जो चीजें हैं वो भी कुछ गड़बड़ा जाती
2: है बिल्कुल। और खासतौर पर जो घर की महिलाएं हैं क्योंकि सबको देने में सबके लिए ध्यान रखने में और जो घर में मेहमान आते हैं उनका ख्याल रखने में कहीं अपना ख्याल पीछे छूट जाता है।
1: बिल्कुल। सबसे पहले जो आगंतुक हैं मेहमान हैं
2: जी
1: हमारे अतिथि हैं उनको हमारी कोशिश रहती है कि उनको पहले परोसा जाए और सबका करते करते इतनी देर हो जाती है कि जो दोपहर के भोजन का समय होता है एक से दो के बीच का तीन बज जाते हैं चार भी बज जाते हैं।
2: हाँ बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है। और आज तो बहुत कुछ होने वाला है हमारे कार्यक्रम
1: बिल्कुल बिल्कुल त्योहार की हम बात कर रहे हैं ना क्योंकि ये हमारी विरासत है धरोहर है हमारी परंपराएं हैं जिन्हें हम निभा रहे हैं
2: जी।
1: और यही अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश दे पाएंगे।
2: बात तो बिल्कुल सही है और बहुत सारे संदेश इस बात को लेकर के हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी है इसीलिए बात होगी। पहला विषय जो है हमने चुना है आज के लिए कि त्यौहार हमारी धरोहर हमारी परंपरा इस पे आप क्या सोचते हैं और आप कितना इसको आगे बढ़ाने में इसकी कोशिश जारी रख रहे हैं।
1: बिल्कुल अगर कोई चीज को आगे बढ़ाना है हमारी धरोहर को तो आदान प्रदान बहुत जरूरी है ना।
2: अरे बिल्कुल
1: क्योंकि जब तक हम चीज कोई किसी को देंगे नहीं वो उसको ग्रहण कैसे करेगा और वो ग्रहण करेगा तभी तो आगे पहुंचाएगा यही तो होता है आदान प्रदान।
2: बिल्कुल सही कहा। और देखो ना भाई आदान प्रदान अच्छी चीजों का हो वहां तक तो ठीक है लेकिन अगर आप पर्यावरण में कुछ ऐसी विषैले पदार्थ लगातार अगर निकालते चले जा रहे हैं तो फिर देखिए ओजोन परत के संरक्षण में गंभीर विषय अब बन चुका है वो और उसमें कई सारी तकलीफें आ रही हैं और यही बातों को समझने के लिए आज हम ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं।
1: बिल्कुल इस पर भी विस्तार से बात होगी और हमारे सुनने वाले शायद इस बात को समझ रहे हैं कि हम सीधे सीधे विषय नहीं बता रहे हैं लेकिन बातों से उन्हें अंदाजा हो गया कि हम किन चीजों के बारे में किन विषयों को लेकर आज बात करने वाले हैं।
2: अरे भाई इतना देखिए गंभीर ना हो जाइएगा आज व्यंजन भी है क्योंकि मोदक के कई सारे प्रकार चंचल हमें बनाने और बहुत सारे संदेश आए हैं और बड़े मजेदार कुछ रेसिपीज भी हमारी सखियों ने लिख भेजी है।
1: तो तुमने ओजोन दिवस की जब बात की तो मुझे याद आया कि और भी दो महत्वपूर्ण दिवस आज हम मना रहे हैं। एक तो है हृदय में हस्तक्षेप द्वारा उपचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और आम बोलचाल की भाषा में डॉक्टर्स इसे इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी दिवस कहते हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2022 में घोषित किया गया था और इसी दिन 16 सितंबर यानी 2077 को डॉक्टर एंड्रियास ग्रुटिजिक ने पहली बार एक सफल एंजियोप्लास्टी की थी और इसीलिए दिल की जो बीमारियां हैं जो सर्जरी है उसके बारे में जागरूकता हो इसलिए दिवस हम मना रहे हैं।
2: बिल्कुल। और ये दिवस के साथ याद आया चंचल एक और मुख्य दिवस है आज है दक्षिण के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस।

0: तो सितंबर 2023 में इस दिन के आयोजन का फैसला हुआ था और 9 जनवरी 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये प्रस्ताव पारित करके 16 सितंबर को ये आधिकारिक दिवस घोषित किया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है ग्लोबल साउथ यानी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया के विकासशील देशों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी की कमी को पूरा करना, ताकि गरीबी, असमानता या जलवायु परिवर्तन जैसी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके और ये देश पीछे कहीं ना रह जाएं।
1: बिल्कुल, जलवायु की बात होती है तो ओजोन की बात भी होती है। हम विस्तार से इन सब को लेकर बात करेंगे, लेकिन पहले गीत सुन लें।
0: गीत भी सुनेंगे भाई, साड़ियों का जो लगाव है उससे कैसे हम पीछे सूट।
1: अरे हाँ भाई, विषय बताते बताते हम ये तो भूल ही गए कि आज साड़ियों की बात भी होनी है, तो आज कौन सी खास साड़ी की बात होगी?
0: आज हम करेंगे मोठड़ा साड़ी। आप बताइएगा कौन से प्रदेश से आती है ये साड़ी।
1: जी,

0: यशुदास की आवाज में बहुत खूबसूरती गीत हम सुन रहे थे, और गीत से पहले बहुत सारे महत्वपूर्ण दिवस की भी हमने बात की। इन्हीं में से एक है ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और ओजोन दिवस भी कहते हैं इसे हम।
1: बिल्कुल
0: सूरज
1: बहुत

0: जो प्रकाश, सूरज का जो प्रकाश है हम, ये हमारे जीवन को संभव बनाता है, लेकिन जो ओजोन परत है वो जीवन के रूप में से संभव बनाती है जिसे हम जानते हैं। और ओजोन परत गैस की एक बहुत नाजुक ढाल की तरह होती है जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। इस तरह से ये पृथ्वी पर जीवन को संरक्षित करने में भी बहुत मदद करती है।
1: बिल्कुल। और अगर ओजोन परत ना होती तो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ज्यादा होती। ये
0: हाँ
1: समताप मंडलीय परत एक अदृश्य ढाल की तरह हमें सूर्य की ज्यादातर हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। चंचल, ओजोन परत यूवीबी जो नाम के यूवी प्रकाश के जो हिस्से हैं उसे अवशोषित कर लेती
0: बिल्कुल,
1: है,
0: आम बोलचाल की भाषा में अल्ट्रा वायलेट रेज को
1: रेज को भी
0: जानते
1: बोलते
0: हैं,
1: हैं।
0: तो
1: जी
0: वो सीधे हम तक ना पहुंचे इसीलिए बहुत झिल्ली जैसी एक लेयर होती है।
1: हाँ, तो ये कई तरह से कई प्रकार के हानिकारक प्रभाव हम पर डालती है। और शायद बहुत कम लोग इस बारे में जानकारी रखते हैं कि जीवन के लिए ऑक्सीजन से ज्यादा जरूरी ओजोन
0: हाँ
1: है
0: सही
1: ना।
0: कहा,
1: और इस दिवस का आयोजन करने के कारण भी ये खास है। ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ ही इसे बचाने के समाधान की ओर ध्यान खींचना बहुत आवश्यक है।
0: बिल्कुल, जिस तरह से हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं तो ओजोन परत जो है, जो हमारी सुरक्षा कर रही है, उसको भी हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसीलिए इस बारे में ध्यान खींचा जा रहा है। और ओजोन परत की सुरक्षा के लिए इसे खतरनाक गैसों से बचाना है। सबसे ज्यादा खतरनाक गैसों में कुछ हैं CFC, जिसे क्लोरोफ्लोराइड कार्बन के नाम से हम जानते हैं, हेलोजेनेटेड हाइड्रो कार्बन, और मिथाइल ब्रोमाइड, और नाइट्रस ऑक्साइड। ये कुछ ऐसी गैसें हैं जो कि इस परत को नुकसान पहुंचाती हैं। और जब 1970 के दशक के अंत में वैज्ञानिकों को इस बारे में पता चला कि मानवता इस सुरक्षा कवच में छेद कर रही है, यानी कि हम ही लोग इसको बिगाड़ रहे हैं, तो जब उन्होंने इसके प्रति चिंता जताई कि इस तरह से अगर ये होता रहेगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और हम जो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ना, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, इनसे जो गैस निकलती है ना, ये वही गैसें हैं जो इस परत को नुकसान पहुंचाती हैं।
1: बिल्कुल। और जो हमारे जो निजी साधन है परिवहन के, उनका अधिक उपयोग करने से भी बचना है। और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना है, या साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं, पैदल चलने का प्रयास कर सकते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल, जो बहुत ही अच्छे ये समाधान है। इससे पहले हम घर में भी काम कर सकते हैं। वो
0: हाँ
1: कैसे कि भाई अगर आप हर कमरे में एयर कंडीशन चलाकर हर
0: जी
1: परिवार का एक एक सदस्य अलग अलग कमरे में
0: जी
1: बैठेगा और हर रूम का अलग अलग एसी चलाएगा, तो बताइए कि कितना हम पर्यावरण का नुकसान पहुंचा रहे
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: वो गैस कितनी ज्यादा हवा में फैल रही है। इसके अलावा आपका भी बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आर्थिक नुकसान भी होता है। तो दोनों ही नुकसान को हम बचा सकते हैं, रोक सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल। और साथ में बहुत जरूरी है कि आप एसी को एक या तो कमरे में चला लीजिए, फिर भी ना संभव है तो कुछ इस तरह से कीजिए कि सारे लोग एक वक्त तो एक ही जगह पर
0: जी
1: बैठें। उसके साथ में बहुत जरूरी है कि आप खिड़की दरवाजे थोड़ी सी देर खुले रखिए। स्वच्छ और शुद्ध हवा का
0: जी
1: आवागमन भी घर के लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, और इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों में ओजोन परत के बचाव को लेकर उन्हें जागरूक किया जा सके, इसे संरक्षित करने के संभावित उपाय खोजे जा सकें। इसे देश दुनिया ओजोन परत पर बातचीत करती है और सेमिनार भी आयोजित किए जाते हैं ताकि इसकी सुरक्षा हो सके।
1: बिल्कुल। और चंचल, ये दिन हमें याद दिलाता है कि ओजोन न केवल पृथ्वी पर बल्कि जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी ओजोन परत की रक्षा करना हमें आज से ही जारी रखना होगा।
0: बिल्कुल, जिस तरह से हमारे लिए हवा पानी जरूरी है, सूरज की किरणें भी जरूरी हैं, तो सूरज खुद जलकर हम तक ये रोशनी, प्रकाश और बहुत सारी चीजें हम तक पहुंचाता है। वो जलता रहे लेकिन उसे कोई नुकसान ना पहुंचे।

0: तो भाई सूरज की सुरक्षा के लिए, यानी कि हम सब सूरज की जब रोशनी हमें मिलती है तो वो अल्ट्रा वायलेट रेज सीधे हम तक ना पहुंचे, उसकी सुरक्षा के लिए ओजोन परत की सुरक्षा बहुत
1: बहुत
0: जरूरी है।
1: जरूरी है,
0: और
1: और हमारे
0: हमारे
1: पर्यावरण के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी
0: हमारे
1: है।
0: श्रोता भी इसी बारे में बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, और उनका भी यही कहना है कि ये एक महत्वपूर्ण परत है और शहकारी पदार्थों का उपयोग कम करना जरूरी है, पर्यावरण अनुकूल साधनों को अपनाना होगा, लोगों में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है, ओजोन परत की रक्षा हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य की रक्षा करना है। ये
1: जी
0: लगभग सभी
1: सभी
0: हमारे
1: के,
0: श्रोताओं ने
1: हाँ
0: लिख
1: जी
0: रखी
1: हाँ
0: थी।
1: बिल्कुल इसी तरह के आए हैं। और देखिए ना, जब ये सारी बातें होती है जागरूकता की, तो एक चीज की और जागरूकता आ जाती है कि जब त्योहार आ रहे हैं तो मन कैसे एकदम जागा जागा सा रहता है, बिल्कुल है ना, खुश खुश रहता है, और घर में सारा चहल पहल लगी रहती है। सुबह जल्दी उठना है कोई परिवार का सदस्य, क्योंकि कुछ तैयारी करके देर से सोया है, तो कुछ परिवार के सदस्य जल्दी उठ करके उसकी तैयारी कर रहे होते हैं।
0: ये देखिए ना,
1: और
0: ये जो सावन का महीना आता है ना,
1: जी
0: इसमें तीज, फिर रक्षाबंधन, फिर खत्म होते होते फिर ये जो आते हैं गणेश चतुर्थी, और महाराष्ट्र में तो चलिए बहुत धूमधाम से मनाया ही जाता है, अब तो देश के हर हिस्से में ये
1: बिल्कुल
0: बहुत धूमधाम से मनने लगा है।
1: जी।
0: इसके
1: और
0: खत्म होते होते कुछ दिन बाद ही फिर नवरात्रि आ जाएंगे, फिर दिवाली की शुरुआत हो जाएगी, और यूं जो सिलसिला है ना, अभी रुकने नहीं वाला है।
1: बिल्कुल, वो इसलिए रुकने नहीं वाला है चंचल, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, हमारी परंपराएं हैं, और जीवन में त्योहार ये सिर्फ कैलेंडर पे आने वाली तारीखें नहीं हैं, बल्कि ये हमारी संस्कृति, परंपरा और भावनाओं से जुड़े खूबसूरत अवसर होते हैं।
0: बिल्कुल
1: और हमारे देश में अगर त्योहारों का देश कहा जाए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं इसमें। ये
0: हाँ,
1: अलग अलग धर्म है, भाषाएं हैं, और अलग अलग क्षेत्रों के लोग अपने अपने त्योहार मनाते हैं, लेकिन हर त्योहार के पीछे एक भावना दिखाई देती है, खुशियां बांटना और लोगों को एक दूसरे के करीब लाना।
0: देखिए अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग त्योहार तो होते ही हैं दीपा, लेकिन एक ही त्योहार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है।
1: बिल्कुल
0: कहीं खान पान का थोड़ा सा फर्क होता है, कहीं पहनावे का, तो कुछ कुछ रीति रिवाजों का बहुत थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि वो चीजें होती मिलती जुलती ही हैं, जो उनका मतलब है, अर्थ है, वो एक ही होता है।
1: जी
0: अब दिवाली हो, होली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरुपर्व, पोंगल, गणेश उत्सव, नवरात्र, हर त्योहार का जो है अपना एक अलग रंग होता है, स्वाद होता है, और एक संदेश लेकर भी वो आता है।
1: बिल्कुल
0: त्योहारों के माध्यम से हमारी आने वाली पीढ़ियों जो है वो अपने जड़ों से जुड़ती हैं, रीति रिवाजों को जानती हैं, और जो हमारे पूर्वज हैं वो बड़े प्यार से इन चीजों को संजो कर रखते हैं।
1: और त्योहारों की सबसे सुंदर बात चंचल ये लगती है कि इसमें परंपरा के साथ अपनापन जुड़ा होता है, और त्योहार आते हैं

0: देखो ना, घर में साफ सफाई शुरू हो जाती है, तरह तरह के पकवान बनते हैं, फिर घर भी सजता है, रिश्तेदारों को और मित्रों को हम जो मिलने मिलाने का एक सिलसिला सा शुरू हो जाता है। कहीं पर हम आमंत्रण दे रहे हैं, कहीं पर हम आमंत्रित हैं, इस
1: जी
0: तरह की बातें भी होती है। और कई बार तो त्योहारों का इंतजार इसलिए भी होता है कि इसी बहाने परिवार के सभी लोग एक साथ बैठेंगे, बातें करेंगे और फिर वो पुरानी यादों को फिर से जिया जाएगा।
1: बिल्कुल, जब हम दिवाली मना रहे हैं तो पिछली दिवाली पर क्या हुआ था ये याद करते हैं।
0: हाँ
1: इस साल जब हम गणेश उत्सव मना रहे हैं तो याद
0: जी,
1: करते हैं कि पिछले साल मूर्ति कैसी थी, कौन कौन मेहमान आए थे, किस तरह से धमाल मस्ती हुई, क्या पकवान घर में बनाए गए थे। ये पिछली जो बातें होती है ना, वो यादों की एक फहरिस्त तैयार होती जाती है।
0: बिल्कुल। और परंपराएं केवल पूजा पाठ या रस्मों तक सीमित नहीं होती हैं, इनसे पीछे जीवन को बेहतर बनाने की सीख भी छिपी होती है चंचल। जैसे दीपावली हमें अंधकार पर प्रकाश का, विजय का संदेश देती है, होली आपसी भेदभाव भुलाकर प्रेम के रंग में रंगने की सीख देती है, फिर देखिए ना, ईद हमें भाईचारे और साझेदारी का संदेश देती है, तो क्रिसमस प्रेम और करुणा की भावना हमें जगाता है हमारे अंदर। यानी हमारे त्योहार हमें हर साल याद दिलाते हैं, मानवता, प्रेम और सद्भाव ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: और हमारे एक संदेश में हमें बताया गया है कि त्योहार हमारी धरोहर और हमारी परंपराएं हैं। हम सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि पूरे साल हम विभिन्न त्योहार उत्साहपूर्वक मनाते हैं जो हमारी धरोहर हैं, और हम परंपरा के अनुसार इन्हें मनाते हैं। जैसे इस समय हम गणेश उत्सव मना रहे हैं, हमने घर में पूजा के कमरे में मिट्टी से बने हुए गणेश जी की स्थापना की है। 11 दिनों तक सुबह और शाम घर के सभी सदस्य आरती में उपस्थित रहते हैं। एक बेटी है जो कि बाहर जॉब करती है, बाहर उसकी पोस्टिंग है, लेकिन फिर भी वो वीडियो कॉल के माध्यम से इस पूजा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा देती है। और यही हमारी धरोहर है, हमारी परंपरा है। कई सालों से इस परंपरा को हमारे घर के सभी बड़े निभा रहे हैं, इसे हमने भी कायम रखा है। यही तो बात हम भी कह रहे हैं ना कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को पूंजी के रूप में इन चीजों को सौंप कर जाने वाले
0: बिल्कुल।
1: हैं।
0: और एक हमारे जो हमारी सखी है, उन्होंने कुछ अलग अंदाज में लिखा है। वो कहती है, आए त्योहार खुशी की बहार, दीप जले सजे घर के द्वार, रंग बिरंगे उमंगों का मेला, रह न जाए कोई अकेला, मिलकर गाएं खुशियां मनाएं, प्यार का संदेश हम सब पहुंचाएं।
1: तो बस हर दुख छोड़कर, हर चीज को भुलाकर हम भी खुशियों की रंगरेलियां मनाएं।
0: चलिए।

0: भाई चंचल, देखिए, गम छोड़ना तो चाहिए बिल्कुल, त्योहारों में मिलने का जो असली अर्थ तो वो ही है। साथ में हम ये परंपराएं क्यों मनाते हैं, क्यों ये हमारी धरोहर है, अपने आने वाली पीढ़ी यारे हमारे बच्चों को जरूर इस बारे में बताना चाहिए। क्यों विशेष व्यंजन बनते हैं, जैसे कि प्रकृति के अनुरूप जो जो उस वक्त उपलब्ध होते हैं,
1: जी
0: चाहे
1: जी
0: आप धान की बात कीजिए, अनाज की बात कीजिए, फल सब्जियां जो भी उपलब्ध होती हैं उस वक्त प्रकृति के हिसाब से, जो भी वो पैदावार होती है,
1: जी
0: उनसे जुड़ी हुई व्यंजन जब बनते हैं, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, उसके पीछे क्यों ये बनाया जाता है, इस पे
1: हाँ
0: विचार विमर्श हो, उस पे डिस्कशन घर में बैठ के कीजिए, आप देखिए इतना आनंद आएगा। और बच्चों में जो ज्ञान वर्धन होगा, उसके बाद वो वाकई में हमारी परंपराओं और हमारी इन धरोहरों की जो असली जो महत्वपूर्ण इसकी
1: जी
0: महत्ता है उसको समझेंगे।
1: बिल्कुल। बच्चों के ऐसे सवाल होते हैं कि भाई आप गणपति जी को भोग लगाते हैं तो चावल के आटे वाला ही मोदक क्यों
0: क्यों
1: लगाते
0: लगाते
1: हैं,
0: हैं?
1: अन्नकूट पर पूजा करते हैं तो क्यों उस समय ये वाली ही सब्जियां बनती हैं। जैसे
0: जी
1: बहुत सारे, जो भारत एक कृषि प्रधान देश है और जो त्योहार हैं वो भी कृषि प्रधान बहुत सारे होते हैं, बैसाखी है, अन्नकूट है, पोला है, ऐसे न जाने कितने त्योहार हैं
0: बिल्कुल
1: जो कृषि पर ही निर्धारित होते हैं। जब नई फसल आती है ये अक्टूबर के महीने में,
0: जी
1: तब जो भी फल सब्जियां या धान उगाए जाते हैं उन सबका भोग लगाया जाता है अन्नकूट में।
0: जी
1: इसी तरह से बैसाखी में जब सरसों की खेती होती है, सरसों काटी जाती है, गेहूं कटता है और जो भी अनाज कटते हैं, तो उनकी उनकी वो खुशियां मनाई जाती हैं।
0: बिल्कुल, और उन्हीं से ही जुड़ी हुई चीजें बनती हैं घर में, है
1: बिल्कुल
0: ना?
1: इसी तरह से संक्रांति आती है, तो क्योंकि सर्दियों में हमारे शरीर को गर्माहट की जरूरत होती है, तो तिल का
0: तिल का
1: विशेष रूप से
0: विशेष रूप से
1: ग्रहण हम
0: ग्रहण किया जाता
1: जी
0: है, बिल्कुल। और आखिर त्योहार की असली खुशी तभी है ना चंचल, जब हमारे चेहरों के साथ साथ किसी और के चेहरे पे भी मुस्कान आए, तो त्योहार की खुशियां उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
1: इसी तरह से एक संदेश में हमारे श्रोताओं का कहना है कि त्योहार पहले भी हमारी धरोहर थे और आज भी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले संयुक्त परिवार होता था, एक बड़ा परिवार होता था, सब साथ मिलकर खुशियां मनाते थे, त्योहार मनाते थे, खूब आनंद आता था। आज क्योंकि एकाकी परिवार हो गए हैं और अलग अलग हो गए हैं सब, लेकिन छोटे परिवार हो गए हैं, त्योहार हम आज भी मनाते हैं। तो ये बात
0: बिल्कुल
1: सही है, महानगरों में जगह की कमी के चलते एकल परिवार ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन जब कोई त्योहार होता है तो भले हम 4 दिन एक साथ ना बैठे, लेकिन उस दिन जब त्योहार मनाया जा रहा है तो घर पर पूरी चहल पहल होती है। वो जो छोटा सा भी घर हो ना, तो पूरा मेहमानों से भरा पूरा लगता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश आया है, ये कहते हैं कि वर्तमान समय में पश्चिमी संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के बीच हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारे त्योहारों का मूल स्वरूप और पवित्रता बनी रहे।
1: इन बातों को हम और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि एक छोटे से अंतराल का समय हो गया है।
0: जी।

0: चंदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। मैं हूँ आपकी चिर परिचित मित्र विमलेश। नमस्कार श्रोता मित्रों, तो करते हैं एक सुंदर विचार से शुरुआत, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं, हमें जीवन मिला है एक दूसरों में खुशियाँ बांटने के लिए, इसलिए हमें हमेशा दूसरों के जीवन में खुशियाँ और सौहार्द बांटना चाहिए। धन्यवाद आपका संदेश के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम। चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू रविंद्र रौनक सेन। और इसके साथ साथ ही संदेश मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। वो लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम के द्वारा सुंदर व उपयोगी प्रस्तुति के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी जी का, ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे, ग्राम नजीरपुर पोस्ट मोती नगर मसौदा जिला अयोध्या से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा जी का। धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पर्यावरण से संबंधित लघु लोक कथाओं और परंपराओं की। आपको विशेष रूप से ये बता दें कि इस सप्ताह हम जो लोक कथाएं या प्राचीन मान्यताएं लेकर आए हैं, उनमें हमने प्रयास किया है कि वैज्ञानिकता और तर्क से बढ़कर लोगों की प्राचीन मान्यताओं को सामने लाएं, जो आज भी हमें महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। लोक कथाएं और मान्यताएं भी बहुत कुछ कहती हैं, ये भी इतिहास का स्रोत हैं। इसी क्रम में आइए चलते हैं जापान के घने जंगलों में। आज हम बात करेंगे जापान की बहुत प्राचीन पर्यावरण संबंधी मान्यता कोदामा की। कोदामा एक मान्यता है जो सदियों से जापान के पर्वतीय और वन्य क्षेत्रों में चली आ रही है। इसके अनुसार कोदामा यानी पेड़ों की आत्मा। भारत की बात कहें या किसी भी देश की, वहां की प्राचीन मान्यताओं में अक्सर एक बात मानी जाती है कि जंगल या पेड़ों पर जीवात्मा या प्रकृति की आत्मा वास करती है, क्योंकि पेड़ों में भी जीवन है। आपको बता दें कि यदि जापान में लोग किसी पुराने जंगल में जाएं और यदि वहां कोई बहुत पुराना बहुत विशाल पेड़ दिखाई दे, तो लोग उस वृक्ष का अभिवादन करते हैं और उसे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वे मानते हैं कि पेड़ केवल लकड़ी, फलों, औषधियों और छाया का ही स्रोत नहीं है, लेकिन इस पर कोदामा का निवास हो सकता है। तो कल्पना कीजिए श्रोताओं, आप जापान में हैं और किसी जापानी टूरिस्ट गाइड के साथ समूह में जंगल घूमने गए हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और अचानक आप सबकी नजर एक बहुत पुराने पेड़ पर पड़ती है, जिसका तना इतना विशाल है कि उसे कई लोग मिलकर भी शायद पूरी तरह घेर न पाए। वो मातृवृक्ष है जो लगभग आधे जंगल का पोषण कर रहा है। तो ऐसे पेड़ को देखकर आपको गाइड जरूर बताएगा कि जापान की लोक मान्यता के अनुसार ये केवल पेड़ नहीं है, इसमें कोदामा का वास और आशीर्वाद है, इसीलिए लंबी आयु इसे मिली है। गाइड कहेगा कि पुराने पेड़ों का विशेष सम्मान करें, क्योंकि वे मातृवृक्ष हैं और आसपास के जंगलों को उन्होंने ही उगाया है, उससे ही दूसरे छोटे पेड़ों को जीवन मिला है। साथियों, और यही बात कोदामा की परंपरा को पर्यावरण की दृष्टि से बहुत रोचक बना देती है, क्योंकि जब किसी समाज को ये महसूस होने लगे कि पेड़ में भी जीवन है, पेड़ का भी सम्मान है, तो कुल्हाड़ी उठाने से पहले, उनकी अंधाधुंध कटाई करने से पहले वो समाज 10 बार सोचेगा, और यही पर्यावरण के प्रति सच्ची जागरूकता है। कोदामा की लोकमान्यता हमें आधुनिक भाषा में एक बहुत सुंदर विचार देती है। पेड़ों और प्रकृति को केवल संसाधन मत समझिए, उसे जीवन का आधार समझिए। सचमुच कितनी अद्भुत बात है ना श्रोताओ। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं ये लकड़ी है, ये पानी है, ये जमीन है, लेकिन प्रकृति हमें शायद ये याद दिलाती है।

0: है। मैं केवल तुम्हारे उपयोग की वस्तु नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। श्रोताओं, भारत, जापान, अमेरिका और दुनिया के सभी देशों में प्रकृति के प्रति ऐसी मान्यता है जो हमें संदेश देती हैं कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और पेड़ों को कितनी गहरी और सम्मान की दृष्टि से देखा था। तभी तो हमारे भारत में भी पेड़ों या वनस्पति को नमन किया जाता है। तो उमंग के हमारे प्रिय श्रोताओं, जब भी किसी पुराने पेड़ के पास से गुजरें, एक पल जरूर रुकिए, उसकी छाल को देखिए, उसकी शाखाओं को देखिए और सोचिए, इस पेड़ ने हमसे पहले न जाने कितनी ऋतुएं देखी होंगी, कितनी पीढ़ियां आई और चली गईं, और ये पेड़ हमें सांस और जीवन देता हुआ अब भी खड़ा है। और शायद यही प्राचीन जापानी परंपरा कोदामा की सबसे सुंदर सीख का सारांश है, क्योंकि जिस दिन से हम पेड़ों को केवल काटे जाने वाली लकड़ी के रूप में देखना बंद कर देंगे, उसी दिन से शायद हम जंगल को भी केवल जमीन का एक टुकड़ा समझना बंद कर देंगे। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी जापान की कोदामा परंपरा पर। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वॉटर। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित ये एक संगीत प्रधान कार्यक्रम है, जिसके द्वारा बताया गया है कि निरंतर अभ्यास और कार्य करते रहने से असंभव से भी असंभव लगने वाला कार्य संभव हो जाता है।
1: हेलो चिल्ड्रन।
2: हेलो मैम।
1: हाउ आर यू ऑल?
2: वी आर फाइन मैम।
3: आई एम गुड मैम। आई एम फाइन।
1: गुड, वेरी गुड दैट यू ऑल आर गुड। Do you like going to the garden?
2: Yes, I like it.
1: What do you see in the garden? Tell me. Vanya, Soham, Lavish, what do you see in the garden?
4: I see beautiful flowers.
1: And any other thing that you like in a garden?
5: I like sitting under the tree.
1: And you, Soham?
6: I like to see butterflies.
1: Yes, butterflies are really beautiful. Now tell me, do you hear something in the garden? Children, tell me. Any sound?
2: Yes, ma'am.
5: Yes, ma'am. I listen to the sweet chirping of birds.
1: Very good, that there are so many beautiful things in a garden, isn't it?
2: Yes, ma'am.
1: So children, when all these beautiful things come together, they make what? They all make a beautiful
2: garden.
1: Wonderful. You have replied so well. So children, when small and little things come together, they make a big and beautiful thing. Okay?
2: Yes, ma'am.
1: All right. So now, let us have some puzzle. Ready?
2: Yes, ma'am.
1: Okay. Tell me, if so many trees are together, what will they make?
2: A jungle.
1: That's correct. And if so many grains of sand are together, as far as you can see, They will make
2: a desert.
1: Very nice. Let us recite a poem now. Would you like to recite with me?
2: Yes, ma'am.
1: This poem will tell us how small things make big things. Okay?
2: Okay, ma'am.
1: So, here comes the poem. Repeat after me. Little drops of water.
2: Little drops of water.
1: Little grains of sand.
2: Little grains of sand.
1: Make the mighty ocean.
2: Make the mighty ocean.
1: and the pleasant land.

0: So children, you have just heard this song. What did we learn? Tell me.
1: Little things together make big things.
0: Little things together make
2: big things.
0: Yes. So, if all of you little children live together with love and kindness, you will spread happiness all around.
3: लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत। और अब सुनते हैं कार्यक्रम श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन। इस कार्यक्रम में महान तपस्वी, दार्शनिक और चिंतक श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के बारे में एक सुंदर नाटक द्वारा समझाया गया है और उनकी शैक्षिक प्रविधियों की चर्चा की गई है।
4: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
5: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए।

इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पांडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
0: जी,
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।

0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
0: जी,
1: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
0: जी,
1: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करे। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
2: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
1: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
0: जी,
1: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
2: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
1: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
0: जी,
1: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
2: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
1: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
2: हाँ?
1: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
2: और ब्रह्मचर्य?
1: रामकृपाल, ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
0: जी,
1: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
2: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
1: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
0: जी,
1: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
0: जी हाँ,
1: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें 1-2 विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
2: बिल्कुल ठीक।
1: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
2: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
1: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
0: जी,
1: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश

0: उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी छह इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: छह इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता?

0: इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो पांच ही इंद्रियां हैं।
1: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये पांचों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
0: जी,
1: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
0: जी हाँ,
1: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
0: जी बिल्कुल,
1: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माता जी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

0: श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पौंडेचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से प्रसारित किया गया। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से 100.4 FM पर। शाम के 4 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ।
4: श्रोताओं नमस्कार। शाम के 4 बज चुके हैं और हम लेकर हाजिर हो गए हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और कार्यक्रम में देखते हैं सबसे पहले हमें किसने फोन कॉल किया है। हेलो
5: जी। हेलो, नमस्कार सर जी।
4: नमस्कार, हम अच्छे हैं।

0: कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: थाना सब्जी मंडी वाली से बात कर रहा हूँ।
0: जी सुताल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी सर जी, आज का विषय भी बहुत अच्छा है जो कि 1980 की बात कही है लौटने की,
0: जी
1: तो शायद वो तो पल हम लोग मिस कर चुके हैं जो कि हमारे और लोगों ने देखा है,
0: जी
1: हमने तो नहीं देखा,
0: जी
1: लेकिन उसमें अगर मौका मिला जाने का तो सबसे पहले ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगे हैं
0: जी
1: नीचे गिरा के और उस घास फूस छपा हुआ करते थे, मिट्टी के जो घर होते थे उनमें जो हवा आती थी बाहर की, तो ना
0: जी
1: ही कोई पंखा और ना ही कूलर की जरूरत पड़ती थी, तो
0: जी
1: ये चीज अगर हमें मिल जाए दोबारा पहुंचने का मौका मिले तो सबसे पहले हम इसको करेंगे और उसके बाद जाके फिर हम जो आजकल जो प्रदूषण चल रहा है गाड़ियां हैं इनको बंद करें, क्योंकि जिम्मेदार हम खुद है, कोई और नहीं है।
0: जी बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार व्यक्त किए इस विषय पर। कहिए, गीत की बारी है तो गीत कौन सा हो जाए आपके लिए आज इस कार्यक्रम में?
1: सब्जी बेचारा
0: जी
1: गाने के बोले दर्द सुनहरी अंबर नीला।
0: ठीक है सुल्तान रजा भाई, आपने कार्यक्रम में फोन किया, अपने विचार व्यक्त किए और अब गीत की बारी है तो हम भेज रहे हैं आपकी पसंद पर। ये गीत एंजॉय कीजिए।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में देखते हैं। अब हमारे साथ इस कार्यक्रम में कौन जुड़ चुकी हैं? कार्यक्रम में स्वागत है
1: जी, हम मौलागढ़ यूनिवर्सिटी बरेली से तरन्नुम अंसारी बोल रही हूँ।
0: तरन्नुम अंसारी जी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और लगता है कि काफी अरसे बाद आपका फोन कॉल आज लगा है, हमें ऐसा आभास हो रहा है। हमारे केंद्र का जो कार्यक्रम है वो आप सुन नहीं पा रही हैं इस समय।
1: जी सर, सुन तो पा रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं, लेकिन कॉल कम लगा रहे थे और ऐसे कमेंट कर रहे थे, लेकिन सुन तो रोज रहे हैं।
0: चलिए, आप जैसे लोक श्रोता हमारे हैं, हम हिंदी जुड़े रहें, कार्यक्रम सुनते रहें, अपनी जो क्रिया प्रतिक्रिया है वो देखते रहें। आज का हमारा विषय आपको मालूम है क्या विषय है हमारा? हमारा विषय आज का है कि अगर आपको 1980 के साल में जाने का मौका मिले तो आप कौन सी घटना को बदलना चाहेंगे? तो क्या विचार रहेंगे आपके इस विषय पर?
1: जी सर, मेरे विचार ये रहेंगे, अगर मुझे 1980 में जाने का मौका मिलता या वैसे अभी मिले तो मैं ये बदलाव लाना चाहूंगी। जैसे अब के टाइम में बहुत भागम भाग का जमाना है, एक दूसरे को लोग समय नहीं दे रहे हैं,
0: जी
1: तो मैं उस टाइम की यही जैसे आदत साझा करना चाहती हूँ। जैसे उस टाइम पे बहुत अच्छा था, एक दूसरे से सब जैसे आपस में बैठ कर बातें करते थे,
0: दिन थे फुर्सत के, है ना, समय था।
1: जैसे बहुत अच्छा सुकून का जमाना था।
0: चलिए, आपने अपने विचार व्यक्त किए, बहुत अच्छे विचार आपके लगे कि आज के दौर में समय कहाँ है लोगों के पास, लोग और
1: जी सर,
0: इस
1: घर में चार लोग हैं आज के टाइम में, तो आज चारों के अलग अलग फोन अलग अलग बैठ गए। उस टाइम का जमाना था, घर में 10 जने थे, 10 वो एक साथ बैठ के कहानियां सुनते थे, अच्छा लगता था।
0: जी, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। तो अब गीत की बारी है तरन्नुम, कहिए गीत कौन सा हो जाए आपके लिए इस कार्यक्रम में?
1: जी सर, आज मैं गाना सुनना पसंद करूंगी, फिल्म का नाम है शिकार और गाने की बोला, तुमसे मरने लगे हैं हम, इश्क करने लगे हैं, सोड़िए हीरिए हो गई जगह।
0: ठीक है, तरन्नुम हम भेज रहे हैं आपकी पसंद पर, ये गीत एंजॉय कीजिए।
1: थैंक यू सर।
0: वेलकम।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में स्वागत है और देखते हैं हमारे कौन से साथी हमसे अब जुड़ चुके हैं। हेलो
1: हेलो।
0: जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में हमारे कौन से श्रोता बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: हम जिला बरेली, तहसील नवाबगंज, थाना कोलड़िया, ग्राम भगुआ बाजार से बोल रहे हैं, बाबू भाई।
0: बाबू भाई, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद।
0: हमारा जो आज का विषय है आपसे बातचीत करने का, वो ये है कि अगर आपको 1980 के साल में जाने का मौका मिले तो आप कौन सी
1: हाँ,
0: घटना बदलेंगे, मतलब आज में, 26 में और 80 में क्या आप चाहेंगे बदलना कि ये बेहतर है?
1: सर ऐसा है, 1980 तो 1980 से आप बहुत बेहतर है। 1980 तो बहुत परेशानी में कट गई।
0: यानी कि आप 1980 के हमें लग रहे हैं।
1: हम 80 से, हमारी उम्र है करीब 65 साल,
0: जी
1: और
0: जी
1: हाँ, और हम क्या चक्कर है, 1975 से ही रेडियो सुन रहे हैं और आज भी हमारे पास रेडियो है, रेडियो ही सुनते हैं जी।
0: आज के लोग जाना चाह रहे हैं 1980 में, और आप कह रहे हैं कि 1980 का दौर बहुत कठिन कटा, मतलब कैसे, समझाइए।
1: 1980 सर ऐसे कटा, 1980 में जो सुविधाएं आज हैं
0: जी
1: वो 1980 में नहीं थी,
0: जी
1: तो इसलिए सुविधाएं आज ज्यादा हैं।
0: जी
1: कुछ नहीं, सुकून आज है ज्यादा, 1980 में इतना सुकून नहीं था
0: जी
1: जो
0: जी
1: आज है। आज हर तरीके से सुविधाएं हैं, देखो गवर्नमेंट ने बहुत कुछ तुम्हारे साथ कर रखा है, और अगर आप इसे ना माने तो ना माने। और सर ऐसा है, हम अपने कुछ नाम बोल सकते हैं अगर आपकी आज्ञा हो।
0: हाँ, आप नाम बोल दीजिए और गाना सुनना है कौन सा उसकी भी फरमाइश कर दीजिए।
1: राबिया और निदा भी और सैफ आलम, नवाज आलम, तोयबा खातून, ताहिरा खातून,
0: जी
1: और इनके सबके साथ हम साहब पुतली बाई की कव्वाली सुनना चाहते हैं।
0: ठीक है, हम भेज रहे हैं बाबू भाई ये कव्वाली, एंजॉय
1: हाँ
0: कीजिए।

के सर पे दिलेरी का ताज बैठी है, जो घर में थी वो सिंहासन पे आज बैठी है। अगर झुके तो ये दिल क्या है जान भी दे दे, जो सर उठाए तो मर्दों की जान भी ले ले। अगर चे फूल का

रूप सैयारों से मांगा, रंग उषा से लिया, पंखड़ी से ली नजाकत और कलियों से अदा, शाम से काजल लिया और सुबह से गाजा लिया, बिजलियों से खैर मांगा, आग से गुस्सा लिया, हौसला चट्टा।

0: बुलबुले से नाजुकी नदी से पल खाना लिया, आईने से हैरतें तस्वीर से खामोशियां, लहर से अटखेलियां मांगी पवन से शोखियां, आंख ली हरनी से और शबनम से आंसू ले लिया, बदलियों से जुल्म नजारों से जादू ले लिया, लाजवंती से शर्म और रात रानी से हया, आबरू मोती से ली सूरजमुखी से ली वफा, जहर नागन से लिया और सांप से डसना।
1: श्रोताओं देखते हैं अब हमारे कार्यक्रम में हमसे कौन जुड़ चुके हैं। हेलो
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार, कार्यक्रम में आपकी बात आकाशवाणी के साथ में स्वागत है। हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं, कहां से बात कर रहे हैं?
2: जय हीरामन बाबा रेडियो श्रोता संघ, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश से विनोद नारायण कुशवा बोल रहा हूँ सर।
1: कुशवा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है और हमारे विषय के बारे में क्या ख्याल है आपका, क्या विचार है आपके?
2: सर हमें कहना चाहेंगे जैसे कमलनी स्वास्थ्य में बात की चले जाएंगे तो पहले का जो समय था सर बहुत अच्छा था, अलग था। आज का समय उससे थोड़ा विपरीत है सर
1: जी,
2: क्योंकि पहले के टाइम में सर एक दूसरे से लोग कनेक्ट रहते थे, अच्छे से बात करते थे, बोलते थे, थोड़ा टाइम भी एक दूसरे को देते थे। लेकिन आज के समय में किसी के पास भी सर 2 मिनट का टाइम नहीं है कि वो हमारे पास बैठ सके या 1 घंटे हम कहीं घूमने जा सके, तो वो टाइम एक अलग था। आज का टाइम सर बहुत ही अलग हो गया।
1: बहुत अच्छे विचार व्यक्त किया आपने
2: जी। और सर बदलने की बात है तो परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो सर समय तो बदलता रहता है, तो सर बदलना भी जरूरी है। समय के साथ हर चीजें बदल जाती है
1: जी। जी बदलाव भी जरूरी है ना
2: जी सर, बदलाव ही जरूरी है।
1: तो विनोद जी आज कार्यक्रम में गीत की बारी है, कहिए आप कौन सा गीत सुनवा दें आपको।
2: सर जी गणेश जी का कोई भी गीत सुनवा दी।
1: ठीक है, तो विनोद कुशवाहा जी आप सुनिए अपना गीत पसंद का, अशोकनगर MP में।

0: श्रोताओं, देखते हैं कार्यक्रम में इस वक्त कौन फोन लाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं हमसे। हेलो,
1: सबसे पहले आपको तमाम प्यारे प्यारे सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार सर।
0: नमस्कार। आपको भी हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं खंडिया गेट कॉलोनी जिला रामपुर से अमरजीत बात कर रहा हूँ सर।
0: जी, कार्यक्रम में स्वागत है अमरजीत जी। सब परिवार में कुशल मंगल आपके?
1: जी सब परिवार में अच्छे हैं और जानना चाहूंगा आकाशवाणी बरेली परिवार में सभी लोग कैसे हैं सर।
0: सब अच्छे हैं। हमारा जो विषय आज का है उसके बारे में क्या ख्याल है, क्या विचार हैं आपके?
1: सर मैं जो 1980 का विषय आप लोग लेकर आए हैं, इस विषय से जुड़े मैं दो सवाल करना चाहूंगा कि आजकल जो गलत से लोगों में सर आजकल पहनावा बहुत शोर चल रहा है, तो मैं उनसे विनती करूंगा शॉर्ट पहनावे को नहीं पहने, नॉर्मल पहनावा पहने। जो पहले का पहनावा था काफी अच्छा था सर, और आजकल का पहनावा सर शॉर्ट पहनावा, तो 1980 का पहनावा

0: काफी बेहतर था सर।
1: आपके विचार हमें अच्छे लगे और बहुत अच्छे आपने विचार दिए। कहिए अब गीत की बारी है, अमरजीत जी कौन सा किस्म बात है आपको उस कार्यक्रम में आज है?
0: सर मैं गीत सुनना चाहूंगा, सोनू निगम जी की आवाज में एक गीत है, एक मासूम का चेहरा तेरा मुझे दीवाना बना दिया, ये गीत सुनवा दे।
1: ठीक है, हम भेज रहे हैं आपकी पसंद पर ये गीत, एंजॉय कीजिए।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में देखते हैं। इस समय हमारे कौन से श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे कौन से श्रोता बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी सर, नमस्कार। हम बंटू भाई प्रजापति बोल रहे हैं, ग्राम कतरा कला से। थैंक
0: बंटू भाई प्रजापति जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है
1: यू सर।
0: जी। हमारी जो आज की बात का विषय मालूम है आपको?
1: जी सर।

0: क्या विचार हैं आपके इस विषय पर, क्या कहना चाहेंगे आप?
1: सर मैं तो इसके विषय में यही कहना चाहूंगा, जब सन 1980 थी तो उस समय लोग बहुत प्रेम भाव से रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, आपस में बैठते थे और कहानियां सुनाते थे, चुटकुले सुनाते थे, सोशल क्या लगता था, पर्यावरण भी शुद्ध था और हमारा खान पान भी सर बहुत शुद्ध था।
0: जी
1: और आज का दौर ये है, मतलब आदमी के पास सर किसी के पास बैठने का कोई समय नहीं है, आज का भाग दौड़ का मतलब ज्यादा चल रहा है, किसी के पास अगर मतलब 2026 में सब लोग अगर मिलजुल कर दे रहे हैं और आपस में बैठे और एक दूसरे से प्रेम भाव से बोले, चुटकुले सुनाए, कहानियां सुनाए, तो सर बहुत अच्छा लगेगा,
0: बिल्कुल, आपसी प्रेम बढ़ेगा, है ना?
1: आपसी प्रेम बढ़ेगा सर।
0: तो बंटू भाई, ये तो आपके विचार बड़े, आपने अच्छे विचार दिए। आप बताइए, कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
1: रिसर्च गाना सुनना चाहते हैं, प्यासा कुएं की पासा सा है, मैं ही मोहब्बत का प्यासा, मैं भी अपने दिल की प्यास बुझाने आया हूँ, आगे तेरी मर्जी, दिल दे या ना दे।
0: ठीक है, तो बंटू भाई हम भेज रहे हैं आपकी पसंद पर ये गीत, एंजॉय कीजिए।
1: थैंक यू सर।
0: वेलकम।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और अब वक्त है आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ने का। ये साथी हमारे हमें लिख रहे हैं, इनका गांव है विटोडा भोयर, तहसील मंगरूल पीर, जिला वाशिम, पश्चिम विदर्भ से लिख रहे हैं। योगीराज मस्के, श्री हरि मस्के, इंदू मल्हार, कविता मस्के और साथी लिख रहे हैं कि अगर मुझे 1980 में जाने का मौका मिला तो समूचे मेहनतकश सर्वहारा समाज की दृढ़संकल्पी सृजनशील विवेक की जिम्मेदारी से देश में जो भी सृजन किया जाएगा वो करना पसंद करूंगा, और वो रेडियो प्रसारण का दौर लाना चाहूंगा जहां बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, विद के तहत ज्ञान, जानकारी और स्वास्थ्य, मनोरंजन त्रिसूत्री की नींव रखी गई थी, और वो सामाजिक सौहार्द लाना चाहूंगा जहां सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा। ये अल्लामा इकबाल की कालजयी रचना जीवनी का अभिन्न हिस्सा बनाया, भारतीय देश सर्वोपरि के तहत ही अपना हर काम किया करते थे, वो सब कुछ लाना चाहूंगा। और साथ ही लिख रहे हैं कि अगर मुझे 1980 में जाने का मौका मिले तो मैं आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी को बदलने को चाहूंगा, क्योंकि आजकल कोई भाईचारा नहीं रहा, अपने अपनों से जलते हैं, अपना अपनों को देखना ही नहीं पसंद करते हैं, और ना ही किसी के पास टाइम है किसी के पास बैठने का, हर कोई आपाधापी में लगा हुआ है, जबकि सभी को पता है कि साथ कुछ नहीं जाना, लेकिन फिर भी अपनों को ही धोखा देकर अपनी तिजोरियां भरने में लगे हैं। जबकि 1980 के जो दशक था उसमें प्रेम और भाईचारा बहुत था और अपनों को अपनों के पास बैठने का टाइम भी था, सुविधाएं कम थी लेकिन सुकून बहुत था, आजकल वो सुकून नहीं मिलता। लिख रहे हैं मास्टर सुनील बाबू, निकट न्यू पंचायत घर, ग्राम पंचायत बागरगंज, तहसील फरीदपुर, जिला बरेली से। अनुराग मोरू लिख रहे हैं कि आज का विषय बहुत ही अच्छा है, कि 1980 की दिन होते वो दिन बहुत अच्छे थे, उस समय अच्छा था, हम रेडियो सुनते रहते थे और सभी आकाशवाणी सुनते थे, और जब रेडियो मोबाइल तो नहीं था, खाली जान पीसी ऊपर जाते थे, पर वो समय जब फ़ोन करना था तो हम पीसीओ से करते थे, और आज का समय भागम भाग की दुनिया है। अनुराग मोरू लिख रहे हैं ये, तो सुनवाते हैं ये गीत।

आप लिख रहे हैं ग्रामर पोस्ट गोठा खंडवा से, रामबाबू मिश्र, कृष्णा देवी, राधा मिश्रा, शीतल मिश्रा, सुनील मिश्रा और शिवम मिश्रा लिख रहे हैं कि जब जब बात 1980 की हो तो क्या बताएं। 1980 में सबसे बड़ी बात ये थी कि किसी को इतनी टेंशन नहीं थी, सभी लोग प्रेम के साथ बैठते थे और आधी रात तक ठंड के दिनों में किस्से कहानियाँ सुनाते थे और सुनते थे। साथ में रेडियो, जो हमारा ये रेडियो है, ये भी रहता था। सभी लोग सुनते थे, रात को ही विचार बनते थे कि उस टॉकीज में फला फिल्म लगी है, बहुत अच्छी है। तो सुबह को सभी लोग इकट्ठे होकर फिल्म देखने जाते थे, किसी पर पैसे नहीं होते तो वो भी वो फिल्म ज़रूर देखता था। और हाँ, रामलीला शुरू होते ही सभी लोग रामलीला देखने जाते थे और रामलीला को देखते देखते हम सभी लोगों ने क्लब बना लिया था। हर साल अपने गांव में रामलीला का मंचन करने लगे थे। 1998 में रामलीला खेलना बंद हो गया। अब इस समय कुछ शेष नहीं बचा, केवल यादें ही बची हैं। धन्यवाद आपका, आपने हमें कमेंट लिखा। और आप हैं ग्राम पोस्ट हर हर पर मटकली, जिला बरेली से सारुंडूर अंसारी साहब लिख रहे हैं कि हमें आदाब कर रहे हैं, आपको भी आदाब। साल 1984 की वो तारीख भारतीय इतिहास में एक दर्दनाक याद बनकर दर्ज है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी इस दुनिया में नहीं रहीं। अगर मुझे गुजरे हुए वक्त की किसी एक घटना को बदलने का मौका मिला तो मैं इसी घटना को बदलना चाहता। काश ये हादसा ना हुआ होता और इंदिरा गांधी जी देश की खिदमत के लिए कुछ और वक्त हमारे बीच रहती। इतिहास को बदला नहीं जा सकता, लेकिन अतीत की घटनाएं हमें ज़रूर सिखाती हैं कि इंसानी ज़िंदगी, अमन और भाईचारे का कदर हमेशा करें। मेरे लिए ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं बल्कि एक मेरी याद है जिसे सोचकर आज भी दिल उदास होता है। और आप हैं ग्राम करेली प्राणी मस्जिद से लिख रहे हैं लाल मोहन अंसारी साहब और लाल मिस्त्री अंसारी लिख रहे हैं कि कार्यक्रम पेश करने वालों को आदाब। तो आपको आदाब लिखते हैं कि अगर हमें 1980 में जाने का मौका मिले तो हम मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और किशोर कुमार जी से ज़रूर मिलना चाहेंगे, जिन्होंने अपने गीतों से दुनिया को दीवाना बनाया।

आप लिख रहे हैं कटा चांद खां मौर्य मंदिर से मुकेश मौर्य, प्रिंस मौर्य, प्रियांशी मौर्य कि 1980 में जाकर छोटे स्तर पर भी स्थानीय आपदाओं, हादसों या अपराधों की पहले से चेतावनी देकर कई बेकसूर लोगों की जान बचा सके। सार्वजनिक सच भलाई के नज़रिए से देखें तो सबसे बड़ी उपयोगिता इंसानी दुख तकलीफ को कम करना और जीवन की सुरक्षा और सुनिश्चित करना। धन्यवाद आपका। और आप लिख रहे हैं कि साथी हमारे कटरा चांद खां से लिख रहे हैं, साथी हैं करण मौर्य और जमुना प्रसाद मौर्य लिख रहे हैं कि आज का विषय बहुत अच्छा है। 1980 दिन होते हुए अगर 1980 दिन होते तो वो दिन बहुत ही अच्छे होते थे। वो समय अच्छा था, हम रेडियो सुनते थे, सभी आकाशवाणी सुनते थे। जब रेडियो मोबाइल तो नहीं था, खाली जान मतलब इनका मतलब कहने का ये है कि उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं था तो जो रेडियो थे वही मनोरंजन के साधन थे। बहुत धन्यवाद आपका। और आप हमें लिख रहे हैं, साथी हैं हमारे भवानी पेठ सोलापुर महाराष्ट्र से लिखने वाले हैं विष्णु मिस्किन, रितिका और आरब साथ में वाणी लिखते हैं कि अगर मुझे 1980 के दशक में जाने का मौका मिले तो मैं कोई बड़ी ऐतिहासिक घटना बदलने के बजाय लोगों के बीच बढ़ती जो दूरियां हैं उनको बदलना चाहूँगा। उस दौर में रिश्तों में समय था, बातचीत थी, अपनापन था और छोटी छोटी खुशियों की भी बड़ी कीमत थी। मैं चाहता हूँ कि आज की तरह जो आज का ज़माना है इस तरह तकनीक आगे बढ़े लेकिन इंसान अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों से दूर ना हो। अगर अतीत में कुछ बदलना हो तो मैं यही बदलूंगा कि तरक्की भी रहे और रिश्तों की गर्माहट भी रहे। आप लिख रहे हैं गंगा सिंह रावत साहब रामपुर रोड हल्द्वानी से उत्तराखंड से लिख रहे हैं कि 1980 में ईरान और इराक के बीच घमासान युद्ध छिड़ा जो कई दशक तक चला। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ईरान और इराक के साथ कई देशों कूटनीतिक और सामरिक संबंधों में खटास देखी गई। उस समय मैं मेरी उम्र थी 13 14।

वर्ष, और रेडियो अखबार में इस युद्ध के बारे में रोज खबरें सुनकर पढ़कर मैं सहम जाता था। आज भी युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं। बहुत अच्छे विचार आपने भेजे, धन्यवाद आपका। फिलहाल सुनवाते हैं आप सभी को ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और अब समय है आपको बता दें कि हमारे केंद्र से आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित वर्ल होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

आज रात्रि 8 बजे रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम चीयर फॉर भारत, यानी एशियन गेम्स में जो हमारी टीमें प्रतिभाग कर रही हैं उनके लिए कार्यक्रम ये हम रिले करेंगे आज रात्रि 8 बजे से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, तो सुनना बिल्कुल भी ना भूलेगा। इसके अलावा कार्यक्रम होगा भजन संध्या आज शाम 5:05 पर और कल शाम 5:05 पर। इसके अलावा कार्यक्रम हम लोग हाजिर होंगे आज शाम 5:30 पर कार्यक्रम राज्य संसार। इसमें आज चर्चा का विषय रहेगा ई बेस्ड मैनेजमेंट, ऑनलाइन समय बर्बादी से बचें, हेल्थ टिप्स और गीत संगीत भी हम आप तक पहुंचाएंगे। युवा कार्यक्रम में आज शाम 6 बजे वह मिश्रा लेकर आएंगे।

कार्यक्रम प्यार की धुन और चक्रव्यूह। कार्यक्रम ग्रामज्योति में आज शाम 6:30 पर चर्चा का विषय रहेगा सरकारी योजनाओं का लाभ लें। साथ ही होगा कार्यक्रम खेती संघ पशुपालन और इस विषय पर बात करेंगे श्रीराम और उग्रसेन से कृष्णपाल भैया। और इसके अलावा आज शाम 7:31 पर सुनवाएंगे कार्यक्रम रेडियो प्लांट्स में। आज विषय रहेगा कितना और क्यों महत्वपूर्ण है आपकी किडनी अथवा गुर्दा, शंकाएं एवं समाधान। और मेहमान होंगे यानी कि हमारे डॉक्टर विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर प्रेम मोहन झा। ये कार्यक्रम सुनना बिल्कुल भी ना भूलिएगा आज शाम 7:31 पर। आज रात्रि 8 बजे रिले करेंगे यानी कि आज रात्रि और कल रात्रि 8 बजे से एशियन गेम्स पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कल सुबह 8:15 पर कार्यक्रम होगा नमस्ते बरेली और लोकगीत सुन पाएंगे आप कल सुबह 8:45 पर। आपकी पसंद कार्यक्रम कल सुबह 10 बजे से हम लेकर हाजिर होंगे। सबरंग कार्यक्रम कल दिन में 11 बजे से आप सुन पाएंगे। सुमका कार्यक्रम झुमका गरारे कल सुबह 11:15 पर सुना जा सकता है। कल दोपहर 1 बजे से कार्यक्रम होगा अनुरोध गीत, आपके पत्रों पर आधारित कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे। रसरंग कार्यक्रम कल अपराह्न 2 बजे से आप सुन सकते हैं। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी कल शाम 3:30 पर हम लेकर हाजिर होंगे।

कल शाम 5:30 पर कार्यक्रम रहेगा नारी संसार से चर्चा का विषय रहेगा विश्वकर्मा पूजा और आज की बातचीत कल की भविष्य निधि साथियों के ब्यूटी टिप्स और साथ ही गीत संगीत प्रोग्राम युवाणी में कल शाम 6 होगा ओए लक्की किसान मंडी कार्यक्रम में कल शाम 6:30 पर आज की बात होगी औषधि फसलों की खेती साथ ही कृषक गोष्ठी में प्रतिभागी होंगे श्री राम भरोसेलाल झाझनलाल संजीव मौर्य विषय रहेगा समय के साथ बदलता खेती का स्वरूप साथ ही बाजार भाव मौसम कृषि समाचार आज की बात नसीहत और लोकगीत भी हम आप तक पहुंचाएंगे प्रोग्राम रेडियो हेल्पलाइन कल शाम 7:31 पर आप सुन सकते हैं तो श्रोताओं ये जानकारी थी हमारे केंद्र से आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित व रिले होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम भजन संध्या

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भजन संध्या आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। सुनवाते हैं आपको ये भजन। स्वर है अनुज लोटा का।

इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भजन संध्या। सुनवाते हैं आपको ये भजन स्वर है स्वर्ण निगम का।

श्रोताओं, एक रेडियो जलपान संबंधी सूचना है, सुनिए। श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन करके रेडियो हेल्पलाइन में शुक्रवार दिनांक 18 सितंबर को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है गुर्दे की पथरी व पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं एवं समाधान। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे गुरुवार यानी कल दिनांक 17 सितंबर को शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 0581251700 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल मौजूद रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लीजिए, विषय रहेगा गुर्दे की पथरी व पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं एवं समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय, जी हाँ, रिकॉर्डिंग होगी कल गुरुवार को 17 सितंबर को शाम 4 बजे से। टेलीफोन नंबर है हमारा 0581251700। श्रोताओं, कल स्वास्थ्य संबंधी विषय पर जो कार्यक्रम का विषय रहेगा रिकॉर्डिंग का, वो रहेगा गुर्दे की पथरी, पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं एवं समाधान। तो कल शाम 4 बजे आप फोन करिएगा। टेलीफोन नंबर है 0581251700। और कार्यक्रम में कल विशेषज्ञ रहेंगे मौजूद स्टूडियो में, यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल। तो रिकॉर्डिंग की तारीख है कल 17 सितंबर 2026 दिन गुरुवार शाम 4 बजे से। जी हाँ, टेलीफोन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम नारी संसार।

गुड इवनिंग, नमस्कार। नारी संसार प्रोग्राम में आप सभी श्रोताओं का, बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही खुश होंगी और प्रसन्न होंगी। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर के है। ज़रा सोचिए, जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमारा हाथ कहाँ जाता है, सोच के देखिए। जी हाँ, सीधे हमारे मोबाइल फोन पर। और बस हम दो मिनट के लिए नोटिफिकेशंस देखते हैं, स्क्रीन ऑन करते हैं, और कब रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करते करते आधा घंटा गुजर जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑनलाइन। जी हाँ, ऑनलाइन टाइम को वेस्ट करना बंद करें, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम घर की जिम्मेदारियों या फिर ऑफिस के काम के बीच में जो थोड़ा बहुत समय मिलता है जिसमें हम खुद को रिलैक्स दे सकते हैं, लेकिन उस टाइम को रिलैक्स देने की जगह हम स्क्रीन को देखने में बिता देते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? इसकी वजह से आंखों में सूखापन आ जाता है, सर में दर्द होता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो जाता है, और सबसे

बात अपनों के लिए टाइम की कमी हो जाती है। इंटरनेट और सोशल मीडिया हमारी सहूलियत के लिए बने थे, लेकिन देखा जाए अब हम इसके गुलाम होते जा रहे हैं। तो आज का जो नारी संसार प्रोग्राम है, ये सुनने के बाद अब खुद से एक वादा कीजिए कि दिन भर में कम से कम 2 घंटे का एक ऐसा नो फोन जोन बनाएंगे जहां पर फोन साइलेंट रहे, हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताएं। और इसी को ही कहते हैं असली डिजिटल डिटॉक्स। और इसके लिए सबसे अच्छा समय अगर देखा जाए तो रात के भोजन का है, जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करे, बच्चों से उनकी बातें पूछे, पूरे दिन भर स्कूल में क्या किया क्या हुआ अपनी बातें शेयर करें, बच्चों की बातों को सुने। इससे थोड़ा बहुत जहाँ एक दूसरे से हम बातचीत करते हैं तो बहुत सी ऐसे बातें होती हैं जो हम जान पाते हैं अपने बच्चों के बारे में, और बच्चे बहुत सी बातें शेयर करेंगे आपसे, और साथ ही साथ जो गैपिंग है, कम्युनिकेशन गैपिंग है, वो कम होगी। तो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दें। इसके साथ ही साथ जब हम रील्स को स्क्रॉल करते जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम वो रील्स देख रहे होते हैं जिसका हमारी ग्रोथ से कोई मतलब ही नहीं होता, सिर्फ हम सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, और वो इंटरटेनमेंट भी हमारी ग्रोथ में काम नहीं आता, ना तो वो हमें कुछ सिखा रहा होता है ना हम उससे कुछ सीख रहे होते हैं। तो जो भी देखें करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि चीज़ें वो देखें जो हमारी मेंटल ग्रोथ के लिए या फिजिकल ग्रोथ के लिए ज़रूरी हो, जो हमारे परिवार के बीच में एक समीपता लेके आए। तो ये तो थी बात कि ऑनलाइन समय बर्बादी करने से बचे, लेकिन अब समय है एक गाने का, तो आइए सुनते हैं ये गाना।

0: प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले अब बारी है नारी संसार क्विज टाइम की। तो हमारा आज का सवाल ये है जो आपको बताना है, और देखना ये है कि आपकी सामान्य ज्ञान और पर्यावरण के प्रति जागरूकता कितनी है। तो सवाल ये है कि भारत का पहला ई वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है, और इस सवाल का जवाब आप हमें देंगे हमारी फेसबुक की नारी संसार के आज के प्रोग्राम की कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी से सवाल का जवाब हमें लिख करके भेज दीजिए। और अब बारी है आज के स्पेशल सेगमेंट की, जिसका नाम है इनसे मिलिए। तो आइए सुनते हैं इनसे मिलिए।
1: इनसे मिलिए सेगमेंट में आप सभी श्रोताओं का, बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो एक जानी मानी इंजीनियर है। हमारे साथ है इंजीनियर उपासना जी। उपासना जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: जी। उपासना जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ई वेस्ट का मतलब क्या होता है, क्या होता है ये?
2: तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ई वेस्ट होता क्या है। तो हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम लोग यूज करते हैं, और यूज करने के बाद वो बेकार हो जाते हैं, हम उनको फेंक देते हैं या कई बार ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, तो इसको हम ई वेस्ट या ई कचरा कहते हैं। जैसे चार्जर हो गए मोबाइल के, या फिर आपके डेटा कॉल, या लैपटॉप पुराना, या पुराना टेलीविजन, ये सारी ही चीजें, कंप्यूटर से कोई भी आइटम या इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम जिसे अब आप यूज नहीं कर रहे हैं, वो बेकार है आपके लिए, वो एक तरीके से ई कचरा या ई वेस्ट कहलाता है।
1: जी,
2: ई वेस्ट जो ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इनमें कई जहरीले पदार्थ भी मौजूद होते हैं, जैसे लेड, मर्करी, कैडमियम, ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें कि अगर आप किसी ई कचरे को पानी में डाल दें, नदी में बहा दें, तो ये उससे मिलकर वाटर पॉल्यूशन भी कर सकते हैं। आप इसे ऐसे ही भेज देंगे तो ये लैंड पॉल्यूशन कर सकते हैं, और अगर आप इसे जला देते हैं तो ये कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक नहीं है, कई बार ये हमारे अपने हेल्थ के लिए भी खतरनाक है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने घर में जितना भी हमारा ई वेस्ट हो उसको सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करें, और उसको सही तरीके से मैनेज करें, और सिर्फ हमारी हेल्थ और हमारे इन्वायरमेंट पर ही इफेक्ट नहीं पड़ता है इसका, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए रिसोर्स बेसिस भी है, क्योंकि जितना भी ई वेस्ट होता है इनमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मेटल जैसे कि सोना और चांदी भी होते हैं, जिनको अगर हम सही तरीके से मैनेज, उसे एक अर्निंग भी कर सकते हैं। और तो इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास कुछ उपाय हैं ऐसे जिन्हें हम कर सकते हैं। पहला तो ये है कि कई आजकल मार्केट में ई वेस्ट मैनेजमेंट संस्थाएं मौजूद हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं जो कि आपसे ई वेस्ट कलेक्ट करते हैं, और उसको कलेक्ट करने के बाद उसका जैसे डिस्पोजल करते हैं, और उस सही तरीके से डिस्पोजल में वो इस तरीके से उनको नष्ट करते हैं कि ना तो वातावरण पर एक हानिकारक प्रभाव हो और ना ही हमारी हेल्थ पर कोई हानिकारक प्रभाव होता है। इसके अलावा उसकी वो रिसाइकिलिंग कर सकते हैं। रिसाइकिलिंग का मतलब ये है कि वो इन जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं, पुराने कंप्यूटर या पुराने लैपटॉप या पुराने चार्जर, इनके इम्पोर्टेंट मेटल्स हैं, सोना चांदी,

0: निकाल सकते हैं, कॉपर है, सिल्वर है, और उनका फिर वो अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे घर में जो हमारे पुराने मोबाइल या पुराने कंप्यूटर हैं, हमें कई बार ये चिंता रहती है कि अगर हम ये किसी को दे देंगे या इसको कहीं फेंक देंगे तो ये हमारा डेटा जो उसमें कहीं ना कहीं स्टोर हो गया है वो कहीं कोई और उसे मिसयूज ना कर ले। तो अगर ऐसे ई वेस्ट संस्थाओं को अप्रोच करते हैं अपने ई वेस्ट का निस्तारण करने के लिए, उसका डिस्पोज ऑफ करने के लिए, तो वो हमारे डेटा की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखते हैं। जितनी भी हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो उसको पहले क्लीन करते हैं और उसके बाद ही उसका डिस्पोजल या रिसाइक्लिंग करते हैं।
1: तो बहुत ही अच्छी आपने बात बताई। एक तो ये कि जो ई कचरा, जो बहुत से लोग जो है ये सोचते हैं कि अरे ये चार्जर रखा है ये हमारे काम में आ जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक है, तो हमें टाइमली उसको डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। और दूसरा ये कि जब हम इसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो ये चीज को ध्यान में रख सकते हैं कि अगर उसमें कोई इम्पोर्टेंट मेटल है जिसको हम रीयूज कर सकते हैं या उसको सेव कर सकते हैं तो उसको उस तरीके से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें हमारे घर में कोई भी अगर बहुत पुराना इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसमें से ऐसे हानिकारक विकिरण निकल सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे घर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, इसलिए ऐसा बहुत जरूरी है कि हम उसको समय रहते उसको डिस्पोज ऑफ कर दें। अगर हम वो खुद नहीं कर सकते हैं तो हमें किसी न किसी ऐसी सामाजिक संस्था को जो कि ई वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करती है उनको भी रहना चाहिए।
1: बहुत ही अच्छी बात आपने बताई उपासना जी। एक और बात मेरे मन में है वो ये कि जब हम ई वेस्ट मैनेज करते हैं, अपनी पुरानी चीजों को देते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये चीज को ध्यान रखना होगा कि जो चीज हमारे काम की नहीं है उसे हम तुरंत ही डिस्पोज ऑफ कर दें। दूसरी ये बात, आपने जो बातें हमें बताई वो मुझे लगता है इस समय जो हमारी बहनें सुन रही हैं, जो श्रोतागण सुन रहे हैं, उन्हें एक तो ये समझ में आया होगा कि अनजाने ही हम बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके रख लेते हैं घर में, लेकिन वो हमारे काम की नहीं होती, साथ साथ हमारे हेल्थ को भी प्रभावित करती है। चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे?
0: चलते चलते मैं ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ ई कचरा ही नहीं, किसी भी प्रकार का ऐसा सामान, ऐसी वस्तु जो कि आपके उस समय उपयोग में नहीं आ रही है और आने वाले लंबे समय तक उपयोग में आने वाली नहीं भी है, तो उसे हमें सहेज कर रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कुछ वातावरण में नकारात्मकता भी फैलाते हैं। तो इसमें बेहतर ये है कि आप उन चीजों को डिस्पोज ऑफ कर दें। अगर आप उन्हें आने वाले कुछ सालों में यूज नहीं करने वाले हैं तो बेहतर यही होगा कि आप उन्हें कहीं ना कहीं उनका निस्तारण कर दें।
1: जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि जो अननेसेसरी चीजें हैं वो उनको हमें डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी फैल रही है उससे बचते हुए पॉजिटिविटी की ओर जाना चाहिए। आपने हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो ये तो थी उपासना गुप्ता जी, जिनसे हमने बातचीत की ई वेस्ट के बारे में। और अब बारी है गाने की, तो आइए सुन लेते हैं ये गाना।

मैडम, हम बातचीत कर रहे थे ऑनलाइन स्क्रीनिंग की। जब हम ऑनलाइन स्क्रीनिंग में टाइम बहुत ज़्यादा व्यतीत करते हैं तो कई बार हमें कई तरीके की प्रॉब्लम आ सकती हैं, जैसे कि डिजिटल आई स्ट्रेन हो सकता है, या जी हाँ, स्क्रीन की जो तेज़ रोशनी होती है उसको लगातार एक टक देखने से पलकें जो होती हैं वो कम झपकती हैं, जिससे आँखों में सूखापन आ सकता है, जलन हो सकती है, धुंधलापन आ सकता है और साथ ही साथ गंभीर सिर दर्द जैसी समस्या हो सकती है। इसके साथ ही साथ गैजेट्स की जो स्क्रीन होती है उससे निकलने वाली नीली रोशनी जो होती है वो हमारे मस्तिष्क में मेलाटोनिन, जिसकी वजह से हमें नींद टाइम पर आती है, उसके स्त्राव को रोक देती है। इससे अनिद्रा और अनिद्रा जनित चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, यानी कि नींद कम आएगी और जब नींद पूरी नहीं होगी तो हमारा जो बिहेवियर होगा उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसके साथ ही हमारा जो मस्तिष्क है उसके जो काम करने की क्षमता है और एकाग्रता है उस पर भी असर पड़ता है। अगर हम एडल्ट लोगों की बात करें, वयस्कों में अत्यधिक स्क्रीन यूज़ से एकाग्रता की कमी या दस्त कमज़ोर होना या फिर डिजिटल फॉग या डिजिटल डिमेंशिया जैसी मानसिक स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही साथ बच्चों की अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स के रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक स्क्रीन देखने से भाषा के विकास में देरी हो सकती है या फिर ध्यान केंद्रित यानी कि कंसंट्रेशन ना कर पाने जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। इसके अलावा मोटापा, यहाँ तक कि कम उम्र में न्यूरोलॉजिकल विकारों का जोखिम भी बढ़ सकता है। साथ ही साथ खराब मुद्रा यानी कि गलत पोस्चर में बैठ के अगर घंटों तक स्क्रीन देखेंगे तो ऐसे में हमारी गर्दन में, कंधों पर या फिर रीढ़ की हड्डी पर दर्द की समस्या हो सकती है। और इन सब बातों से बचने के लिए ज़रूरी है कि 20-20-20 का नियम अपनाएं। होता क्या है, आंखों को स्क्रीन स्ट्रेन से बचाने के लिए हर 20 मिनट में स्क्रीन टाइम के बाद 20 सेकंड के लिए कम से कम 20 फीट की दूरी पर रखी हुई किसी चीज़ को देखें। इससे आँखों की मांसपेशियां जो हैं उनको आराम मिलता है। इसके साथ ही साथ सोने से कम 1 घंटा पहले सभी प्रकार के स्क्रीन यानी कि मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, इन सबको पूरी तरह से बंद कर दें ताकि आपके शरीर में मेलाटोनिन प्राकृतिक रूप से बन सके और गहरी नींद आए। इसके साथ ही साथ गैजेट्स से जो उचित दूरी है उसको बना के रखें, यानी कि काम करते समय कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन को अपनी आंखों से कम 25 इंच की दूरी पर रखें और स्क्रीन की ब्राइटनेस को कमरे की रोशनी के अनुसार बैलेंस रखें ताकि आंखों पर अतिरिक्त जोर ना पड़े। तो ये तो थी कुछ टिप्स और अब बारी है गाने की, तो आइए सुन लेते हैं ये गाना।

और अब बारी है नारी संसार क्विज के आंसर की। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक भोपाल मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था 2020 में। और इस सवाल का सही जवाब हम तक भेजा है राजेश वर्मा जी ने, विष्णु मिस्कीन, पी एस नहावकर, हीरामणि वर्मा, दिनेश वर्मा, प्रवीण चौहान, मुकेश कश्यप, गंगा सिंह रावत, महेंद्र मरकम, रामबाबू मिश्रा, लाल मोहम्मद अंसारी, बीपी गौतम, नवी हसन अब्बासी, अनोखे लाल और अंसारी हसन ने। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और इसी तरीके से हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए और साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रियाएं भी भेजते रहिए। इसके साथ ही साथ चलते चलते बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि स्क्रीन टाइम को थोड़ा कम करें और फैमिली टाइम को थोड़ा सा बढ़ाएं, क्योंकि जो अपनों का साथ होता है उसी से ही हमारी पूरी फैमिली की ग्रोथ होती है और कहीं ना कहीं हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान एक दूसरे से बातचीत करके निकल सकता है। तो जब भी परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले तो उसको हाथ से जाने ना दें, क्योंकि ये छोटी छोटी मेमोरीज, छोटे छोटे मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो ताउम्र याद रहते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम अपने बच्चों के साथ बैठते हैं तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बच्चों को हमसे सीखने को मिलता है, और जब हम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठते हैं तो उनके अनुभव जब हम साझा करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में काम आ सकती हैं। तो ये सब बातें ध्यान रखें और अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है कि हम आपसे और ज़्यादा बातचीत कर सकें। अपनी रेडियो दोस्त भावना कंचन को दीजिए अनुमति। नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी संसारी, कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से प्रसारित किया गया। शाम के 6 बज चुके हैं। लीजिए, स्टूडियो में हाजिर हैं वैभव मिश्रा जी, कार्यक्रम युववाणी लेकर। तो सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

कहते हैं जिंदगी भी अजीब कहानी है साहब। कुछ पन्ने हम लिखते हैं, कुछ वक्त लिख देता है, और कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़कर बस मुस्करा देना पड़ता है। कहते हैं ना, जिंदगी बहुत बड़ी किताब है, लेकिन मजा तब आता है जब किताब पढ़ने के बजाय उसके छोटे छोटे किस्से जिए जाएं। और जब बात हमारी हो रही है, हम अपनी बरेली की बात कर रहे हैं, तो उसमें किस्सों की कोई कमी ही नहीं है दोस्तों। कभी चौपला की तरफ भागती हुई हमारी सुबह है, और कभी सिविल लाइंस यानी कि बरेली की सिविल लाइंस की शाम है, तो कहीं चौकी चौराहे पर चलती ये भागती दुनिया है। क्योंकि आप देखो ना, लोग काम करके, भाई कोई अपनी जॉब से आ रहा है, कोई अपने स्कूल कॉलेज से आ रहा है, कोई बच्चों को पढ़ाकर आ रहा है। बरेली में चारों तरफ आप देख ही पा रहे हैं, चहलकदमी तो है, भले ही शाम है लेकिन लोग जमना शुरू हो जाते हैं। तो देखो, अब हमारा जो बरेली का आज ये जो सफर है, इसकी तो हम बात करेंगे ही, लेकिन अब बात अपने कार्यक्रम की भी बात करेंगे, श्रोताओं अपनी बात करेंगे। देखो, कभी किसी पुराने दोस्त का अचानक फोन आ जाता है, तो कभी रास्ते में कोई अपना हो सकता है आपको आज मिल जाए, और कभी बिना किसी खास वजह के मन खुश भी हो सकता है। शायद देखा जाए युवा साथियों, दोस्तों, जिंदगी की खूबसूरती जो है ना, वो इन्हीं छोटी छोटी चीजों में छुपी है। तो आज हम फिर आपसे मिल बैठे हैं, थोड़ी आपकी बातें सुनेंगे, थोड़ी अपनी बातें कहेंगे, थोड़ी और बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ, देखो, धड़कनों का भी अपना एक अफसाना है, कभी खुशी कभी गम का तराना है, ये दिल तो हर पल हमारे साथ चलता है, इसे भी तो थोड़ा

प्यार जताना है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना, दिल को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ प्यार के काम नहीं आता है, ये हमें जिंदा रखने के भी काम आता है। क्योंकि युवा साथियों, आजकल के इस उम्र में जिसमें आप हैं, तो उसमें तो शायद आप दिल की बात करते होंगे, तो शायद प्यार मोहब्बत इश्क इसी की बातें करते होंगे, लेकिन ये जो दिल है ना, ये आपको हमको जिंदा रखे हुए है। जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, सफर करते हैं, हंसते हैं, परेशान भी कभी कभी होते हैं, अपने सपने देखते हैं, इन सबके बीच एक चीज है जो कभी छुट्टी नहीं लेती, वो है आपका दिल। आप सो रहे होते हैं तब भी ये धड़क रहा होता है, आप मुस्कुराते हैं तब भी ये धड़कता है, आप दुखी होते हैं तब भी धड़कता है, और आप इस समय अपना मनपसंद कार्यक्रम ये वाणी सुन रहे हैं ना, मुझे सुन रहे हैं, तब भी आपका ये जो दिल है वो काम कर रहा है, धड़क रहा है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर ये दिल काम कैसे करता है? देखो, हमारे दिल में चार चैम्बर्स होते हैं, जिसमें दो अलग अलग अपने चैम्बर्स हैं ना, वो काम करते हैं, और दिल की हर धड़कन के पीछे एक शानदार इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम करता है जो हार्ट बीट को नियंत्रित करते हैं। यानी दिल सिर्फ धड़कता नहीं है, दिल अपनी धड़कन को व्यवस्थित भी करता है। देखो, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति की जो रेस्टिंग हार्ट रेट होती है, वो आमतौर पर 60 से 100 बीट्स पर मिनट के बीच में होती है, और औसतन हमारा दिल एक दिन में करीब 1 लाख बार धड़कता है। सोचिए, 1 लाख बार। ये एक ऐसी मशीन है, शायद हम इंसान भी ऐसी मशीन बना लें तो भी शायद इतने साल बिना रुके काम नहीं कर सकती, लेकिन जो इस प्रकृति ने या जो ईश्वर ने हमें ये दिल दिया है, जिसे हम कहते हैं, वो बिना रुके 1 लाख बार से ज्यादा धड़कता है हर दिन लगभग। और हम तो कभी कभी दिन में 10 काम करके थक जाते हैं, लेकिन हमारा दिल जब से हमने आंखें खोली हैं, जब से हमने जन्म लिया है, तब तक ये काम कर ही रहा है, वो भी बिना शिकायत के, वो भी अपना काम करता है। और दोस्तों, दिल जो हो ना, वो आपको पता है, उसको ऑक्सीजन चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि वैभव, ये आज कार्यक्रम युववाणी में तुम दिल की बात क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं बताऊंगा आपको दिल की बात क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा सा रुकिए भाई, इस दिल की बात भी तो कभी कभी कर लेनी चाहिए ना। तो अब श्रोताओ, आज जो एक खास दिवस है ना, वो है इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी डे। अच्छा, ये क्या होता है? देखो, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। कई स्थितियों में आपने देखा होगा, डॉक्टर जो होते हैं, एक कैथेटर नाम की एक पतली ट्यूब होती है, उसके जरिए ब्लड वेसल्स तक पहुंचते हैं। ये क्यों पहुंचते हैं? आपने देखा होगा कभी कभी हमारी जो आर्टरीज होती हैं, या अक्सर आपने बुजुर्ग रहे होंगे घर में, या आजकल तो युवाओं में भी ये समस्या देखने को मिल रही है कि हमारे जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, तो हमारे जो ब्लड की जो नसें हैं, जो खून जिनसे जाता है, उनमें कहीं ना कहीं फैट या वसा या कुछ गंदगी जमा होने लगती है, जिससे आपको पता है कि हार्ट में समस्या होने लगती है। तो पहले क्या होता था कि पहले ही करना मुश्किल होता था, फिर धीरे धीरे करके एक तकनीक आई, एंजियोप्लास्टी हुई। एंजियोप्लास्टी मतलब यह है कि उसको आर्टरी को वो खुला रखने में मदद करते हैं, ये एक वैज्ञानिक तकनीक है, हम उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। तो आज के दिन ही इसका पहली बार इस्तेमाल हुआ था, और श्रोताओं, ये इतना बड़ा खोज आप कह सकते हैं, या साइंटिस्ट हैं, या जो डॉक्टर हैं उनकी, ये हमारे लिए कह सकते हैं कि आज बिना ऑपरेशन करे डॉक्टर दिल तक पहुंचते हैं और उस आर्टरी को ठीक करते हैं, खून सप्लाई देते हैं और एक नया जीवन देते हैं, और ये हमारे लिए कितनी जरूरी बात है ना। तो आखिर देखो, दिल हमारा है श्रोताओं, इस दिल का ख्याल रखना हमारी जरूरत है। देखो, दिल का इलाज सिर्फ अस्पताल में नहीं होता है, वो हम भी कर सकते हैं अपने आप, जैसे थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, संतुलित खाना खा सकते हैं, और जो नशीले पदार्थ होते हैं उनसे दूर रह सकते हैं, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर जैसी जो चीज़ें हैं उन पर हम नज़र रख सकते हैं, अगर थोड़ा भी बढ़े तो डॉक्टर से बात कर लीजिए, है ना श्रोताओं। हम जानते हैं कि हम युवा हैं, इस समय शायद हो सकता है हमारे लिए दिल का सबसे बड़ा दुख यही होता है कि दिल टूटना, लेकिन नहीं, हमें भी आज के समय में जो खान पान बढ़ता जा रहा है, जो आज के समय में जो नई नई चीजें हम देख रहे हैं, उससे हमारे दिल प्रभावित हो रहा है ना। तो ऐसे में अपने इस दिल का ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि कहते हैं ना, धड़कने अनमोल है, और इन्हें यूं ही ना जाने दें, दिल अपना है तो इसका भी ख्याल रखने दें। और दिल को खुश रखने के लिए एक और तरीका भी है श्रोताओ, वो है एक प्यारा सा गीत। तो देखो, ये जो हमारा दिल है ना, ये आपका है, तो ये गाना

0: श्रोताओं, कार्यक्रम युववाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं 100.4 FM पर अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी, और कार्यक्रम युववाणी है, युवाओं का कार्यक्रम है। तो जब युवाओं का कार्यक्रम है तो युवाओं की ही बात होगी भाई। तो आज के इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे ही युवा से रूबरू कराने जा रहे हैं। मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ, उनसे परिचय जानते हैं, वो क्या कर रही हैं ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो अपने नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मेरा नाम नबीहा खान है, मैं बरेली से बात कर रही हूँ, यूपी।
0: अच्छा नविया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आप कैसी हैं?
1: मैं ठीक हूँ।
0: अच्छा थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, और अभी क्या आप तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा और बताना चाहे।
1: मैं क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ, पीसी भी मेरे पास स्ट्रीम है,
0: हाँ,
1: और मैं स्कूल में अपनी हाउस की कैप्टन हूँ।
0: अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है। तो
1: कॉन्वेंट स्कूल है, CBSE बोर्ड।
0: CBSE बोर्ड में है, 12th है इस बार। अच्छा तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका इस बार बोर्ड एग्जाम है, तो डर तो नहीं लग रहा है इस बार? मतलब कि बोर्ड है, नंबर कैसे आएंगे, कैसा लग रहा है आपको?
1: प्रिपरेशन अच्छी चल रही है।
0: प्रिपरेशन सही चल रही है, चलो बढ़िया बात है। तो अभी जैसे कि आपने बताया जो 12th है आपका, CBSE बोर्ड से आप तैयारी कर रहे हैं, तो अभी PCB भी आपने ले रखा, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होगा, है ना?
1: बायो,
0: जी। तो बायो क्यों लिया, मतलब क्या डॉक्टर बनना चाहते हैं या पैरामेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, किस लाइन में आप जाना चाहते हैं, बायो लेने का क्यों मन हुआ?
1: एक्चुअली एम तो मेरा DM बनने का है, बट मेरा इंटरेस्ट बायो में भी था, तो सेकेंड ऑप्शन के लिए डॉक्टर है।
0: अच्छा तो आप UPSC की तैयारी भी करना चाहती हैं, है ना?
1: जी जी
0: तो उसके लिए तैयारी करनी शुरू कर दी, अभी तो खैर 12th हुआ है, धीरे धीरे करेंगे। तो क्यों आपका मन है मतलब UPSC करने का, DM बनने का, कैसे प्रेरणा मिली आपको, कहाँ से?
1: फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड, मतलब जब मैं KG में थी तब से मेरा एम था सिविल सर्विसेज में जाने का।
0: तो कहीं से देख के कोई प्रेरणा मिली, मतलब मैं वही जानना चाह रहा था, कि ऐसे ही मन हुआ कि हमें जाना है, सेवा में जाना है।
1: मेरा खुद का मन था, मम्मी टीचर हैं, पापा जॉब में हैं, बट मेरा मन था कि मैं सिविल सर्विस में जाऊं।
0: अच्छा, चलो अच्छी बात है। तो ये बताइए जो आपने हाउस कैप्टन की बात करी, ये क्या होता है? आपने बोला था कि आप अभी हाउस कैप्टन हो स्कूल में, थोड़ा बताएंगे ये क्या चीज होती है?
1: जी, एक्चुअली कॉन्वेंट स्कूल्स में उनके सेंट डिवाइडेड होते हैं, तो वो अलग अलग हाउस रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली अंडर में ब्लू हाउस है, जो कि सेंट जेम्स को रिप्रेजेंट करता है, सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल है हमारा, तो वहाँ पे सेंट का जो हाउस है वो मेरे अंडर में आता है। तो फ्रॉम Pre-NC to 12th तक ब्लू हाउस के जितने भी बच्चे हैं वो सब मेरे अंडर में है, तो एज अ लीडर मैं हूँ।
0: अरे वाह, तो बढ़िया बात है। तो अभी से आप लीडर की जो चीजें हैं वो सीखना शुरू कर चुकी हैं, है ना? तो आगे जाके आपको ये फायदा ही देंगी। तो ये कैसे आप सिलेक्शन होता है, कुछ बताना चाहेंगी? हाउस कैप्टन का कैसे होता है सिलेक्शन?
1: जी, ऑन द बेसिस ऑफ अटेंडेंस एंड द क्वालिटीज विच वी हैव, मार्क्स ऑफ, मतलब अटेंडेंस मेरी हमेशा 100% रहती है। जी,
0: अरे वाह, तो बढ़िया बात। तो रोज स्कूल जाती हैं आप फिर?
1: फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब MC से मैं एक ही स्कूल में हूँ, वहाँ पर मेरी 100% अटेंडेंस है, उसका मुझे अवार्ड भी मिलता है हर साल।
0: बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अच्छा ये बात बताइए नाविया जी, आप कह रही रोज स्कूल जाती हैं, लेकिन कभी कुछ हो ना जाए भाई, लेकिन कभी तबीयत भी खराब हो जाती है या कुछ होता है, तो कैसे मैनेज करती हैं आप? क्योंकि साल भर है भाई, कभी मान लो बुखार ही आ गया, कभी सर्दी जुकाम हो गई, है ना, या घर में किसी की शादी हो रही है तो कहीं घूमने जाना है, तो कैसे मैनेज करते हो आप फिर?
1: हाँ, तो अगर हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं तो उसमें अभी तक तो टच वुड ऐसी कोई आया नहीं है इशू कि मुझे छुट्टी करना पड़े। और रही शादी या घूमने की बात, तो अगर पूरी फैमिली भी जाती है तो मैं रुकती हूँ स्कूल अटेंड करने के लिए।
0: अच्छा इस बार वैसे भी बोर्ड एग्जाम है ना, तो थोड़ा सा ज्यादा और ध्यान देने की जरूरत है। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जो CBSE बोर्ड की आप तैयारी कर रही हैं अपने 12th क्लास की, तो आप अपने जो स्कूल में तो पढ़ाई हो ही रही होगी, आप रोज जा रही हैं और अच्छी बात है, लेकिन स्कूल के बाद आप कोचिंग भी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या फिर ऑनलाइन कैसे तैयारी कर रहे हैं?

0: कुछ बताना चाहेंगे क्या क्या आप कर रहे हैं इस समय एक्स्ट्रा?
1: मेरा मॉर्निंग 7 to 2 PM तक स्कूल रहता है, फिर उसके बाद 3:30 से 6:30 मेरी कोचिंग होती है,
0: 3:30 से 6:30, ओके.
1: 6:30, फिर 7 तक मैं रिटर्न होती हूँ, 8 तक रेस्ट करने के बाद फिर से मैं स्टार्ट कर देती हूँ स्कूल वर्क, कॉपी वर्क या फिर अपनी स्टडी कंटिन्यू।
0: अरे तब तो बहुत ज्यादा आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ते पढ़ते लगता तो नहीं कि बहुत ज्यादा बोर हो जा रहे हो, बहुत ज्यादा पढ़ाई हो रही है, ऐसा कुछ तो नहीं लगता है?
1: हाँ कभी कभी लगता है, बट फिर ये लगता है सिर्फ 4 months हैं अभी, फिर उसके बाद बोर्ड्स के बाद तो थोड़ा गैप मिलेगा ही कॉलेज से पहले।
0: उस समय तो हो जाएगी. अच्छा तो कितना क्या सोच के चल रहे हो, कितना परसेंटेज मान के चल रहे हो कि कितना आपको लेके आना है? कुछ तैयारी आपने कर रखी है पहले कि मैं इतनी स्कोर तो करूंगी ही हर हालत में?
1: जी मतलब 90 तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ।
0: 90%? अरे वाह, तो
1: जी
0: हम यही कामना करेंगे कि देखिए नाभिया जी आप सक्सेस हो, और आपको 90% से ज्यादा है. लेकिन एक चीज और भी है, अब जैसे पीसीबी आपने लिया है तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री कठिन नहीं लगती आपको? क्योंकि अक्सर देखा है बायो वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको फिजिक्स तो थोड़ी कठिन लगती है, चलो केमिस्ट्री फिर भी हो जाती है, तो फिजिक्स कठिन लगती है या सरल लगती है?
1: नहीं थोड़ी टफ तो लगती है क्योंकि
0: हाँ
1: बायो है,
0: जी
1: क्योंकि उसमें मैथ्स का काम होता है और मेरे पे बायो है,
0: जी
1: बट मेंटर्स अच्छे हैं तो फिर मैनेज हो जाती है चीजें, और प्रैक्टिस तो कर ही देती है सब।
0: बिल्कुल, प्रैक्टिस ही करती है, क्योंकि हमने देखा है ना अक्सर कि जो बायो वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए थोड़ी सी जो केमिस्ट्री है वो तो आसान लगती है, लेकिन जो फिजिक्स है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है ना? तो अच्छा ये बताइए, आपकी जो जर्नी है, आप जो 12th में तैयारी कर रहे हो, अपना बढ़िया करके कर रहे हो, तो पेरेंट्स क्या सपोर्ट मिलता है आपको? पेरेंट्स से आपको मोटिवेट रखते हैं या फिर वो भी तो नहीं कह रहे कि जाओ पढ़ो पढ़ो पढ़ो भाई तुम्हें इतने मार्क्स लाने हैं, क्या कहना चाहते हो आप?
1: नहीं पेरेंट्स का पूरा मोटिवेशन है, स्कूल ड्रॉप करना आना पापा सब करते हैं, और मम्मी अगर मेरे को सुबह 4 बजे या 3 बजे उठकर पढ़ना होता है तो मम्मी उठती हैं मेरे लिए कॉफी वगैरह बनाती हैं, तो वो दोनों का बहुत सपोर्ट है।
0: ये तो है, चलो अच्छी बात है, माता पिता आपको सपोर्ट कर रहे हैं इतना. और कहीं एग्जाम के दौरान प्रेशर ना हो, इस चीज का कैसे आप ध्यान रख रहे हो कि क्योंकि एक कहीं ना कहीं देखो एक चीज तो है, आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लो नाविया जी, आप इस बात से एग्री करोगे जो बोर्ड एग्जाम होते हैं ना उसमें प्रेशर रहता ही है ना, जब तक पेपर ना दो या जब तक पेपर निकल के ना हो, तो कैसे मैनेज कर रहे हो आप इस प्रेशर को?
1: हाँ प्रेशर तो रहता है, और मेनली जैसे आपने कहा फिजिक्स का, तो अगर मैं देखूँ मुझे एक ही सब्जेक्ट का ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि अकॉर्डिंगली केमिस्ट्री और बायो और फिजिकल एजुकेशन इंग्लिश ये सब हो जाते हैं, बट फिजिक्स का है तो उसको मैं पूरा अपना टाइम देती हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट बाकी एग्जाम के उस टाइम तो रहेगा हाँ प्रेशर के है।
0: अच्छा ये जो सैंपल पेपर्स होते हैं और जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं इनको आप लगा रहे हो इस समय,
1: जी,
0: तो इनसे क्या मदद मिलती है आपको, क्या हेल्प लग रही है?
1: टाइम मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और प्रीवियस में किस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली रिपीट हुए हैं, वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट पता चल जाते हैं।
0: अच्छा बहुत से बच्चे क्या होते हैं ना, वो सिर्फ सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर पे ही डिपेंड हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि यार कौन इतना लेंदी पड़ेगा, सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो लास्ट के 5-10 ईयर के, तो उसमें अपना अच्छा से स्कोर कर ही दोगे, है ना, ये चीज रहती है मेंटेलिटी. तो आप क्या कहना चाहते हो अगर ऐसे बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए?
1: नहीं सिर्फ सैंपल पेपर करना इनफ नहीं है, साइड बुक होनी चाहिए, मतलब देखा जाए तो सिर्फ एनसीईआरटी भी इनफ नहीं है, तो एक साइड बुक होनी चाहिए, चाहे वो एग्जाम आइडिया ऑल इन वन कुछ भी हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस उससे करो, फिर उसके बाद सैंपल पेपर बस अपने आप को टेस्ट करने के लिए अच्छा है, बट अगर सिर्फ सिर्फ उस पर डिपेंड हुआ जाए कि हमारे क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन चेंज ही होते हैं, तो
0: अरे वाह, तो
1: प्रिपरेशन बुक से ही होनी चाहिए।
0: मतलब कहीं ऐसा ना हो कि जब आप सैंपल पेपर से तैयारी तो कर लो और पेपर क्या पता कुछ अलग ही आ जाए, है ना, जरूरी
1: हाँ
0: नहीं है कि पिछली बार का हो जाए तो फिर कहीं आपके मार्क्स कम आ जाए, तो वो भी ठीक है ना. चलिए नाभिया
1: पढ़ा
0: जी,
1: तो
0: हाँ
1: ब्रॉडली
0: हाँ
1: होना
0: हाँ
1: चाहिए,
0: हाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर से बोलिए
1: पढ़ा हुआ तो ब्रॉडली ही होना चाहिए, मतलब
0: जी.
1: जो बुक्स में टॉपिक्स गिवन हैं वो और उसके क्वेश्चंस लगाए हुए होने चाहिए, सैंपल पेपर को साइडली एक टाइम के लिए लेकर चलना चाहिए कि हाँ हम 3 घंटे में वो पेपर खत्म कर लें।
0: तो चलो अच्छी बात है नाभिया जी. चलते चलते आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि आपने जैसे कि खैर बताई दिया कि आप भविष्य में यूपीएससी करना चाहते हो, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना चाहते हो, डीएम बनना चाहते हो, तो वो तो आप करोगे तैयारी, लेकिन आगे क्या सोच रखा है? ग्रेजुएशन तो आपको करना ही पड़ेगा, उसके लिए ग्रेजुएशन तो मैंडेटरी होता ही है, तो क्या
1: जी
0: सोच रखा है? आप बायो में ही आगे बढ़ना चाहते हो या
1: जी
0: फिर आर्ट्स के
1: बीएससी
0: साथ जाना चाहोगे? क्योंकि अक्सर हमने
1: नहीं
0: देखा है जो तैयारी करते हैं वो आर्ट्स की तरफ, यानी कि बीए है या बैचलर इन आर्ट्स, इसके तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं कि उधर थोड़ा सा अपना फोकस कम रख के अपना

0: जो कंपटीशन है उस पर ज्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो भी डिफिकल्ट है। और पीसीबी, क्योंकि बायो लोगे आप आगे भी, तो बायो भी कठिन रहेगा और फिजिक्स भी रहेगी आगे। हालांकि ऐसा नहीं है, लोग करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग नहीं करते हैं। आपका क्या प्लानिंग है?
1: मेरी वैसे 12th के डायरेक्ट बाद नीट देने की प्लान है, कि मेरी प्रिपरेशन चल रही है, और उसके बाद कॉलेज में बीएससी करूंगी, फिर बीएससी के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी करूंगी।
0: अच्छा, यूपीएससी की तैयारी भी करते रहेंगे और बीए के भी करते रहेंगे, तो उसकी जो आपकी बायो है उसकी भी तैयारी करते रहेंगे, राइट। चलिए, बहुत अच्छा लगा। चलते चलते कुछ और कहना चाहेंगे आप, जो स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप अपने एंड से कुछ कहना चाहो लास्ट में, चलते चलते हमारे कार्यक्रम में?
1: जी, मोटिवेटेड रहना चाहिए, कभी भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं खत्म करना चाहिए, कोई पीयर प्रेशर में नहीं आना चाहिए, और टाइम मैनेज कर कर चलना चाहिए, क्योंकि अभी प्रेशर फील हो रहा है, बट रिजल्ट के टाइम पर वही प्रेशर काम आएगा।
0: मतलब आप कहना चाहते हो कि प्रेशर भी है तो उसको टेंशन में नहीं लेना है, वो आपकी
1: नहीं
0: मदद
1: लेना,
0: के लिए, क्योंकि अगर मैं प्रेशर नहीं लूंगा, थोड़ा सा डर महसूस नहीं करूंगा, तो शायद मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाऊंगा, है ना।
1: हाँ
0: ये चीज भी है, तो
1: जी
0: यही है कि अपने मोटिवेटेड रहिए, तैयारी रखिए, और कुछ दिक्कत लगती है तो अपने मेंटर जो हैं या जो टीचर्स हैं उनसे मदद लीजिए, है ना।
1: जी
0: और इसके अलावा अपने घर में पेरेंट्स हैं उनसे बात अच्छे से करिए, उनसे सपोर्ट लेते रहिए, तो आपको मदद मिलती रहेगी, यही ना। चलिए
1: जी
0: ठीक है, नाभिया जी आपने बहुत अच्छी बात करी, देखिए बहुत सारे युवा साथी आपको सुन रहे होंगे, और हम भी पूरी आकाशवाणी की तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं। आपने जो भविष्य देख रखा है आप उसमें सफल हो, और आपके 90% जो आप चाहते हो, हम तो चाहते हैं कि 99 से भी ऊपर आए और आपको अच्छा
1: थैंक
0: रिजल्ट मिले। फिर बात करेंगे हम, है ना, बोर्ड के बाद। तो
1: यू,
0: आपने समय दिया इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 7 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: दोस्तों आइए चक्रव्यूह सेगमेंट के आज के 7 सवाल जान लेते हैं। भारत का पहला चंद्रमा मिशन कौन सा था? अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारा अगला प्रश्न है श्रोताओं, बल यानी कि फोर्स की SI इकाई क्या है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है आपको बताना है? भारत के संविधान को संविधान सभा ने कब अपनाया था ये भी आपको बताना है? अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 यानी कि चंद्रयान प्रथम चंद्रमा पर किस महत्वपूर्ण चीज की मौजूदगी के प्रमाण खोजे थे उसने या हमें भेजे थे धरती पर जानकारी? और हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो श्रोताओं अब कार्यक्रम में ज्यादा समय नहीं बचा है, अब आपसे अनुमति लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। अब अगले कार्यक्रम में कुछ नया और नायाब लाने के वादे के साथ अपने दोस्त वैभव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, 104 FM पर लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: भैया राम राम।
1: राम राम राम राम हैडलपाल भैया राम राम। और साथ ही साथ कार्यक्रम ग्राम जगत सुनने वाले सब भैया बहन को भी हम दोनों भैया की
0: राम राम। कैसे हालचाल है कृष्णा भैया आपके?
1: भैया हालचाल हमारे बढ़िया हैं। और देखो शाम के 6:30 बज चुके हैं, तो भैया हमने सोची भैया कार्यक्रमों देने हैं, तो लमकर झमकर जो है हम अपना झोला ले चले आ रहे हैं।
0: बात सही है बहू, हम देख रहे हैं। तो जो बता झोला में कछु है आज?
1: हाँ बिल्कुल भैया, जानकारी है और एक गांव में गए हैं, तो भैया उन कुछ तुरैया उन्हें रख नहीं है थैला में।
0: अच्छा,
1: भी रखी भी हैं और हमारा है जहाँ रखू अंगोछा, क्योंकि गर्मी तो भैया देख रहे हैं अब खूब तेज पड़ रही, दिन में धूप पड़ती है, तो भैया सिर से अपने अंगोछा बांध लेते हैं और फिर तुरैया रखी भी हैं। और बाकी जो जानकारी है जिस गाँव में गए, तो वो जानकारी भी इसी झोला में रखी हुई है।
0: अच्छा देखो भैया, जो आप अंगोछा ही बात कर रहे हो ना, बड़े काम की चीज है। कहूँ फसलानो मिल जाए वो बांध लो, कोई चीज़ मिल जाए वो बांध लो, और बाजार हाट को जा रहे हैं तो सब्जी बांध कर ले आओ, और गर्मी पड़ रही है तो वह सिर से बांध लो।
1: कहते ही सही कह रहे हैं भैया। और जो हमारे बुजुर्ग बड़े बूढ़े पहले कहते हैं कि अगर भैया आप कहूँ फ्री में घी मिल जाए तो टुपिया में रख के ले चले आओ।
0: बात सही है आपकी। तो जहले जहले हम बता रहे हैं कि जो अंगोछा है ना, बड़े काम की चीज़ है। अब हमारे गले में पड़ो हुआ है, आपको थैला में रखे हुआ है। बात यह है कि अब इस समय धूप ना है, मौसम थोड़ा ठंडो है हुआ, तो हमने गले में उतार लो, आपने झोला में रख लो।
1: हाँ भैया जा तो है, लेकिन ये है कि जब अंगोछा होएगा कहूँ जा रहे हो बाहर, तो आप सही कही, अगर कहूँ कोई माल पानी मिल रहा होगी फसला में मिल रहा हो, तो अपने अंगोछा बांधी पुटरिया और रखी कंधा पे
0: और
1: और अपने
0: चले
1: चले आए। और कहूँ अगर लग रही गर्मी तो भैया सिर पर डाल लो अपने, तो इस तरीके से अंगोछा जो हमारे काम में आते हैं। अब जो बता रहे कि भैया जानकारी, तो जो हमारे हम पहुँचे इस गाँव में भैया, तो वहाँ के जो किसान भैया बहने उनसे हमने उनके हाल चाल जाने, उनसे बातचीत करी, तो वो भी भैया कार्यक्रम में सुनवाएंगे। लेकिन हैदरपाल भैया आपको मालूम है कि जो हमारी सरकार है, हम ग्रामीण भैया बहनों के लिए, किसान भैया बहनों के लिए बहुत कल्याणकारी योजनाएं चला रही है।
0: बिल्कुल बात सही है आपकी। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए एक

0: भैया पोर्टल है माई स्कीम पोर्टल, जाको उपयोग कर सकते हैं, जो आपकी पात्रता के अनुसार सही योजना खोजने में मदद करते हैं। और प्रमुख सरकारी योजनाओं की बात करें तो आयुष्मान भारत योजना है, इसके तहत पात्र उम्मीदवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलता है। और वहीं दूसरी योजना की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, जो किसानों को आर्थिक सहायता के रूप में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये मिलते हैं हमें। और एक सुकन्या समृद्धि योजना भी है, इसका लाभ भी हमारे भैया बहन उठा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जाके साथ साथ जैसे जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो भैया बात आपने कही, तो फसल खराब होने पर जो हमें पैसा मिल जाता है, और भैया जो प्रीमियम सिर्फ जो है 2 रुपया प्रतिशत जो है देने होते हैं धान गेहूँ पर, बाकी जो सरकार है वो देती है। तो ये तो बड़ी अच्छी स्कीम है, क्योंकि आप देखते हो कभी बाढ़ आएगी, कभी भैया ओलावृष्टि होगी, बहुत सी समस्या आ जाती है। तो हम तो अपने भैया बहनों से, किसान भैया बहनों से जरूर कहेंगे कि जो भैया प्रधानमंत्री फसल बीमा जो है वो अपने किसान भैया बहनों को जरूर कराना चाहिए।
0: बिल्कुल। और जाके साथ साथ और भी कुछ योजना है, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए आसान तरीके से जामे लोन की सुविधा यानी ऋण की सुविधा है, बाको हमारे भैया बहन अपना सकते हैं।
1: अब भैया देखो योजनाएं तो बहुत सारी हैं, अब योजनाओं को लाभ पता है भैया कैसे मिला है?
0: जागरूक
1: जाना है कि भैया हाथ पर हाथ रखे और घर पर बैठे हैं और सोच रहे हो कि भैया योजना चल के घर पर आवेंगी।
0: बिल्कुल, जाके ले अपने गांव के प्रधान है उनसे भी मालूम कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं।
1: विकास खंड है अपने, भैया
0: वहाँ जा सकते हैं। और विकास भवन हर जिले में है, वहाँ भी जा करके हमें बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो सकते हैं।
1: और जब जो योजनाएं जो सरकार है वो चला रही है और उनको जब हम लाभ लेंगे तो निश्चित है कि भैया अपनों विकास, अपने परिवार को विकास हम अच्छे तरीके से कर सकेंगे। और जो योजनाएं हैं भैया, जो पात्रता है उसको भी हमें अच्छे तरीके से देख लेने हैं, जिस योजना को हम लाभ लेने जा रहे हैं उसमें हम पात्र हैं या ना हैं, इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखने हैं।
0: बिल्कुल कृष्ण भैया, बात तो आपने बड़े काम की करी हैंगी आज। अब ये बताओ, जानकारी पहुंचाओगे अपने भैया बहन को या फिर कछु मनोरंजन कराओगे? पहले
1: तुम्हें ही बताओ भैया, हम तो तुम्हारे यहाँ ही देख रहे हैं, हमारे झोला में तो जानकारी है।
0: अच्छा, तो हमारे झोला में भैया लोकगीत यानी कि गीत संगीत, तो फिर शुरू करें?
1: अरे बिल्कुल। और जब भैया लोक संगीत की बात कर रहे हो तो भैया जो सोशल मीडिया है वो भैया खोल लो और जो पत्र देखो आए हैं भैया अपने थैला में से निकाल लो, और किन किन भैया ने पत्र भेजे हैं जो जानकारी सुनने के साथ साथ जो हमारे भैया मनोरंजन करते हैं तो उनको भी निकाल लो, जिससे कि भैया उनके नाम भी हम कार्यक्रम में शामिल कर लें। क्योंकि भैया हमारे जो भैया बहन है ना पत्र भेजते हैं जानकारी सुनते, बड़े ध्यान से भैया लगे होंगे रेडियो पे कि अरे कृष्णपाल और हेडलपाल भैया आज देखो कार्यक्रम लेके आए और हमारे नाम कार्यक्रम में शामिल होंगे।
0: बिल्कुल, बात सही कह रहे हो। तो भैया जो शुरू करें?
1: हाँ बिल्कुल भैया, देखो जो पत्र जो मिलो है हमको वो मिलो है मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर जिला पीलीभीत से, लिखने वाले हैं विमल वर्मा, नीतू वर्मा व लक्ष्मी बेटी प्राची वर्मा, और आप हैं पद्मा टाकेज नेपा नगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी साहब, प्रखर साह, कुशल साह, नीति साह, सुरभि, अश्वन, मंगलाबेन और राजेंद्र साह।
0: आप हैं ग्राम दूनी नगर जिला बदायूं से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार, सत्येंद्र कुमार, गुड्डू, विशाल, संगम, विभू, आदर्श, आदित्य, कुमकुम, निब्या, सरता और अंतमा। और आप हैं विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव, ऋचा यादव, गुड़िया यादव और सुरभि यादव। ये संदेश हमें भेजू है आपने लखीमपुर खीरी ग्राम ललहुआ से।
1: और ग्राम खिजरपुर सेतल नवाबगंज बरेली से आप हैं गुलाब हुसैन, रिजवान हुसैन, इमरान हुसैन, सवाब हुसैन, फरहान हुसैन। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार। और जे फरमाइश हमको भेजी है पुराना तालाब डुमराव से बलीउल्लाह अंसारी, उषमा नाज और सुल्तान अंसारी ने।
0: तो आप सुन लेते हैं रामायण, प्रसंग है अंगद रावण संवाद और स्वर है पंडित निरंजन देव शर्मा को।
2: ए बानर तू कौन है, क्या है तेरा नाम, आया क्यों दरबार में, क्या है मुझसे काम, महाराज।

राजा राजेश्वर भुवनेश्वर सीता के पति रघुकुल भूषण तारिका सुभाऊ के नाशिक मारा है जिन्हों

अब भी मुझसे मिल जाए तो तुम्हें सेनापति का पद दे दूं, सुग्रीव राम को मार माली की हत्या का बदला ले दूं, सच तो लंका के शेरों का भालू बानर नर भोजन है, नित काल भी

आज अपने मुख से अपनी शोभा बेपत सेना का पति बनूं, ये भाग्य कहाँ नहीं है इच्छा। सोने की लंका वालों अब वो रही सुनहरी शान, कहाँ नारियां चुराने वालों।

भूल न अब सती की आहों से जले हुए ओ राख बबूले, भूल न अब कामियों के बल।

रावण ने कहा, बकवादी बानर को उठाकर सागर में फेंक दो। अंगद का पांव उठाना चाहते हैं, मेघनाथ से लेकर सब के सब राक्षस मुंह की खाते हैं। रावण स्वयं उठते

0: अभी हमारे भैया बहन ने सुनी रामायण, प्रसंग हो अंगद रावण संवाद और स्वर हो पंडित निरंजन देव शर्मा को। और कृष्णा भैया अब जो अपनी थैला खोलो और जानकारी निकालो का है।
1: बिल्कुल भैया, तो देखो जो हम गांव में पहुंचे हैं, जो हमारे भैया बहन हैं, जो किसान भाई हैं श्री राम और उग्रसेन जी, उनसे हमारी बात भी है, तो अपने भैया बहनों का सुनवाई दे रहे हैं। का नाम है आपको?
2: श्री राम।
1: श्री राम, बहुत बढ़िया नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से गाँव?
2: ग्राम सत्रा यही।
1: और जाकर ब्लाक कहाँ लगता है?
2: नवाबगंज।
1: अच्छा, जिला बरेली गाँव है।
2: हाँ, जिला बरेली गाँव।
1: अब जी बताओ श्री राम जी कि हम तो आपके गांव में आए पहुंचे हैं
2: जी,
1: अगर हमारे और उच्च अफसरान आपके गांव में आना चाहें तो रास्ता किधर से है?
2: रास्ता मैं रास्ता वही है,
1: बरेली से सैटेलाइट से
2: वही रास्ता है।
1: रोड पे गांव है ये आप?
2: हाँ, रोड पे है, एक फल्लांग दूरी है गाँव, ज्यादा ना है।
1: कुछ अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताओ, पढ़ाई लिखाई भाई थोड़ी बहुत?
2: हाँ, हाई स्कूल पास है।
1: अच्छा, कब करूँ हाई स्कूल?
2: 87 में करूँ।
1: 83 में। और उम्र आप कितनी हुई चली हुई?
2: 60 साल।
1: 60 साल के लगभग हो गए आप है?
2: हाँ।
1: अच्छा, हम देख रहे हैं आपकी मोछे खूब बड़ी बड़ी हैं, क्या राज है मोछे रखने को?
2: मोछे असल होना चाहिए, एक देहाती कहावत है, बैल पछाड़ो मर्द मछाड़ो।
1: कहते पहले लोग मोछे पे ताव देने पड़ता है, तो ताव?
2: अरे कौन है, वो समय नहीं रहो, उस समय बात मान तो आदमी एक दूसरी दबत हो, अब बोला है, अब तो नीचे पर कह रहा हो, गर्म दल से बात करी, वो तुमसे गर्म दल है,
1: मतलब सब अपनी अपनी में लगे पड़े।
2: हाँ, बिल्कुल है।
1: अच्छा, जो आप बता रहे हो कि खेती बाड़ी की बात, तो हम देख रहे हैं कि आपके गांव के इर्द गिर्द जो है खूब पानी चल रहा होगा खेत में।
2: पानी साफ
1: पहले भी देखो आपने कभी ऐसे पानी?
2: हाँ, जून के महीने में एक साल आओ।
1: अच्छा,
2: और सैलाब तो अभी तो पिछले 2 साल पहले ऐसी आइए, धान सब मारेगा, धान के औकात का होता है इस तो ना हो, सड़क तो फिर उतर गई।
1: देख रहे हैं आपके यहाँ पर जो पानी भर पड़ा हुआ है।
2: हाँ, कई दफे जिंदगी में कई बार आए स्कूल, अक्टूबर में कोई लाई बवाएगा, कोई गन्ना करे, मतलब कुछ ना कुछ सिस्ती करे।
1: पशु वगैरह भी पालते होंगे आप?
2: हाँ, पशु हैं, मगर अब इंसान बहुत खबानी समस्या है, चारा सब मारो उस पानी में।
1: तो फिर आप कैसे पशु उनके लिए का खिला रहे हो?
2: अब भुसा है, खरदानो है, खबा रहे बस, ऐसी कोशिश कर रहे हैं। जो भैंसी 8 लीटर दूध दे रही है 2 लीटर दे रही, जो 2 लीटर दे रही है कतई ना दे रही।
1: अच्छा जी बताओ श्री राम जी की जो गाँव आपको है सितरा, और आपकी उम्र लगभग 60 के आसपास भी आ गई है, तो आपने जो गांव पहले भी देखो है आज भी देख रहे हो, कुछ अंतर नजर आ रहा हो आपको पहले से और आज में?
2: जो अंतर तो इसलिए आ रहा है चवन्नी भर अंतर।
1: पहले देखे थे कि गांव में छप्पर होते बहुत,
2: अब बे तो सब कहीं ना आ रहे छप्पर,
1: गांव में निकलना मुश्किल होते
2: हो, मगर सुखी ना कहा पहले है, सुखी छप्पर में
1: सुखी वाली
2: बिजली ना आई, आराम से लेटे ठंड में छप्पर, आओ तो धंधे करे मकान।
1: तो बात सही है, हम ये कह रहे हैं कि पहले छप्पर चढ़वाने वाले लोग मिल जाते।
2: हाँ, अब ना मिलेंगे।
1: आज छप्पर चढ़वाने वाले,
2: अरे आप तो खाएंगे नीचे को।
1: हाँ, चढ़ावेंगे कम, खींचेंगे ज्यादा। पहले छप्पर चढ़ाते तो सतुआ सतुआ घोर लेते,
2: राब है मठाव सरवत प्याते,
1: सरवत प्याते छप्पर चढ़ने के
2: बाद चना खवा पहले भाई,
1: बड़ा अच्छा लगता होगा ऐसे क्यों?
2: पहले
1: और खेतनों में चना होना खूब अपने,
2: अरे खूब अब चना का जो लीलिया है ये साथ के नाम देंगे चलो, पहली बात तो हुई होगा चोटा उखेर के खा
1: जाएंगे होरा बनाएगा,
2: जाओ पहले समस्या कुछ खेती करने में काश्तकारी मजबूरी है।
1: अच्छा, पहले गांव में जो अपने बैठक ही चौपारे होती उन पर खूब निंदना ढोला?
2: हाँ सब, वो अब कहाँ कर जगह ना, ऐसे खुली बैठक रखा है वो आदमी चोर घुस जाते, इसे सबकी बंद कर जनान खाने की तरह बंद है,
1: बंद होगी अगर माने हाइयो तो, लोग बैठने पसंद ना कर रहे हैं।
2: हाँ, बहुत ना कर। और दूसरी बात बाजार घुस जाते, हमारी बैठक में बाजार घुस जाते, चौकी तोड़ डाली, जैसे सामने बैठक है गेट है बड़ो बंद है ना।
1: अच्छा,
2: पैसा है ना तो बंद कर, कम से कम 50,000 में गेट लगे,
1: तो बड़ा देखभाल करने पड़ते
2: हो, चौकी ठाड़ी करते हैं, डंडा लगा रात को दवाई लेटा थे।
1: अब जब बताओ बाजार कहाँ कहाँ रखा हुआ, घर में रखा हुआ या खेत में रखा हुआ?
2: अब इस समय बाजार में बहुत समस्या है, जंगली जाने कहीं खान को जंगल में कुछ सही है भाई, हम तो घुस खवा रहे सब लोग, अब बेचारे कहाँ खाए,
1: पानी भरो पड़ो खेत में,
2: पानी भरो पड़ो तो तुम्हारे घर में घुसा थे।
1: सही बात है,
2: बिचौरी काम में घुस के खुली हुई है तो वहाँ घुस खाए लो, उन्हें
1: समस्या उनके भी सामने बेचारे
2: कहाँ जाए।
1: अच्छा, जो आजकल के जो बालक हैं, पहले जैसे बालक बड़े बूढ़े के ढंग बैठते बातचीत होती,
2: अब बना रही, अब तो उनके जो मोबाइल जो चल पड़े बस इन्हें ली है, जल उड़िया देखो कई साल की 3-4 साल ही हुई है मोबाइल में, देखो छुपी हुई, अच्छा छीन लो रो भाई,
1: मतलब बालकनों को मोबाइल चाहिए,
2: मोबाइल जो बहुत जरूरी कंपलसरी, मोबाइल बहुत बढ़िया चीज है, अच्छी चीज समझने वाले अच्छी, गलतों का मेरा सही हो काम,
1: समझने वाले के लिए अच्छी, ऐसे देखो पहले कोई घटना हो जाती तो साइकिल लेके जाने
2: खाने, हाँ और रिश्तेदारी में अब सब जब मजा अच्छा है,
1: जिस चीज से फायदा है बाद नुकसान, अब वो आपके ऊपर की हमें करने का
2: क्या करने का।
1: अच्छा जी बताओ श्री राम जी, जो सरकार योजना चला रही है किसान सम्मान निधि योजना को लाभ आपको मिल रहा है?
2: हाँ, वो मिल रही है।

0: ਬੀਸਮ ਕੱਟ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਈ ਜਿੰਦੀ ਆਈ।
1: ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਤੇ ਆਈ? ਇਕੱਠੀ ਆਈ
0: ਗਿਣਤੀ ਹੈ,
1: ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਾ ਆਤੇ ਤੋਂ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਆਪ ਕੇ ਕੰਮ
0: ਲੱਗਿਆ। ਕੰਮ
1: ਲੱਗੀ ਬੀਜ ਲੈ ਆਏ,
0: ਹਾਂ ਕੁਛ ਲੈ ਆਏ।
1: ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਤਾਓ ਬਾਲਕਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਕੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਹੈ ਗਾਓ ਮੈਂ?
0: ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਹੈ 60 ਤੱਕ ਜਮਾ ਦੂਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ।
1: ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਗਾਓ ਮੈਂ?
0: ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਭਾ ਬਣੋ ਪਸੰਦ ਹੈ।
1: ਆਤੇ ਹੈ ਸਟਾਫ ਲੋਗ ਆਤੇ ਹੈਂ?
0: ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਤੇ ਹੈਂ।
1: ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਤੋ ਕੋਈ ਦੁੱਖ?
0: ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਹੈ।
1: ਅੱਛਾ,
0: ਟਾਈਮ ਸੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਦਵਾ ਦੇ ਸਭ ਕੋ ਅੱਛੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਦੋ ਆ ਜਾਤੇ ਹਮਨੇ ਕਈ ਲੋਗੋਂ ਲਈ ਵੀ ਆ ਜਾਤੇ।
1: ਚਲੋ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪਸੇ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋਈ, ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਾਥੀਓ ਹਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਚਾਰਪਾਈ ਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਬਾਤ ਕਰਤੇ। ਚਾਚਾ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕੋ?
2: ਉਗਰ ਸਿੰਘ।
1: ਆਪ ਜੈ ਗਾਓ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ?
2: ਹਾਂ ਜੈ ਗਾਓ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ।
1: ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਾਓ ਕੋ?
2: ਸਿਥਰਾ।
1: ਅੱਛਾ, ਆਪਕੀ ਉਮਰ ਕਿਤਨੀ ਚਲੀ ਹੋਈ?
2: ਹਮਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 65-66 ਸਾਲ।
1: 65-66 ਸਾਲ ਕੇ ਆਪ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਆਪ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰੀ?
2: ਹਾਂ ਕਰੀ।
1: ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ?
2: 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ।
1: ਤੇ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਮੇ ਲੱਗ ਗਏ?
2: ਖੇਤੀ ਮੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ।
1: ਅੱਛਾ, 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਸਮਾਨ ਲਿਖ ਲਏ। ਤੋ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਜ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ?
2: ਆਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ।
1: ਅੱਛਾ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਜਾਤੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਮੇ?
2: ਹਮਾਰੇ ਖੇਤਰ ਮੇ ਗੰਨਾ ਹੈ, ਗੇਹੂੰ ਹੈ, ਧਾਨ ਹੈ।
1: ਅੱਛਾ, ਔਰ ਸਬਜ਼ੀ ਕੀ ਫਸਲ ਕਰੀ ਜਾਤੀ?
2: ਨਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਮੇ ਹੋਤੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕਮ ਕਰਤੇ ਹੈ।
1: ਅੱਛਾ, ਕੇਵਲ ਧਾਨ ਗੰਨਾ ਗੇਹੂੰ ਜੇ ਖਾਦਿਆਂ ਕੀ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਨਗਦੀ ਫਸਲ ਗੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਉਗਾਈ ਜਾਤੀ ਹੈ ਗੇਹੂੰ?
2: ਹਾਂ ਜੇ ਉਗਾਈ ਜਾਤੀ।
1: ਅੱਛਾ, ਜਬ ਹਮ ਆਪਕੇ ਗਾਓ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਹਮਨੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਮੇ ਪਾਣੀ ਭਰਵੋ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਤੋ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ।
2: ਬਰਸਾਤ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ।
1: ਅਬ ਜੀ ਬਤਾਓ, 65-66 ਸਾਲ ਕੀ ਆਪਕੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਪ ਜਗਾਓ ਮੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਬ ਆਪਨੇ ਹੋ ਸਵਾਲੋ ਹੋਏ ਤੋ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਗਾਓ ਕੀ ਸਥਿਤੀ, ਤੋ ਸਥਿਤੀ ਆਪਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਭੀ ਦੇਖੀ?
2: ਆਈ ਹੀ ਬਾੜ, ਇਤਨੀ ਬਾੜ ਨਹੀਂ ਆਈ।
1: ਅੱਛਾ, ਆਪਕੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉ ਹੈ?
2: ਆਪਕੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਆਪਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
1: ਅੱਛਾ, ਤੋ ਗਾਓ ਮੇ ਤੋ ਪਾਣੀ ਨਾ ਘੁਸੋ ਆਪਕੀ?
2: गांव में पानी नहीं होता है, लेकिन गांव के किनारे ही है।
1: मतलब गांव के इर्द गिर्द में जो है पानी भरो पड़ो हुआ है। गांव भी आपको थोड़ा ऊंचे पे है?
2: हाँ, गांव ऊंचे पे है।
1: अच्छा, पहले आपने पशु पाले, आज भी पशु पाल रहे हैं?
2: हाँ, पाल रहे हैं आज भी।
1: कौन कौन से पशु हैं?
2: हमारे पास तो गाय है।
1: अच्छा, क्या गजिया है?
2: दो है।
1: दूध दे रही ना?
2: एक गावे ना, एक उसकी वो है
1: बछिया।
2: बछिया।
1: अच्छा अच्छा, चाचा जी बताओ, जैसे पहले जो हमारे किसान भैया बहने खूब पशु पालते, आज पशु ना पाल रहे हैं?
2: आज कल इतना पड़ रहे हैं खवाने के लिए महंगाई, कोई पालना चाहता नहीं है, चारा कोई नहीं बनाना चाहता है। आज गैस चूल्हे चल रहे हैं आजकल, तो इसलिए आदमी और ऐज करता है।
1: और कुछ जोतियों कम हो गई?
2: जो ट्रैक्टर चल रहे हैं तो आदमी जब ताकत है पशु क्यों पाले, जब ट्रैक्टर चल रहा है तो उनमें जरा देर में काम हो जाता है।
1: ना, काम तो ज्यादा देर में हो जाता है, लेकिन दूध देने वाले पशु हैं जैसे गाय हैं, भैंस है, कम से कम आपके घर पर पशु होएगा तो ये तो ना की गिलास को ले ले मोहल्ला में घूमने फिर रहे हो।
2: तो जो है आजकल यही है, सब लोग पालना नहीं चाहते हैं, उन्हें चलो मोल ले लेंगे 250 ग्राम और उन्हें खवावा कौन।
1: और आजकल के बालक तो सोचते हैं कपड़ों बंदे होंगे अगर पशु पालेंगे तो।
2: है, यही तो स्थिति है।
1: अच्छा, अब एक बात और बताओ, जैसे आपने पहले देखी हुई कि हमारे जो किसान भैया बहने धान की जब रोपाई करते हैं वहां से पहले जो कंधेर वगैरह बनाते हैं तो बामे जो है ढेंचा है, सनई है, लुबिया है, पटसन है, जिस सब फसल जो है हरी खाद के रूप में पलटते।
2: अब कुछ नहीं होता है, तभी तो खाद लगा कर सब बंजर हो गई खेती, और जब तक देसी गोबर ना पड़ता है तब तक कुछ ना हो। बिलायती खाद निखर लगा के पैदा नहीं होगा। हमने एक खेत में, अब तो उसमें पानी भरा है, हमने उसमें 3 बीघा में एक ट्राली घूरा डाल दिया, उससे गन्ना अच्छा उठा। और ये क्या कहते हैं घर के ये बिजार वगैरह हैं, ये बहुत नुकसान करते हैं, उनकी ज्यादा स्थिति बढ़ रही है, आदमी को बहुत परेशान है, रात दिन वो जगता है कहाँ लोग क्या करें।
1: हाँ, दिन में खेती बाड़ी में काम कर रहे हैं, फिर शाम को फिर लखान जाओ बिजारन के लिए।
2: इसके बारे में कुछ सोचा जाए, सरकार सोचे तो अच्छी है।
1: सरकार ने गौशाला भी बनवाए रखी है?
2: वो तो साहब गौशाला बनवा रखी है, लेकिन एक गौशाला देखी जाए तो एक को साबित नहीं मिलेगी।
1: अच्छा अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे चाचा, जैसे आपकी 65-66 साल की उम्र है, आपने काफी विकास देखो हुए गाँव में, अपने पहले गाँव आपको कैसे हो और आज गाँव आपको कैसे हो?
2: आज गाँव सही है।
1: सीसी रोड पड़े हुए हैं गाँव में? तो
2: सीसी रोड पड़े हुए हैं, गाँव सही है।
1: और बालकन के लिए पढ़ने के लिए स्कूल वगैरह?
2: स्कूल हमारी लड़कियाँ हैं वो पढ़ने जाती है, हाफिज बस आती है।
1: अच्छा अच्छा, और गाँव में है स्कूल? न,
2: गाँव में स्कूल है।
1: कितने तक है?
2: एक 5वीं तक है, एक 8वीं तक है, एक प्राइवेट है।
1: अच्छा अच्छा, और कोई अस्पताल वगैरह है गांव में?
2: हाँ, अस्पताल है छोटा।
1: अच्छा, तो कोई दिक्कत ना है वैसे तो?

0: ना कोई दिक्कत ना है, घर बजाने की दिक्कत है।
1: अच्छा अच्छा, चलते चलते जो और जानो चांग दादा की, जैसे पहले आप देखो सूप जो अपनी बैठक ही चौपा रही गोने बजने होती, ढोला भजन और जो आला और जो खूब होते, आज ये सब चीजें बंद हो गई।
0: आजकल ये चीजें इसलिए बंद हो गई, पहले का आदमी एक दूसरे से बैठक पर मानते और क्या कहते हैं बैठक पर बातचीत करते, आजकल के लोग केवल लड़ाई की धुन में रहते हैं।
1: हाँ।
0: इसलिए कोई एक दूसरे के सामने बैठता नहीं है।
1: अच्छा, और जो बालक है वे तो बड़े बुरी नहीं बैठ रहे हैं आजकल,
0: वे क्यों बैठे, वे तो अपनी मोबाइल ज्यादा चलाते हैं, मोबाइल में गाना सुनते हैं, पिक्चर देखते हैं।
1: तो संस्कारों में कहीं ना कहीं कमी आई है क्यों?
0: पहले में तो इसलिए कमी आई जाएगी।
1: पहले देखते कि अपने दादा हैं, दादी हैं, नाना नानी हैं, उनके पास बैठते शिक्षा पर कहानी सुनाई जाती
0: ना, अब कुछ ना है। अब तो अपने क्या कहते हैं अलग उनको एस्टीमेट रहे तो बालकन को, अपने गाना सुनते हैं, कहूँ पिक्चर देखे तो कहूँ कुछ करते
1: हैं। बड़े बूढ़े ठीक बैठना ना चाहते
0: ना, अब कोई बैठन को हिसाब ना है।
1: चाचा आपसे बातचीत भाई, और आपने बहुत सारी बातें बताई है, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे भैया बहन सुन रहे क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता खेती संघ पशुपालन, आपको जानकारी दे रहे श्री राम और उग्रसेन, आपसे बातचीत कर रहे हमारे प्रतिनिधि भैया कृष्णपाल।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: भैया,
2: हाँ भैया,
1: देखो आपकी जानकारी तो पहुंच गई हमारे भैया बहनों तक।
2: हाँ,
1: और अब पुनः गीत संगीत को कार्यक्रम शुरू करें।
2: हाँ बिल्कुल भैया, गौने बजने तो भैया
1: होना जरूरी है, तो कार्यक्रम में एक लोकगीत सुनवा रहे अपने भैया बहनों को मनोरमा तिवारी व सखियों के स्वर में। और इस लोकगीत को सुनने के लिए कुछ सोशल मीडिया संदेश हमको मिले हैं। ये हैं कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखेलाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, बेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य। आप हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रेयांश ठाकुर।
2: और जो फरमाइश हमको मिली है करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन निशा और तमन्ना परवीन की। और आप हैं दरबार कॉलोनी सनावत से किशोर कुमार सांवले, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना चारूवी और आर्यन राज सांवले।
1: आप हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार। कटरा चांदखा पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि मौर्य और साथ में मानवी मौर्य। कृष्णा भैया, हमने सुनी कि आप घर पे कोई साग सब्जी बनते हैं तो नखरे बहुत दिखा तो।
2: अरे भैया बात है, बाद में कर ली, पहले लोकगीत सुनवा दो अपने भैया बहन को।
1: लोकगीत तो सुनवा बंगे भैया बहन को। अच्छे बताओ बात का है, आज भौजी को फोन आओ।
2: हाँ?
1: बता रहे हैं कि अपने भैया को समझा दियो, कहा होएगा वो ऐसी बात।
2: भैया बात तो कुछ नहीं जाएगी, अगर कोई सब्जी एक बार बार तुम जानते हो कि अगर तुरैया घर पर आएगी तो नहीं पूछो भैया सब्जी कहाँ है, तो उन्हें जो चाहो वो ले आइयो।
1: अच्छा?
2: और जब लेके आओ भैया तो अरे जची ले आते।
1: अब बात तो वही आ गई, अब तुम लेके आए और आज थैला में बता रहे जहाँ में लौकी और तुरैया बांध दी उन्होंने किन्ने श्री राम जी ने और उग्रसेन भैया ने। तो जब रोज रोज तुरैया और लौकी लेके जाओगे तो भौजी तो वही बना गई, तो फिर नखरे क्यों दिखावे तो।
2: अरे सीधे सीधे बात करो भैया कि जो नखरे वाली बात जो कर रहे हो, हमें लग रही कुछ लोकगीत तो ऐसे सुनवान जा रहे हो।
1: हाँ देखो भैया मनोरमा तिवारी क्या कह रही हैंगी आप वो जान लेते हैंगी।

0: अपने पशुओं को भी ध्यान रखने हैं हम सबके लिए, और जो हमारे घर में बालक बच्चे हैं उनको भी ध्यान रखने हैं, जाके साथ साथ भैया हम भी अपनों विशेष तरीका ध्यान रखें, क्योंकि जब बदलते मौसम में कोई समस्या सामने आती तो देखते हो कि भैया कई तरीके की समस्याएं भी सामने आ जाती हैं, बीमारी
1: बिल्कुल
0: जाती
1: सही है। बात है कृष्णा भैया, बात ये है कि जैसे ही जन्माष्टमी को त्यौहार बीतत हैगू तो मुट्ठी भर ठंडा आ जात हैगी, और जब करवा चौथ आत हैगी तो करो भर के ठंडा आ जात हैगी, और जब दीपावली आवत हैगी ना तो हाथी घोड़न से लद के ठंडा आवत हैगी। कहने का मतलब जो है कि अब मौसम बदल लेकर हुआ, मुट्ठी भर ठंडा आ चुकी है, खुले में ना सोवे, और अगर खुले में सो रहे हैं तो मच्छरदानी लगा मत जिससे मच्छरन से बचे रहेंगे, और ऊपर से डाल लें चद्दर तो उससे भी बचे
0: उसने
1: रहेंगे।
0: करी, बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। और जब हमारा स्वस्थ होए वो, हम जब स्वस्थ होंगे तो जो हमारा काम धंधो चाहे खेती बाड़ी को सही या पशुपालन सही, तो हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और जब भैया स्वस्थ की बात है तो सुनवाओ भैया कौन से लोग भी सुनवा रहे हो, क्योंकि भैया लोक संगीत तो सुनने से जो है स्वस्थ जो हमारा सही हो जाता है।
1: बिल्कुल भैया, तो अब सुनवा रहे हैं समूह स्वर में जे मधुर लोकगीत, जिसके लिए कुछ सोशल मीडिया संदेश भेजे हैं। मारहरा दरवाजा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, और साथ में हैं अनम यसुफ अब्बासी, और आप हैं ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से
0: लाल मोहम्मद अंसारी भाई, जिनको हमने कार्यक्रम में अभी इससे पहले भी हमने उनको भैया कार्यक्रम में पत्र जो है शामिल करो। और देखो जो फरमाइश जो हमको मिली है, सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान मोहनी कल्पित बेबी और इनके परिवार के सभी सदस्य, आप हैं ग्राम पजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंदौसिया, आदर्श सार्थक अलौकिक और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: तो आप सुनते हैं समूह स्वर में जे मधुर लोकगीत।

0: कृष्णपाल भैया बहुत ही मधुर लोकगीत सुनो अभी।
1: अरे बिल्कुल भैया, आपने तो झोला से ऐसे लोकगीत निकालो कि भैया हम झूम गए, और जो सामने हरीश भैया बैठे हैं, जो भैया हम देख रहे हैं खूब भैया मूड को हिला रहे, और जब जे मूड हिला रहे और हम जब मूड हिला रहे, तो जो भैया हमारे सुन रहे हैं रेडियो सेट पर, उन्होंने थोड़ी आवाज़ बढ़ाई दी होगी कि अरे आज तो बड़ो अच्छे लोकगीत लेके आए, तो भैया बेवकूफ़ झूम गए होंगे। और जो दिन भर की थकान होती है काम धंधे की, बहुत थकान हमें लग रही है, उनकी दूर होगी।
0: तो भैया अभी थकान दूर ना भी होगी तो अब है जाएगी, एक लोकगीत और है अभी हमारे पास, कहो तो वो सुनवा दें।
1: हाँ बिल्कुल भैया, लोकगीत सुनवा दें, लेकिन देखो भैया थोड़ी सी हम बात यहाँ पर अपने भैया बहनों से करना चाहेंगे, क्योंकि देखो मौसम अब हल्के हल्के बदल रहा है। आप देख रहे हो दिन में भैया धूप हो जाती है और शाम के लिए जो तापमान थोड़ा कम हो जाते हैं, तो बदलते मौसम

0: कोठे ऊपर कोठरी में बाप रेल चला दूंगी भैया लोकगीत। अभी हमारे भैया बहनों ने सुनो, और ये लोकगीत सुनकर हमें भैया एक ही बात समझ में आई कि भैया अगर हम सब प्यार से रहेंगे तो भैया जिठानी होए, सास होए, नंद होए, हमारा परिवार जो है अच्छे तरीके से चलेगा। वरना तो देख ही रहे कि भी कह रहे भैया हम रोटी को तरसा देंगे।
1: बिल्कुल भैया, एक लोकगीत और है अभी हमारे पास, चलते चलते कहो तो बहुत सुनवा दे।
0: हाँ बिल्कुल भैया, नेकी और पूछ पूछ
1: तो जी सुनते हैं रजनी टोंक के स्वर में मधुर लोकगीत।

0: कृष्णा भैया, आपने बहुत ही मधुर लोकगीत सुनवाओ अपने भैया बहनों को, और लोकगीत के जा सफर में समय को कुछ पता ही नहीं लगू।
1: हाँ बिल्कुल भैया, और लोकगीत जो हो सासू लड़ोगी तो पीसन बिठाए दूंगी। बात भाई आई फिर से, जो इससे पहले हमने कही कि भैया जो परिवार में हम रह रहे हैं, चाहे सास हो, देवरानी हो, जिठानी हो, नंद हो, सबको भैया मिलजुल कर रहने हैं, वरना तो देख ही रहे कि भैया सासू लड़ोगी तो पीसन बिठाए दूंगी। तो जी समस्याएं नहीं आएंगी, लेकिन परिवार कोई सही संयुक्त परिवार भैया तभी रह पाते जब हम आपस में सब मिल के चलते हैं, एक दूसरे की बर्दाश्त करते हैं, और जे गीत से भी हमको सीख मिली है।
0: बिल्कुल, और अब धीरे धीरे घड़ी भी टिक टिक करके शाहरुख खान लागी है कि अनुमति लेने की बेल आ चुकी है। तो इन्हीं ढेर सारी बातों के साथ अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने भैया हेडलपाल सिंह
1: और भैया कृष्णपाल को देव अनुमति। भैया बहनों
0: राम राम, राम।

श्रोताओं, कुछ खोए हुए व्यक्तियों के बारे में जानकारी है वो आपको बता दें। नंदिनी पुत्री पुत्री अशरफीलाल, निवासी हवाई अड्डा आलोकनगर, थाना चंदनगर, जिला बरेली। उम्र है इनकी नंदिनी की 17 वर्ष। रंग गेहुआ है। आँख कान कान सब सामान्य है। इनका जो कद है वो भी औसत है। नंदिनी के बारे में अगर कोई जानकारी आपके पास हो तो आप इनके घर के मोबाइल नंबर यानी कि इनके माता पिता का जो नंबर है वो है 7505740756 या थाना प्रभारी इज्जत नगर बरेली के मोबाइल नंबर 9454403084 पर आप खबर दे सकते हैं। आप है निखत पुत्री मुख्तियार अहमद, निवासी हाफिज गंज, जिला बरेली। गांव है सनेकपुर। निखत की आयु 16 वर्ष है। ऊंचाई 5 फुट है। रंग गोरा है। काले बाल, आंखें सामान्य, शरीर स्वस्थ है और इन्होंने हरे रंग का सूट सलवार पहना हुआ है। और इनकी शारीरिक बनावट की बात करें तो इनका इकहरा मजबूत जिस्म है। इन संबंधित जानकारी अगर आपके पास हो तो आप इनके मोबाइल नंबर 7351611288 पर, ये नंबर है इनके घर का, आप सूचित कर सकते हैं। या संतोष कुमार, प्रभारी निरीक्षक थाना हाफिजगंज बरेली को भी आप सूचित कर सकते हैं।

श्रोताओं, अगर आप मोटर वाहन चलाते हैं तो दुपहिया वाहन पर हेलमेट का उपयोग जरूर करें और चार पहिया वाहन पर सीट बेल्ट आप जरूर लगाएं। और सबसे खास बात यह है, अपना वाहन मोड़ते वक्त या मोड़ने से 25 सेकंड पहले या 30 सेकंड पहले डिपर जरूर दें कि आपको किस ओर मुड़ना है, ताकि जो पीछे आपको फॉलो कर रहा है या आपके पीछे जो चल रहा है वो समझ सके कि हाँ, ये गाड़ी किधर मुड़ रही है, तो डिपर का प्रयोग जरूर करें। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर किया 25,000 रुपए प्रतिमाह। 51 लाख से अधिक कर्मचारी होंगे लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल काशी में सेवा संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। वाराणसी से वडनगर तक की 500 युवा बाइकर्स की सेवा यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 40 करोड़ रुपए की 119 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सरकार के विकास कार्यों से पूरे देश में बदली प्रदेश की पहचान। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायक अध्यापक और प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी के 15,000 से अधिक पदों के लिए मांगे आवेदन। ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया आज से शुरू। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तन्वीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस निर्णय से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के दायरे में आ जाएंगे। इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा। सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
2: 25,000 रुपीज पर मंथ सैलरी विल बी द न्यू सीलिंग फॉर पीएफ डिडक्शंस। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉइज को इसका बेनिफिट मिलेगा, जो कि 15-25 वाले बैंड में थे। दे विल स्टार्ट गेटिंग कवर्ड इन द न्यू पीएफ रूल्स। भारत सरकार का इस पे एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा अबाउट 11,339 करोड़ रुपीस एवरी ईयर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 7 अक्टूबर को शासन प्रमुख के तौर पर 25 वर्ष के सेवाकाल पूरा होने के अवसर पर कल से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर कल श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजन अर्चन और रुद्राभिषेक किया जाएगा। साथ ही वाराणसी से वडनगर तक की सेवा यात्रा पर निकलने वाले 500 युवा बाइकर

0: का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने बताया कि युवा बाइकर्स को सेवा यात्रियों के रूप में झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा।
1: एक सेवा यात्रियों के रूप में फ्लैग ऑफ करके झंडी दिखाकर हमारे सभी अतिथिगण उनको विदा करेंगे और उसके बाद इस यात्रा पर जगह जगह पड़ाव रहेंगे और इस प्रकार से आगे यात्रा बढ़ेगी और दूसरे प्रदेशों से होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होते हुए गुजरात पहुंचेगी। इसमें 20 दिन का समय लगेगा, 7 अक्टूबर तक ये वडनगर पहुंचेगी यात्रा।
0: सेवा संकल्प अभियान के तहत राज्य में 12 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें आशीर्वाद का दिया, मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा, नमो सेवा अनकही कहानियां, सेवा ज्योति कलश यात्रा, वडनगर से वाराणसी यात्रा और सुशासन सेवा संवाद प्रमुख है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: अभियान की शुरुआत कल सेवा दिवस आशीर्वाद का दिया से होगी। शाम 7 बजे नागरिक अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर दीप प्रज्वलित कर सेवा और विकसित भारत 2047 के सामूहिक संकल्प से जुड़ेंगे। प्रदेश में प्रमुख विकास कार्यों और अवस्थापना परियोजनाओं से जुड़े चयनित स्थलों पर भी दीप प्रज्वलन किया जाएगा। अस्पतालों में फल वितरण, रक्तदान शिविर और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर टूल किट वितरण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और अभियान के प्रभारी योगेंद्र उपाध्याय के मार्गदर्शन में अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शासन से लेकर जनपद स्तर तक त्रिस्तरीय समन्वय व्यवस्था बनाई गई है। अभियान के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व पिछले वर्षों में हुए विकास कार्यों से जनजीवन में आए सकारात्मक बदलावों को आम जन तक पहुंचाया जाएगा। प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान देश भर में कल से शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। ये विषय स्वच्छ और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सामूहिक भागीदारी और साझा जिम्मेदारी के महत्व को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
3: साल 2017 में शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह अभियान हर साल आयोजित किया जाता है और देश भर के लोगों को अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी लेने और स्वच्छता में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत पौधारोपण भी किया जाएगा। राज्यों से अपील की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा पूरी होने के अवसर पर 7 अक्टूबर को विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। इससे खुले में शौच की समस्या खत्म हुई है और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को भी बढ़ावा मिला है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 40 करोड़ रुपए की 119 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कल्याण मंडपम का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के विकास कार्यों से प्रदेश की पहचान पूरे देश में बदली है।
4: आज बिना भेदभाव के हर गरीब को शासन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। गरीब को राशन की सुविधा का लाभ, गरीब को आवास की सुविधा का लाभ, गरीब को शौचालय की सुविधा का लाभ, गरीब को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन का लाभ और युवा को नौकरी की गारंटी, लगातार ये सुविधाएं आज प्राप्त हो रही हैं।
0: इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने आज गोरखपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गोरखपुर की तरफ से संचालित चैरिटेबल ब्लड बैंक सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश की पहचान वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज से बन रही है। श्री योगी ने कहा कि आज हम नए गोरखपुर, नए उत्तर प्रदेश और नए भारत का दर्शन कर रहे हैं।
4: एक नए गोरखपुर का, एक नए यूपी का, एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व बदलाव आया है, गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी के साथ इंसेफ्लाइटिस के उपचार के साथ साथ हर प्रकार की बीमारियों के उपचार

0: बिहार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर के उभरा है। एम्स गोरखपुर में आ गया, गोरखपुर में आज 2 मेडिकल कॉलेज, 4 विश्वविद्यालय आज गोरखपुर के अंदर संचालित हैं।
1: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायक अध्यापक और प्रवक्ता संवर्ग PGT के कुल 15,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। एक रिपोर्ट।
2: आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी के 897 रिक्त पदों तथा बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक शहरी के 11,508 रिक्त पदों का विज्ञापन जारी किया गया है। सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी एवं सहायक अध्यापक शहरी के पदों के लिए विज्ञापन के तहत 15 सितंबर 2026 को विज्ञापन जारी किया गया। ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता संवर्ग PGT के 2,607 रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया 18 सितंबर 2026 से प्रारंभ होगी। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत लखनऊ के चारबाग स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण आज से 12 अक्टूबर तक प्लेटफॉर्म 1 से 3 तक ब्लॉक लेगा। इस दौरान एयर कॉन्कोर्स का काम पूरा किया जाएगा। इस कारण 85 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने EPFO के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपए से बढ़ाकर किया 25,000 रूपए प्रति माह। 51 लाख से अधिक कर्मचारी होंगे लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल काशी में सेवा संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। वाराणसी से वडनगर तक की 500 युवा बाइकर्स की सेवा यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 40 करोड़ रुपए की 119 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सरकार के विकास कार्यों से पूरे देश में बदली प्रदेश की पहचान। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायक अध्यापक और प्रवक्ता संवर्ग PGT के 15,000 से अधिक पदों के लिए मांगे आवेदन। ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया आज से शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
4: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। आज विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रेम मोहन झा, और विषय है कितना और क्यों महत्वपूर्ण है आपकी किडनी अथवा गुर्दा, शंकाएं एवं समाधान। और आपसे बातचीत कर रहे हैं मुकेश कुमार पांडे।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
6: रोहेलखंड का आधुनिकतम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल गंगाशील हॉस्पिटल दीदीपुरम बरेली।
7: मानसिक तनाव, अत्यधिक चिड़चिड़ापन, सोचते सोचते खो जाना, याददाश्त की कमी, परेशान रहना, रोज के कार्य करने में असक्षमता, मेंटल ट्रॉमा जैसी किसी भी समस्या में परामर्श एवं सुझाव करें गंगाशील अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता से।
8: कैंसर के इलाज का अत्याधुनिक अस्पताल,
9: गुर्दे और पेशाब संबंधी बीमारियों के इलाज की सभी सुविधाएं,
10: महिलाओं के बचपन और जैसाली की सभी बीमारियों इलाज की सुविधा,
9: स्किन अथवा त्वचा के रोगियों का संपूर्ण इलाज,
10: 24 घंटे इमरजेंसी सेवा,
9: आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों के इलाज के लिए सरकार द्वारा अधिकृत अस्पताल गंगाशील हॉस्पिटल दीदीपुरम बरेली। इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 8273254444।
11: रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं मुकेश कुमार पांडे, और मेरे साथ मौजूद है आज गंगाचरण अस्पताल बरेली के किडनी स्पेशलिस्ट गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेम मोहन झा साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका।
12: धन्यवाद।
11: और डॉक्टर साहब आज हम बात करेंगे विशेष तौर से गुर्दे के बारे में, किडनी के विषय में। हमारे श्रोता कितना जानते हैं अपनी किडनी के बारे में, ये प्रश्न होगा आपसे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि कितनी महत्वपूर्ण है किडनी, आखिर गुर्दा किस तरह का ऑर्गन है, किस तरह का अंग है और इसमें कैसी बीमारियां होती हैं।

0: श्रोताओं की जो शंकाएं होंगी उनके समाधान भी आपसे जरूर चाहेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है डॉक्टर साहब आपसे कि जो गुर्दा है या किडनी है क्या, आखिर किस तरह की संरचना है, क्या काम है इसका?
1: ये नॉर्मली हमारे शरीर में दो किडनी होती हैं,
0: जी
1: पीछे की तरफ होती हैं, एक
0: जी
1: रीढ़ की हड्डी के दाईं तरफ, एक बाईं तरफ।
0: अच्छा
1: और इनका जो काम है
0: जी
1: वो खून की सफाई करना है।
0: अच्छा
1: नॉर्मली हर समय हम चाहे सो रहे हों, चाहे जग रहे हों, चाहे कुछ कर रहे हों, नहीं कर रहे हों, गुर्दों में खून की सफाई चलती रहती है।
0: अच्छा ये 24 आवर फंक्शन
1: जी
0: करती है, जैसे दिल हमारा हर समय काम करता है उसी तरह
1: जी
0: गुर्दे
1: ऐसे
0: भी हर
1: ही
0: समय
1: गुर्दे
0: काम
1: भी हर
0: करते
1: समय
0: हैं।
1: काम करते रहते हैं।
0: जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई है डॉक्टर साहब। अच्छा, क्या सिर्फ पेशाब बनाना ही गुर्दे का काम है या कुछ और भी?
1: नहीं, जैसा मैंने बताया कि किडनी का काम खून की सफाई है, जो हर समय वो करती
0: जी
1: है ना। और इस प्रोसेस में कुछ वेस्ट मटेरियल भी जनरेट होते हैं, तो जैसे कि यूरिया हो गया, क्रेटरिन हो गया, है ना, इनको रेगुलेट करती है। इसके अलावा शरीर में जो पानी का स्टेटस है, फ्लूड स्टेटस है, उसको रेगुलेट करती है। तो हमें डिहाइड्रेशन से भी बचाती है और
0: जी
1: पानी के ओवरलोड से भी बचाती है।
0: अच्छा
1: इसके अलावा आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, हीमोग्लोबिन बनाने का हार्मोन बनाना, विटामिन डी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ये जो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, मिनरल्स हैं,
0: जी जी
1: इनको भी कंट्रोल
0: अच्छा, इनको कंट्रोल भी किडनी का ही काम है।
1: जी।
0: बड़ी महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर साहब। क्या आपने बताया दो किडनी या दो गुर्दे होते हैं प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में, रीढ़ की हड्डी के एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ नीचे की ओर। कई बार सुनते हैं कि साहब एक ही किडनी है किसी व्यक्ति के, तो ये एक किडनी वाली बात हम आपसे जरूर जानेंगे, लेकिन एक श्रोता लाइन पर है, इनसे पहले पूछते हैं इनकी क्या समस्या है। रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए प्रश्न बताएं।
2: हाँ जी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, अगली
2: हाँ, चौबारी से बोल रहे हैं, सतबीर से।
0: जी, सतवीर सिंह जी, अगली आवाज डॉक्टर प्रेम मोहन झा साहब की, बताइए क्या सवाल है आपका।
2: सवाल ये साहब, जो आजकल आपका विषय है ना गुर्दे का,
1: जी,
2: तो इसमें हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे मेरे को शुगर तो नहीं है, लेकिन कभी कभी बाथरूम 5-6 बार जाना पड़ता है रात में, किसी किसी के लिए,
1: जी।
2: तो क्या प्रॉब्लम? ज्यादा पेशाब बनने का है।
1: नहीं देखो, ज्यादा पेशाब बनना हम तब कहते हैं जब 24 घंटे में 3 लीटर से ज्यादा पेशाब आती है। बार बार पेशाब आना एक अलग समस्या है। तो ये पेशाब में इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, और नॉर्मली स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है, या जो पेशाब की थैली होती है वो
2: हाँ
1: सेंसिटिव हो जाती है, ओवर रिएक्टिव हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हो सकती है।
2: तो
1: तो
2: वैसे ये कोई और शिकायत तो सर नहीं है, पेशाब की भरपूर आती है लेकिन कभी कभी आती है, हफ्ते में एक आध बार।
1: तो इसके बारे में अच्छे से जानने समझने के लिए बेहतर ये है कि एक बार ओपीडी में मिल लें, तो हम आपका चेकअप भी कर लेंगे, और उसके अलावा जो भी जरूरी दवाइयाँ या जांचें जो जरूरी लगेंगी वो भी आपको बता देंगे।
2: ठीक है सर, ठीक।
0: धन्यवाद कॉल करने के लिए
2: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब। हमारे श्रोता ने अपनी समस्या रखी कि इन्हें कभी कभी ऐसा होता है, तो क्या ये संभावना भी रहती है कि कभी कभी पेशाब बहुत ज्यादा आए?
1: हाँ, कई लोगों को ऐसी दिक्कत होती है कि उनको बार बार पेशाब जाना पड़ता है। कुछ लोग
0: जी
1: तो ओपीडी में आके ये बोलते हैं कि हर 5 मिनट में पेशाब जाना पड़ता है,
0: जी
1: और तो बड़ी दिक्कत होती है, कहीं ट्रेवल नहीं कर पाते और या कहीं मीटिंग में नहीं जा पाते। तो इन ये परेशानी कई बार किसी गंभीर अंदरूनी परेशानी का भी संकेत होती है, और कई बार सिर्फ ओवर एक्टिव ब्लैडर की वजह से भी हो सकती है।
0: अच्छा अच्छा
1: तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, प्रॉपर
0: अच्छा
1: एवेल्युएशन और ट्रीटमेंट कराना चाहिए।
0: जी, यानी एक समस्या की ओर संकेत है ये,
1: जी
0: इसे तुरंत इलाज की जरूरत है।
1: जी
0: डॉक्टर साहब, हमने आपसे जानने की कोशिश की थी, प्रश्न किया था कि क्या एक गुर्दे या एक किडनी के साथ भी जीवन यापन हो सकता है?
1: इस बारे में मैं बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर करता हूँ
0: जी,
1: कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें पैदाइशी एक ही किडनी
0: एक
1: होती
0: ही
1: है,
0: किडनी होती है।
1: उनका भी जीवन, अगर उस किडनी में कोई दिक्कत नहीं आती तो जीवन नॉर्मल रहता है,
0: अच्छा
1: आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे या लाइफ स्पैन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
0: अच्छा
1: कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें दो किडनी होती हैं, और पथरी की वजह से या किसी ट्यूमर की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से किडनी डैमेज हो जाती है,
0: जी
1: तो उन लोगों में अगर दूसरी किडनी ठीक है
0: हाँ
1: तो उनका उनकी जो लाइफ है वो नॉर्मल रहती है। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो अपने परिवार में किसी को गुर्दे की प्रॉब्लम होने पे अगर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है

0: तो वो अपनी किडनी डोनेट कर देते हैं
1: जी, दान
0: तो उनपे भी एक ही किडनी रह जाती है
1: जी।
0: तो उन लोगों की भी लाइफ नॉर्मल ही रहती है, बशर्ते कि जो किडनी है उसमें कोई इन्फेक्शन या पथरी या और कोई दिक्कत ना हो।
1: जी जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा ये जो दो किडनी होती हैं, जिस व्यक्ति के शरीर में दो किडनी है तो दोनों किडनी एक साथ काम करती हैं या फिर एक किडनी स्टेपनी के रूप में रहती है?
0: दोनों किडनी 24/7 रेगुलर काम करती हैं
1: जी,
0: इनमें कोई स्टेपनी वाला सिस्टम नहीं होता है।
1: अच्छा
0: जी, अगर एक किडनी कमजोर हो जाती है किसी वजह से तो दूसरी किडनी उसका भार थोड़ा सा अपने ऊपर ले लेती है और वो ओवर एक्टिव हो जाती है
1: जी।
0: ये कंपेंसेशन होता है ताकि हमारी शरीर की जो फिजियोलॉजी है, जो होम्योस्टेसिस है, वो मेंटेन रहे।
1: जी जी अच्छा, अगर एक किडनी किसी की डोनेट कर दी या खराब हो गई या जन्मजात एक किडनी है किसी की, तब तो एक किडनी पे बहुत लोड रहता होगा, डबल काम करना पड़ता होगा उसे।
0: जी, लेकिन उससे आपकी जीवन की क्वालिटी पे या लॉन्गेविटी यानी आप कितने साल जी रहे हो
1: जी,
0: इस चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
1: जी जी यानी एक किडनी के साथ भी आदमी सुचारू रूप से स्वस्थ जीवन जी सकता है।
0: बिल्कुल
1: जी अच्छा, ये और बताइए डॉक्टर साहब कि किडनी खराब होने के क्या संकेत होते हैं, क्या लक्षण?
0: आमतौर पे किडनी की बीमारी को एक साइलेंट डिजीज बोला जाता है क्योंकि जब तक किडनी 80-90% डैमेज नहीं होती है
1: जी,
0: तब तक हमें किडनी की बीमारी के लक्षण मोस्टली नहीं आते।
1: 80% डैमेज होने के बाद तक
0: लक्षण पता चलते हैं।
1: अच्छा,
0: तो जो लक्षण क्या हो सकते हैं, देखिए एक तो हो गया कि आपको बार बार पेशाब आ रहा है
1: जी,
0: या पेशाब कम आ रहा है या पेशाब में झाग आ रहा है या ब्लड आ रहा है या भूख लगना कम हो गई, सांस फूलने लग गई, बार बार खून की कमी होने लग गई या आपको दौरे पड़ने लग गए या सांस उखड़ने लग गई,
1: जी
0: ये सारे लक्षण किडनी की बीमारी के आमतौर पे होते हैं।
1: पेशाब में झाग आना भी क्या किडनी की बीमारी की ओर संकेत करता है?
0: जी,
1: ये किस तरह की बीमारियां हैं, एक एक करके हम चाहेंगे हमारे श्रोताओं को आप बताइएगा, अगर किसी को पेशाब में झाग आता है तो ये किस तरह की बीमारी हो सकती है किडनी की?
0: हमारी किडनी में एक छलनी होती है
1: जी
0: जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन।
1: अच्छा,
0: इस छलनी का काम होता है अच्छी चीजों को शरीर में रोक के रखना
1: जी,
0: और जो वेस्ट मटेरियल है, जो गंदगी है, उसको शरीर से बाहर निकालना।
1: जी,
0: जब किसी वजह से यह छलनी डैमेज हो जाती है तो पेशाब में प्रोटीन्स भी लीक होने लगती हैं और इन प्रोटीन्स की वजह से पेशाब में झाग बनता है।
1: अच्छा,
0: तो इसका मतलब पेशाब में अगर झाग बन रहा है तो हमें इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें अपने गुर्दा रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, पेशाब की जांच करानी चाहिए, पेशाब में प्रोटीन की जांच करानी चाहिए। और एक सबसे जरूरी बात यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि थोड़े बहुत झाग हर किसी को नॉर्मली बनते हैं।
1: अच्छा,
0: है ना, जैसे हम कई बार खड़े होकर टॉयलेट करते हैं या जो वेस्टर्न कमोड होते हैं उसमें टॉयलेट करते हैं
1: जी,
0: तो लगभग सभी को झाग बनते हैं।
1: अच्छा अच्छा,
0: जो नॉर्मल झाग होते हैं वो थोड़ी देर में अपने आप ही खत्म हो जाता है।
1: अच्छा,
0: जो किडनी डैमेज होने की वजह से झाग बनता है वो बहुत ज्यादा बनता है और काफी देर तक रहता है।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो ये एक तरह की पहचान है कि
0: जी ये पहचान है जिसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें झाग नॉर्मली बन रहे हैं या एबनॉर्मल है। और किसी भी शंका को दूर करने के लिए अपने डॉक्टर से मिलें, पेशाब की जांच करवाएं और अगर पेशाब में प्रोटीन आ रही है तो फिर ये गुर्दे के डैमेज होने की निशानी होती है, इसमें फिर फर्दर जांच की और इलाज की जरूरत होती है।
1: प्रोटीन की बात भी हम करेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन उससे पहले ये बताइएगा कि जो गुर्दे की बीमारियां आपने गिनाई हैं, ये सब बीमारियां होने की संभावना किन लोगों में सबसे ज्यादा होती है?
0: देखिए, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं,
1: जो शुगर की बीमारी से
0: शुगर की बीमारी के पेशेंट्स हैं,
1: जी,
0: ब्लड प्रेशर जिनका अनकंट्रोल्ड रहता है,
1: अच्छा,
0: या जो लिवर की बीमारी के पेशेंट हैं या कार्डियक पेशेंट्स हैं या वो पेशेंट जिनको ओवरवेट है, वजन बहुत ज्यादा है, ओबीज हैं,
1: मोटापा है
0: जी, या जिनका खान पान नियंत्रित नहीं है
1: जी,
0: या बहुत ज्यादा दर्द की दवाइयां, ओवर द काउंटर मेडिसिन, देसी दवाइयां या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन वो सारी ले रहे हैं, तो इन लोगों में रिस्क ज्यादा रहता है।
1: हम अपनी बात आगे भी जारी रखेंगे, एक श्रोता लाइन पर है।

0: लाल इनकी बात
1: हेलो।
0: सुनते हैं जी। रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना परिचय देते हुए प्रश्न बताएं
1: सर, मैं रमेश बात कर रहा हूँ।
0: जी। रमेश जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर, बाहनपुर बरेली से गांव
0: अच्छा, प्रश्न
1: है
0: प्रश्न क्या
1: सर।
0: है?
1: कृष्णन कृष्णन क्या है ये, गुर्दे संबंधित तो बीमारी है?
0: अगली आवाज डॉक्टर झा की, क्रिएटिनिन पूछना चाह रहे हैं शायद आप।
1: जी।
2: क्रिएटिनिन, देखिए, एक जो हमारे शरीर में मांसपेशियां होती हैं है ना, उनकी प्रोटीन होती है, मतलब मसल प्रोटीन होती है क्रेटिनाइन। नॉर्मली किडनी इसको कंट्रोल करती है। जब भी हम कुछ खाते हैं हमारी मसल्स बनती हैं, नई पुरानी टूटती हैं, तो इन सारी प्रोसेस में यूरिया, क्रेटिनाइन, ये सब जनरेट होते हैं। तो हमारी किडनी का काम होता है कि एक्स्ट्रा यूरिया क्रेटिनाइन को शरीर से फिल्टर करते रहना। जब किसी वजह से किडनी डैमेज होती है तो यूरिया क्रेटिनाइन बढ़ने लगते हैं। तो यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ना बीमारी नहीं है, ये एक बीमारी का मार्कर है।
0: और कुछ जानना है?
1: बस सर, यही जानना था। बहुत धन्यवाद सर।
0: जी जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम बात कर रहे थे उन बीमारियों की जो वजह बनती हैं गुर्दे को खराब करने की। आपने बताया कि हाई ब्लड प्रेशर भी उनमें से एक है। तो अगर बीमारी हृदय में है, दिल की बीमारी है, किडनी का इससे क्या लेना देना?
2: देखिए, जैसे एक परिवार होता है
0: जी
2: जिसमें सारे लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, दादा दादी होते हैं, माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है। घर में अगर किसी एक सदस्य को कोई परेशानी होती है तो पूरा घर परेशान हो
0: जी
2: जाता है।
0: जी जी
2: उसी तरह से ही हमारा शरीर भी होता है। तो शरीर के सारे अंग एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करते
0: जी
2: हैं।
0: बिल्कुल
2: तो जैसे हार्ट को अगर कोई परेशानी हुई
0: जी
2: तो हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना ना। तो हार्ट को परेशानी होने पे ब्लड सही से पंप नहीं होगा।
0: बिल्कुल
2: और किडनी का काम क्या है, ब्लड को प्यूरिफाई
0: प्योर करना।
2: करना, ब्लड
0: जी
2: खून की सफाई करना है
0: जी
2: ना।
0: जी जी
2: तो जब किडनी को खून ही नहीं सही से पहुंचेगा
0: बिल्कुल
2: तो किडनी की जो खून की सफाई है वो रुक जाएगी।
0: जो, इसलिए हाई बीपी में किडनी खराब होने की
2: हाँ,
0: गुंजाइश बढ़
2: मतलब
0: जाती
2: हार्ट
0: है।
2: की जो परेशानियां हैं उनमें इस तरह से किडनी का इन्वॉल्वमेंट
0: जी
2: होता
0: जी
2: है।
0: अच्छा, डायबिटीज के मरीजों में किस तरह से ये बीमारियां बढ़ती हैं गुर्दे की?
2: देखिए, ज्यादातर डायबिटीज वाले पेशेंट्स, मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ,
0: जी
2: क्योंकि डायबिटीज भी एक साइलेंट डिजीज की तरह से है जिसके लंबे टाइम तक कोई साइड इफेक्ट नहीं आते।
0: जी
2: इसलिए हम में से ज्यादातर लोग
0: जी
2: उसको बहुत हल्के में लेते हैं। उनकी शुगर 200, 250, 300 चल रही होती है तो उन्हें लगता है मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही तो मुझे कुछ करने की जरूरत
0: जरूरत नहीं
2: नहीं
0: है।
2: है।
0: जी।
2: तो होता क्या है, आपका खून तो मीठा हो गया।
0: जी
2: जो शुगर नॉर्मली खाली पेट की 80 से 110, खाना खाने के बाद 100 से 140 के अंदर होनी चाहिए, वो आपकी 200, 250 ऐसे चल रही है। तो वो शुगर एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बनाती है
0: अच्छा
2: जिनको हम शुद्ध भाषा में फ्री रेडिकल्स बोलते हैं।
0: अच्छा अच्छा
2: ये जनरेट होते हैं और ये आपकी धीरे धीरे पहले नसों को खराब करते हैं। अब क्योंकि शरीर के लिए सबसे जरूरी चीज है ब्लड सप्लाई।
0: बिल्कुल
2: ब्लड सप्लाई होती है नसों के थ्रू।
0: जी
2: जब आपकी नसें ही कमजोर होने लग जाएंगी तो सारे जो अंग हैं वो प्रभावित होने लगते हैं, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो आंखें हो। जैसे आपने सुना होगा कि शुगर के मरीजों में धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम हो जाती है,
0: जी
2: लिवर की परेशानी हो जाती है, हार्ट अटैक होता है, ऐसे ही किडनी भी अफेक्ट होती है। तो धीरे
0: जी
2: धीरे किडनी की नसें सिकुड़ने लगती हैं। फिर पहले किडनी से प्रोटीन फिल्टर होना स्टार्ट होता है। अगर उस समय भी हम कोई एक्शन नहीं लेते तो धीरे धीरे क्रिएटिनिन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है।
0: ओहो, तो ये जो डायबिटीज है ये भी गुर्दे की बीमारी के पीछे बहुत बड़ी वजह बन जाती है।
2: जी, आज के वक्त में दुनिया की सबसे जो बड़ी बीमारी या सबसे मेन कारण है वो किडनी की बीमारी का डायबिटीज ही है।
0: अच्छा, तो डायबिटीज जिन लोगों को है उन्हें तो बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है।
2: जी बिल्कुल।
0: जी, कोई भी लक्षण अगर दिख रहा है तो तुरंत किडनी स्पेशलिस्ट को
2: और
0: दिखाने की
2: लक्षण
0: जरूरत है
2: नहीं भी दिख रहा है तब भी
0: तब
2: अपने
0: भी।
2: शुगर कंट्रोल रखें और
0: जी
2: रेगुलर फॉलोअप, रेगुलर जांच जरूर कराते रहना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जांच की बात है डॉक्टर साहब, तो जो गुर्दे से संबंधित बीमारियां हैं या गुर्दे की हेल्थ कैसी है, इस बात की जांच कब और क्यों करानी चाहिए?
2: देखिए, जैसा मैंने बताया कि वो सारे मरीज जो

0: हाई रिस्क वाली कैटेगरी में है गुर्दे की बीमारी के लिए। जैसे कि फिर से बता दूं, जो कि ओवरवेट हैं, डायबिटिक हैं, जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता, हार्ट के पेशेंट हैं, लीवर के पेशेंट्स हैं, या यूरिन में इन्फेक्शन है, पथरी है
1: जी
0: ना, तो वो सारे लोग हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं।
1: जी जी
0: तो ऐसे सारे लोगों को अपने किडनी की हेल्थ जानने के लिए एटलीस्ट साल में या 6 महीने में जैसी जरूरत हो उस हिसाब से टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अब बात आती है वो टेस्ट हैं कौन
1: कौन
0: से।
1: से? बिल्कुल।
0: तो पहला अल्ट्रासाउंड।
1: अच्छा
0: अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं कि किडनी का साइज कैसा है
1: जी जी
0: और किडनी की जो इकोजेनेसिटी होती है यानी चमक बोलते हैं वो कैसी है ना, और किडनी में कोई पथरी तो नहीं है,
1: जी जी
0: ठीक है। और उसके अलावा फिर एक टेस्ट होता है यूरिन टेस्ट यानी पेशाब की जांच।
1: जी
0: तो पेशाब की जांच में हम देखते हैं कि पेशाब में कोई प्रोटीन लीक तो नहीं हो रहा, पेशाब में ब्लड तो नहीं आ रहा, कोई क्रिस्टल्स तो नहीं आ रहे है ना, और कोई कास्ट तो नहीं आ रहे, बहुत सारी चीजें। इसके अलावा जो टेस्ट है वो है यूरिया एंड क्रिएटिनिन।
1: अच्छा
0: तो जो हम GFR या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं कि हमारी किडनी कितने परसेंट काम कर रही है,
1: अच्छा
0: वो क्रिएटिनिन से
1: पता लगता है।
0: डिसाइड होता है।
1: जी
0: जी, ये सारे टेस्ट होते हैं, मतलब बेसिकली 3 टेस्ट हो गए,
1: जी जी
0: क्रिएटिनिन, यूरिन, अल्ट्रासाउंड।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, अल्ट्रासाउंड में आपने बताया कि किडनी का साइज, उसकी चमक और गुर्दे के अंदर कहीं पथरी तो नहीं है, ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। क्या एक्सरे भी कराने की जरूरत पड़ती है कभी?
0: कुछ केसेस में एक्सरे की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कहीं पे पथरी की संभावना लग रही है, अल्ट्रासाउंड में नहीं दिख रही पथरी। तो कुछ पथरियां ऐसी होती हैं किडनी की जो एक्सरे में ज्यादा अच्छी दिखती हैं, अल्ट्रासाउंड में उतनी अच्छी नहीं दिखती, तो उस केस में जरूरत पड़ती है। नहीं तो अल्ट्रासाउंड जो है एक प्राइमरी और बेहतरीन जांच है किडनी की स्ट्रक्चर देखने के लिए।
1: जी जी रूटीन चेकअप की बात आप लोग करते हैं सर, तो रूटीन में अगर अल्ट्रासाउंड कराने की बात है तो वो कितने समय अंतराल पे दोबारा करने की जरूरत होती है?
0: ये इस बात पर निर्भर करता है कि जब हमने पहली बार अल्ट्रासाउंड कराया
1: जी
0: उस समय उसमें क्या क्या चेंजेस थे।
1: थी अच्छा
0: जी
1: अगर कोई समस्या है तो फिर दोबारा जल्दी कराने की आवश्यकता होगी,
0: जी।
1: और अगर किडनी स्वस्थ है तब भी क्या हमें दोबारा अल्ट्रासाउंड
0: किडनी
1: की जरूरत
0: स्वस्थ
1: है?
0: है तो हमें ये देखना होता है कि पेशेंट की एज क्या है, उसको रिस्क फैक्टर्स कितने हैं,
1: अच्छा
0: फिर उस हिसाब से जो जांचों की फ्रीक्वेंसी है
1: जी,
0: वो हम डिसाइड करते हैं।
1: कोई 50 वर्ष का व्यक्ति है जिसकी आयु 50 वर्ष है तो उसके लिए क्या सुझाव है आपका, कितने समय अंतराल पे उसे
0: इनको हम ये सुझाव
1: है?
0: देते हैं कि एटलीस्ट साल में एक बार आप अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं,
1: जरूर करवा लें। अच्छा इसके बाद आपने दूसरी जांच बताई है डॉक्टर साहब, क्रिएटिनिन की। क्रिएटिनिन जो है वो आपने बताई दिया क्या होता है और क्या चीजें होती हैं, क्या डिफॉर्मेलिटीज हो सकती हैं शरीर में, ये क्रिएटिनिन की जांच डॉक्टर साहब खून से होती है या फिर कोई और तरीका भी है इसे जानने का?
0: क्रिएटिनिन एक ब्लड टेस्ट है
1: जी
0: तो ब्लड से ही उसकी जांच होती है।
1: नॉर्मल कंडीशन अगर कही जाए, नॉर्मल स्थिति कही जाए क्रिएटिनिन की, तो वो कितनी होती है? क्योंकि कहीं होता है 0.7 तो कहीं 0.6 तो कहीं 1 अबव भी होता है, 1 से अबव तो किसी का 4-5 तक हो जाता है।
0: देखिए ये थोड़ा वेरिएशन लैब टू लैब होता है,
1: अच्छा
0: इस बात पे डिपेंड करता है कि जो लैब है वो क्या रिएजेंट यूज कर रही है,
1: अच्छा
0: है ना, उसका कैलिब्रेशन कैसा है, स्टैंडर्डाइजेशन कैसा है,
1: जी जी
0: उस हिसाब से जो थोड़ा वेरिएशन है वो आता है। जैसे किसी किसी की रेंज क्रिएटिनिन की 0.6 to 1 होती है,
1: अच्छा
0: किसी की 0.8 to 1.2 होती है, किसी किसी की रेंज 0.8 to 1.3 होती है, तो वो उस लैब की रेफरेंस रेंज पे डिपेंड करता है।
1: जी जी
0: नॉर्मली हम ये मानते हैं कि जो क्रिएटिनिन है वो 0.6 से 1 के बीच में होना चाहिए।
1: अच्छा
0: और हालांकि देखिए किडनी फंक्शन के लिए आइडियल मार्कर हम GFR को ही मानते हैं,
1: अच्छा
0: तो कभी क्रिएटिनिन 1 देख के ये निश्चिंत नहीं होना चाहिए कि नहीं किडनी ठीक है, हमें अपना GFR कैलकुलेट करना चाहिए। और क्योंकि GFR आपके बॉडी वेट, बॉडी सरफेस एरिया, हाइट, उन सारी चीजों को कंसीडर करके तब डिसाइड होता है। तो सेम क्रिएटिनिन लेवल पे अगर आपका एज और बॉडी वेट वो सब डिफरेंट है तो आपका GFR डिफरेंट हो सकता है।
1: जी ये GFR क्या है सर?
0: GFR इज ग्लोमेर

0: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट।
1: जी
0: तो ग्लोमेरुलस जो होता है वो किडनी का एक मेन यूनिट होती है, नेफ्रॉन
1: जी जी
0: उसका पार्ट होता है। तो ग्लोमेरुलस में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है,
1: जी
0: वहां से फिर वो ट्यूबुल्स में आते आते
1: जी
0: फिर रीनल पेल्विस में आता है और वहां से यूरेटर में और इस तरह से बाहर आता है।
1: बाहर आता है जी
0: तो जो जीएफआर होता है वो हमारी किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं,
1: जी जी
0: उनका कलेक्टिव फंक्शन ग्लोमेरुलर
1: अच्छा
0: फिल्ट्रेशन रेट होता है।
1: जी जी
0: तो जब किडनी डैमेज होती है तो वो नेफ्रॉन्स डैमेज होते हैं, जिस
1: अच्छा
0: वजह से हमारा जीएफआर कम होता है।
1: जी जी काहे से होती है, किस तरह से होती है ये जांच सर, GFR की?
0: जीएफआर की जांच दो तरह से होती है, एक होती है ईजीएफआर, एक होती है एमजीएफआर।
1: अच्छा
0: ईजीएफआर होती है एस्टीमेटेड जीएफआर, है ना,
1: अच्छा
0: जो कि हम किसी भी ऑनलाइन कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक होती है मेजर्ड जीएफआर।
1: अच्छा
0: मेजर्ड जीएफआर के लिए हमें न्यूक्लियर स्कैन कराने होते हैं, जैसे कि डीटीपीए स्कैन हो गया।
1: अच्छा
0: तो उसमें हर किडनी का इंडिविजुअल फंक्शन भी हम पता कर सकते हैं। वैसे
1: अच्छा
0: तो जो ई जी एफ आर है उसमें तो दोनों किडनी का ही टोटल जी एफ आर हम बता सकते हैं।
1: जी
0: अलग किडनी मतलब लेफ्ट किडनी का जी एफ आर कितना है, राइट किडनी का कितना है, वो हम नहीं बता सकते।
1: एस्टिमेटेड बताते हैं
0: जी
1: सर, एस्टिमेटेड है। अच्छा डॉक्टर साहब, बाकी जांचें कोई पेशाब से होती है, कोई खून से होती है, कोई अल्ट्रासाउंड से होती है, तो ये GFR वाली जो जांच है ये ब्लड से होती है या फिर यूरिन से होती है, किस
0: जैसा
1: तरह से
0: मैंने
1: होती
0: बताया
1: है?
0: कि ई जी एफ आर सिर्फ उसके लिए हमें क्रिएटिनिन की रिपोर्ट चाहिए होती
1: अच्छा
0: है ना, और जो मेजर्ड जी एफ आर है उसके लिए एक न्यूक्लियर स्कैन होता है,
1: अच्छा
0: न्यूक्लियर स्कैन के थ्रू होती है।
1: जी,
0: तो
1: एक तरह
0: जिसकी
1: से
0: सुविधा अभी फिलहाल बरेली में नहीं है, तो
1: अच्छा,
0: अगर जरूरत पड़ती है तो हमें पेशेंट्स को दिल्ली या लखनऊ भेजना पड़ता है।
1: मरीज को जाना पड़ेगा वहाँ,
0: जी
1: तब उसकी वो जांच होगी।
0: जी
1: क्योंकि ये आप बता रहे हैं स्कैन, तो स्कैन का मतलब तो हुआ एक खास तरह की फोटोग्राफी, या ये कहें कि स्लाइड्स वगैरह जो बनती हैं
0: जी जी
1: उस तरह से
0: बिल्कुल
1: होता है। तो ये जांच भी बड़ी महत्वपूर्ण है डॉक्टर साहब। चूंकि यूरिन रूटीन टेस्ट कराते हैं आप लोग, तो ये यूरिन रूटीन टेस्ट क्यों कराया जाता है, इसकी क्या उपयोगिता है?
0: यूरिन रूटीन टेस्ट डिपेंड करता है कि हर पेशेंट का नहीं कराया जाता है,
1: जी
0: पेशेंट के कंप्लेंट्स पे डिपेंड करता है ना।
1: जी
0: और कई बार ये हमारे यूरिन से रिलेटेड पेशेंट की परेशानियां नहीं होती हैं, लेकिन हमारे रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन का भी पार्ट होता है। जैसे आपके पास कोई पेशेंट आता है कि सर मैं 5 साल से डायबिटिक हूँ और मुझे पेशाब में झाग बनते हैं, या मेरा क्रिएटिनिन 1.8 हो गया है ना, तो आप पेशाब की जांच करके ये देखते हो कि पेशाब की जांच में प्रोटीन तो नहीं लीक हो रहा है
1: अच्छा
0: ना, पेशाब की जांच में ब्लड तो नहीं लीक हो रहा है, या कई बार पेशेंट बोलता है कि सर पेशाब में जलन हो रही है,
1: जी जी
0: पेशाब लग के आ रही है, तो वो कंफर्म होता है कि पेशाब में पस आ रही है कि नहीं।
1: इसके अलावा जो अगर हम यूरिन रूटीन में जो प्रोटीन की बात आप लोग करते हैं कई बार, क्योंकि जांच में जो रिपोर्ट आती है उसमें प्रोटीन लिखा होता है, प्रोटीन जा रहा है, तो ये प्रोटीन जाना किस बात का संकेत है, और क्या कोई बड़ी समस्या होने को होती है तब ऐसा होता है?
0: जी प्रोटीन अगर पेशाब में लीक हो रहा है तो दो चीज़ें हैं, ये टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है।
1: जी
0: तो टेम्परेरी जैसे कि अगर किसी को पेशाब में इन्फेक्शन हो गया, या किसी को फीवर आया, या किसी ने बहुत हैवी एक्सरसाइज कर ली, तो भी टेम्परेरीली प्रोटीन यूरिन में बढ़ जाता है।
1: जी
0: लेकिन रिपीट कुछ टाइम के गैप के बाद अगर हम रूटीन टेस्ट कराते हैं
1: जी
0: तो वो प्रोटीन गायब हो चुकी होती है।
1: अच्छा
0: लेकिन अगर परसिस्टेंट है तो वो इस बात का संकेत है कि किडनी में डैमेज हुआ है, डैमेज कर सकती है। तो वो डिपेंड करता है इलाज बीमारी के ऊपर।
1: अच्छा सिकुड़ने की बात कही थी आपने भी डॉक्टर साहब, स्वीकार किया था कई बार गुर्दे सिकुड़ जाते हैं, किडनी सिकुड़ जाती है, तो ये किडनी में जो सिकुड़न है इसके पीछे क्या वजह होती है, किस तरह की बीमारी है, और क्या सिकुड़ी हुई किडनी या गुर्दे ठीक भी हो सकते हैं?
0: ये देखिए, किडनी सिकुड़ने का एक मोटा मोटा सा मतलब ये होता है कि जो किडनी की परेशानी है वो पुरानी है।
1: जी
0: किडनी अचानक से या रातों रात नहीं सिकुड़ती है,
1: जी
0: इसके लिए महीनों सालों लगते हैं।
1: अच्छा
0: है ना, तो पहला तो अंदाज ये लगता है

0: कि भाई किडनी की जो परेशानी है वो पुरानी है। किडनी सिकुड़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं।
1: जी
0: इवन जो लोग लंबे टाइम दर्द की दवाइयाँ लेते हैं उनसे भी किडनी सिकुड़ जाती हैं
1: दर्द की दवाइयों से
0: जी, और या कुछ ऑल्टरनेटिव मेडिसिंस लेते हैं जिनके बारे में हमें कंफर्म नहीं है कि उसमें सॉल्ट क्या है। कई बार ऐसी दवाइयों में हैवी मेटल्स होते हैं उनसे किडनी सिकुड़ जाती हैं, या जैसा मैंने बताया कि किसी का अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है, हाइपर और डायबिटीज़ है, तो इन सब से भी किडनी सिकुड़ जाती है। डायबिटीज़ की वजह से शुरुआत में किडनी पे सूजन आती
1: अच्छा
0: है ना, और अगर उस फेज में भी पेशेंट कोई स्टेप नहीं लेते
1: जी
0: तो धीरे धीरे किडनी का डैमेज जब प्रोग्रेस करने लगता है तो किडनी छोटी होने लगती है।
1: जी जी चलते चलते क्या खास सलाह है, क्या खास सुझाव है हमारे श्रोताओं के लिए?

0: जी, चलते चलते क्या खास सलाह है, क्या खास सुझाव है हमारे श्रोताओं के लिए आपका, ताकि हमारे श्रोता भी समझें कि उनकी किडनी वास्तव में है क्या?
1: देखिए, किडनी हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही जरूरी अंग है। जैसा मैंने बताया कि ये सिर्फ पेशाब नहीं बनाती, ये बहुत सारे काम करती है ना। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो हाई रिस्क में हैं किडनी की बीमारी के लिए, तो वो पहली तो अपना हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। नमक का इंटेक कम रहना चाहिए, वजन कंट्रोल रहना चाहिए। अगर डायबिटिक है तो शुगर कंट्रोल रखें, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, और कार्डियक प्रॉब्लम या लिवर की प्रॉब्लम है तो रेगुलर अपना चेकअप कराएं। इसके अलावा कोई भी ऐसी दवाई या ओवर दी काउंटर मेडिसिन या पेन किलर्स लंबे टाइम तक ना लें जो किडनी को डैमेज कर सकती हो।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। अब जोड़ रहे हैं आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से फॉर स्पेशल प्रोग्राम चीयर फॉर भारत इन एशियन गेम्स।

0: कहते हैं कि जब हौसलों में फौलाद और रगों में जीतने का जुनून हो तो कठिन से कठिन चुनौती घुटने टेक देती है। जापान के आइची नागोया की धरती पर आयोजित होने वाले एशियन गेम्स 2026 में इसी की वानगी पेश करने के लिए भारतीय दल तैयार है। इस बार उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी पिछली बार की तरह न सिर्फ पदकों का शतक पार करेंगे बल्कि मेडल्स के नंबर्स को उससे भी आगे ले जाएंगे। हमें इस बार सभी खेलों में न सिर्फ पदक बल्कि स्वर्णिम सफलता की उम्मीद है। हमारे जांबाज एशिया के सबसे बड़े खेल मंच पर तिरंगा लहराने और पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ने के दृढ़ संकल्प के साथ मुकाबले को तैयार है। 4 सालों की कठिन तपस्या और कड़ी चूर मेहनत से निकले पसीने की बूंदों से आची नागोया की जमीन को सींचा जाएगा और फिर उससे सोने चांदी और कांसे के पदकों की फसल लहलाएगी। इन्हीं उम्मीदों और आशाओं के साथ आकाशवाणी की तरफ से पेश है विशेष श्रृंखला चीयर फॉर भारत। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पदकों की सबसे बड़ी उम्मीद शूटिंग, कुश्ती, बॉक्सिंग, तीरंदाजी और स्क्वाश की। इन खेलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान, भारत की युवा महिला पहलवान सारिका मलिक और खेल पत्रकार अभिषेक रॉय। हमारे साथ सारिका मलिक मौजूद हैं तो सवालों की शुरुआत कुश्ती से ही करते हैं। सारिका, चाहे एशिया का सबसे बड़ा खेल मंच एशियन गेम्स हो या फिर दुनिया का सबसे बड़ा खेल मंच ओलंपिक, कुश्ती एक ऐसा खेल है जिसमें हमें पदकों की सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है। पिछली बार एशियन गेम्स में हमारे पास एक सिल्वर समेत कुल 6 पदक थे। अब खुद कई प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम की सदस्य रही हैं और अपने साथी खिलाड़ियों की प्रतिभा को अच्छी तरह से जानती हैं। इस बार कुश्ती में क्या उम्मीदें हैं?
1: इस बार कुश्ती से हमें पहले की तरह ही बहुत उम्मीदें हैं। भारत में कुश्ती खेल जो है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण खेल माना जाता है, बहुत ही फेमस खेल है। ओलंपिक्स में और एशियन गेम्स में हमेशा ये मेडल देता है। हर ओलंपिक्स में आप देख सकते हैं 2004 से कुश्ती ने मेडल दिए हैं और एशियन गेम्स में भी हर साल 4 से 5 मेडल तो कम से कम कुश्ती देता ही है। इस बार भी हमारी जो टीम है वो बहुत ही शानदार तैयार हुई है, बहुत ही अच्छे प्लेयर्स उसमें हैं। आप बात कर सकते हैं निशा दहिया की, जो कि आपने ओलंपिक्स में भी देखा था, उनको इंजरी जरूर हुई थी ओलंपिक्स में लेकिन उनका जो प्रदर्शन था वो बहुत ही शानदार था। आप बात कर सकते हैं सुजीत कलकल की, जो कि अभी फिलहाल वर्ल्ड नंबर 1 चल रहे थे, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडेंट आप बोल सकते हैं, वो रेसलिंग में हैं और उनसे पूरी उम्मीद है कि वो गोल्ड ही लेके आएंगे। आप देख सकते हैं दीपक पूनिया, एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी जो हैं, और मानसी हलावत है, मनीषा भनवाला है, प्रिया मलिक हैं जो कि 2 बार की जूनियर वर्ल्ड चैंपियन हैं। तो टीम हमारी बहुत ही अच्छी है और हम हमेशा की तरह उनसे बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं।
0: तो अभिषेक, कुश्ती दल में होंगजू एशियन गेम्स के मेडलिस्ट दीपक पूनिया, अमन सहरावत और अंतिम पंघाल फिर से मौजूद हैं। आपको लगता है कि आची नागोया में गोल्ड मेडल का बैरियर टूटेगा और हमारे खाते में स्वर्णिम सफलता भी आएगी?
2: बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने पहले भी

0: मेडल इस प्लेटफॉर्म में ये जीत चुके हैं, तो इनको पता है कि किस तरह का कंपटीशन होगा, क्या लेवल है। और जहां तक अंतिम पंगल का बात करें तो वो 2-टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट है, उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। आई मीन पेरिस ओलंपिक्स में उनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से उन्होंने टर्न अराउंड किया है, लगातार वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है इंटरनेशनल लेवल पे। दीपक पुनिया एक नए वेट क्लास में आ रहे, वो 86 में थे, अभी इस बार वो ऊपर 97 में आ रहे हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म में काम आएगा। सुनील कुमार जो ग्रीको रोमन में 87 में, वो भी काफी अच्छा खिलाड़ी है, वो भी मेडल जीत चुके थे लास्ट टाइम, तो ये एक काफी एक्सपीरियंस और यंग टीम का कॉम्बिनेशन है रेसलिंग में।
1: सारिका, एशियन गेम्स से पहले पहलवानों की तैयारियों पर खास ध्यान दिया गया। उन्हें न सिर्फ एक्सपोजर के लिए बाहर भेजा गया बल्कि विदेशी जमीन पर ट्रेनिंग भी दी गई और फॉरेनर कोच ने भी हमारे पहलवानों को ट्रेनिंग दी। इसका कितना फायदा इस बार मिलेगा?
2: बिल्कुल, इसका काफ़ी फ़ायदा आपको इस बार एशियन गेम्स में देखने को मिलेगा। मैं खुद नेशनल कैंप में रह रही हूँ और ट्रेनिंग कर रही हूँ नेशनल कैंप में, तो हमारे गर्ल्स रेसलिंग में फॉरेन कोच हैं, जापनीज कोच अकाइशी, जो कि बहुत टेक्निकल हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे वर्ल्ड स्टेज पे जापान जो है वो वुमेन्स में लीड करता है। आप वर्ल्ड चैंपियनशिप देख सकते हैं, आप ओलंपिक्स देख सकते हैं, तो जापान के 2 से 3 गोल्ड आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो जापानीज कोच हमें उनकी टेक्टिक्स बताते हैं, टेक्निक्स बताते हैं, कैसे उनके साथ कॉम्पीट करना है, क्या उनकी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी हमें लेके चलनी है, अपना ट्रेनिंग प्लान जैसे हमारा चेंज किया गया है। उनका मानना है कि जैसे बाउट्स अगर दिन में होती हैं तो हमारी ट्रेनिंग भी दिन में ही होनी चाहिए, जो हमारी बाउट प्रैक्टिसेस होती हैं।
1: अच्छा,
2: स्पीड वर्क पे उन्होंने बहुत फोकस किया है, एंड्योरेंस पे। साथ ही हमारे हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर इयान बटलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं हर तरह से। तो ऐसे ही फ्री स्टाइल में आप देख सकते हैं कोच शाको हैं। सेम अभी जो फ्री स्टाइल की टीम थी वो आर्मेनिया ट्रेनिंग के लिए गई थी, ट्रेनिंग कैंप था, बहुत अच्छा फॉरेन एक्सपोजर था। उसके बाद रशिया में उन्होंने एक टूर्नामेंट खेला जिसमें उन्हें रशियन रेसलर्स के साथ कॉम्पीट करने का मौका मिला। काफी अच्छी परफॉर्मेंस वहां पे रही, सुजीत कलकल ने वहां पे गोल्ड जीता, विकास कालीरमन ने ब्रॉन्ज जीता, और उनके साथ ही बहुत सारे इंडियन रेसलर्स को वहां पे फॉरेन एक्सपोजर मिला और प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। सेम अगर हम देखें तो ग्रीको रोमन की जो टीम है उसके अंदर भी काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। आप सुमित मलिक को देख सकते हैं, सुनील कुमार को देख सकते हैं, काफी अच्छे प्लेयर्स हैं। उनके साथ भी कोच गोगी जो हैं वो लगे हुए हैं उनकी ट्रेनिंग कराने के लिए। तो बहुत ही अच्छा एक्सपोजर, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग, बहुत ही अच्छी प्रिपरेशंस जो हैं वो रेसलर्स की चल रही हैं।
1: अभिषेक, एशियन गेम्स में हमारा 15 सदस्यीय कुश्ती दल भाग लेने जा रहा है। इसमें पुरुष फ्री स्टाइल में अमन सहरावत 57 किलोग्राम, सुजीत कलकल 65 किलोग्राम, सागर जगलान 74 किलोग्राम, दीपक पूनिया 97 किलोग्राम, रजत रूहल 125 किलोग्राम भार वर्ग में शामिल हैं। वहीं महिला फ्री स्टाइल में दीपांशी 50 किलोग्राम, अंतिम पंगाल 53 किलोग्राम, मनीषा भानवाला 57 किलोग्राम, मानसी अहलावत 62 किलोग्राम, निशा दहिया 68 किलोग्राम, प्रिया मलिक 76 किलोग्राम भार वर्ग में शिरकत करेंगी। ग्रीको रोमन शैली में सुमित दलाल 60 किलोग्राम, अमन बरोनिया 77 किलोग्राम, सुनील कुमार 87 किलोग्राम और नितेश सिवाच 97 किलोग्राम भार वर्ग में देश की चुनौती रखेंगे। लेकिन इतने पहलवानों की मौजूदगी में महिला दल की ज्यादा तगड़ी दावेदारी मानी जा रही है, इससे आप कितने सहमत हैं और वजह क्या है?
0: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारी वुमेन्स टीम कंसिस्टेंटली इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करते आ रही है और एक नया ब्रीड भी ऊपर आ रहा है। जैसे दीपांशी फोगाट 50 kg में है, 17 साल की है, उन्होंने ट्रायल्स में सबको सीजन्ड प्लेयर्स को हरा के एशियन गेम्स में अपनी दावेदारी पेश की है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि हमारा नेक्स्ट लेवल, क्योंकि हमें एले ओलंपिक्स भी देखना है, तो किस तरह से यंग ब्रीड हमारी परफॉर्मेंस कर रही है। तो अंतिम पंगाल तो है ही, निशा दहिया है, सीजन प्लेयर है, उनसे उम्मीद रहेगी, पर हमें ये भी देखना है कि ये जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, चाहे वो दीपांशी हो, मानसी अलावत हो, एज ग्रुप टूर्नामेंट्स में इंटरनेशनल लेवल पे ये जीत के आ रहे हैं, तो एशियन गेम्स में इनको एक पास एक बहुत बड़ा मौका है कि अपने आप को जो है किस लेवल पे ये देखती है और आगे कैसे इस परफॉर्मेंस को लेके जाती है। मेंस खिलाड़ियों में मैं अमन शेरावत की बात स्पेशली करना चाहता हूं, क्योंकि उनका जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है पेरिस ओलंपिक्स में, जब रेसलिंग एक बुरे दौर से गुजर रहा था, कैंप नहीं हो रही थी, फिर भी वो मेडल लेके आए हमारे लिए और उसके बाद से वो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। तो अमन शेरावत के पास एक्सपीरियंस है, 57 kg लोअर वेट कैटेगरीज में हमेशा फ्री स्टाइल में हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उनसे काफी उम्मीदें हैं। और सुजीत

0: कल कल 65 kg एक ऐसे कैटेगरी में है जो कि बजरंग पुनिया का कैटेगरी कहा जाता है, और बजरंग पुनिया के बाद अगर ऐसा कोई रेसलर आया है जो इतना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, वो सुजीत कलकल है, तो उनके लिए बहुत बड़ा मौका मैं मानता हूँ एशियन गेम्स में कि किस तरह से वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं।
1: एशियन गेम्स में कुश्ती में कंपटीशन का लेवल काफी तगड़ा होता है, और सारिका आमतौर पर किन देशों की कठिन चुनौती होगी और उनके खिलाफ हमारी क्या रणनीति होगी?
2: बिल्कुल, एशिया को जो है वो कुश्ती का हब माना जाता है। एशिया में सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको कुश्ती में देखने को मिलता है। एशियन नेशंस हैं जैसे जापान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना और इंडिया। ये बहुत ही तगड़े माने जाते हैं कुश्ती में, बहुत स्ट्रांग नेशंस हैं। इनकी जो टीम होती है वो काफी अच्छी होती है। आप मंगोलिया को भी ले सकते हैं। ये सारे देश काफी अच्छी टक्कर देते हैं। बहुत अच्छा कंपटीशन रहेगा जिसमें आप देख सकते हैं 50 किलो में यूई सुसाकी आपको कॉम्पीट करती नजर आएंगी, जो कि कई बार की वर्ल्ड चैंपियन है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ऐसे ही हर एक वेट में 57 kg में आपको देखने को मिलेगा कंपटीशन काफी अच्छा। 68 में भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंडर्स हैं, और 62 में भी मंगोलिया है, जापान है, 76 में किर्गिस्तान है। तो बहुत ही अच्छा कंपटीशन रहेगा, और जो मेडल की दावेदारी है वो इंडियन प्लेयर्स की ऐसे ही रहेगी, क्योंकि इंडिया की टीम मैं मानती हूँ कि अभी इन सब से ऊपर बढ़ के आ रही है। जापान को अगर कोई सबसे ज्यादा टक्कर दे सकता है तो वो अभी इंडिया की टीम है।
1: जी, और अभिषेक, कुश्ती से अब शूटिंग की तरफ चलें तो निशाने लगाने के इस खेल में हमारी सबसे तगड़ी दावेदारी है। प्रतियोगिता की बात करें तो मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में पार्थ राकेश माने, हिमांशु ढिल्लो, रुद्रांश पाटिल, विमेंस 10 मीटर एयर राइफल में इलावेनिल वलारिवान, सोनम उत्तम मस्कर, विदर्शा विनोद, मेंस 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार, रुद्रांश पाटिल, विमेंस 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में आशी चौक से विदर्शा के विनोद, तिलोत्तमा सेन, मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में केदारलिंग बी उचा गनवे, गौरव कमलजीत, विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में सुरुचि सिंह, ईशा सिंह, मनु भाकर, मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में अनिश बानवाला, विमेंस 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में ईशा सिंह, मनु भाकर, राही सरनोबत, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में केदारलिंग बी उचा गनवे, सुरुचि सिंह, मेन्स ट्रैप में किनान चेनाई, अहवर रिजवी, शपथ भारद्वाज, विमेंस ट्रैप में नीरू, मनीषा कीर, आशिमा अहलावत, मेंस स्कीट में अनंतजीत सिंह नरूका, भवतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान, और विमेंस स्कीट में पारिनाज धालीवाल, राजा ढिल्लो, महेश्वरी चौहान जैसे 30 शूटर्स विभिन्न वर्गों में शामिल हैं। युवा और अनुभवी खिलाड़ियों से भरे इस दल में किन खास पर नजरें रखनी चाहिए?
0: बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपने धर्मेंद्र जी। पहले तो यह बता दो कि शूटिंग एज ए स्पोर्ट हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है मल्टी डिसिप्लिनरी इवेंट्स कॉम्पिटिशन्स में, चाहे वो एशियन गेम्स हो, ओलंपिक्स हो। सबसे पहले हम लोग शूटर्स को हमारे देखते हैं कि ये कितने मेडल्स जीतेंगे। तो लास्ट टाइम भी जो हमारा 100 का छलांग हम लोगों ने मेडल टैली में पार किया था, उसमें शूटिंग का बहुत बड़ा एक योगदान था। 22 मेडल्स हम लोग लेके आए थे, उसमें से 7 गोल्ड मेडल है, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। उन 7 गोल्ड मेडल्स में आप देखिए तो एथलेटिक्स जो था हमारा सबसे टॉप में था, 28 मेडल्स आए थे, उसके बाद शूटिंग का नंबर है। तो इस बार भी हमें 100 से पार करना है तो शूटिंग टीम को अच्छा करना होगा। और इस बार मुझे ज्यादा होप्स इसलिए भी है क्योंकि उसके दो कारण हैं। एक कारण यह है कि इस साइकिल में अगर आप देखेंगे तो पिछले एशियन गेम्स के बाद जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ उसमें हमने शूटिंग में काफ़ी अच्छा किया। मनु भाकर 2 मेडल लेके आई और स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल 3 में मेडल जीता, 3 मेडल्स हमारे आए शूटिंग में। उसके बाद जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ लास्ट ईयर उसमें हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, हमने इंडिविजुअल कैटेगरीज में मेडल्स जीते, ऐश्वर्या प्रताप तोमर, ईशा, एलाविनिल, तो ये सारे जाएंगे इस एशियन गेम्स में कैरिंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हम लोगों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल के जैसे प्लेटफॉर्म में इंडिविजुअल में मेडल जीता है। ये उम्मीद है हमें कि पिछले बार जितना 22 मेडल था उससे हम लोग ज्यादा जीतेंगे इस बार।
1: अगर हांगजो एशियन गेम्स 2023 में हमारे शूटर्स ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पदक जीते नहीं थे बल्कि कह सकते हैं कि बटोरे थे, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज समेत कुल 22 पदक जैसी आपने बात की भारत की झोली में आए थे। अभिषेक, इस बार पदकों की संख्या से आगे निकलना हमारे निशानाबाजों के लिए खुद कितनी बड़ी चुनौती होगी?
0: चुनौती तो है क्योंकि शूटिंग एशियन लेवल पे एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें बहुत स्ट्रांग कंटेंडर्स है। पिस्टल में साउथ कोरिया बहुत स्ट्रांग है, चाइनीज शूटर्स है, तो बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है। बट हमारे शूटर्स कुछ कम नहीं है, हम लोगों ने प्रूव किया है। देखना यह है कि कि इंडिविजुअल कैटेगरी में हम लोग कितने मेडल्स इस बार जीतते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जितने मेडल्स जीते थे वो ज्यादा मेडल्स टीम कैटेगरी में

0: थे। तो टीम कैटेगरी ओलंपिक्स में नहीं है इस बार। हमारे शूटर्स का ये टारगेट है कि इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन्स में हम लोग ज्यादा मेडल लाए, ताकि उस तरह से हमारा आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप का ओलंपिक से क्वालिफिकेशन हो और फिर एले ओलंपिक्स का तक का टारगेट कर सके। तो यहाँ से हमारी जो है शुरू होती है एले ओलंपिक्स की प्रिपरेशन शूटर्स की। और बहुत सारे शूटर्स हैं जिनको पहला बार ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है खेलने के लिए। एक्चुअली मिक्स्ड है, नए प्लेयर्स काफी आए हैं और पुराने प्लेयर्स भी है, तो उम्मीद है काफी अच्छा प्रदर्शन रहेगा।
1: और सारिका, आप खुद युवा और देश की उभरती हुई पहलवान है और चोट की समस्या का सामना किया है। आपसे ये जानना चाहूंगा कि स्ट्रेंथ स्टेमिना के इस गेम कुश्ती में पहलवानों के लिए फिटनेस बनाए रखना कितना जरूरी होता है?
2: कुश्ती में फिटनेस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, ना सिर्फ कुश्ती में बल्कि हर एक स्पोर्ट्स में। मोस्टली अगर हम बात करें तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स की, जैसे बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, टाई कमांडो हो गया, जूडो हो गया, तो इनमें फिटनेस लेवल का बहुत आपको फर्क देखने को मिलेगा। फिटनेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपको, इसमें पावर भी चाहिए, एंड्योरेंस भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए। आपको बाउट लड़नी है कंटिन्यू कंटिन्यू, आपकी पूरी बॉडी की पावर लग रही है, आपको सांस भी चढ़ेंगे, आपका दम भी फटेगा, उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और एक बहुत ही अच्छा फिटनेस लेवल आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। अभी अगर हम रेसलर्स की बात करें तो रेसलिंग में हमारे जो कोचेस हैं और साथ में हमारे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के कोच भी हम फेडरेशन ने दिया हुआ है, तो उनके साथ हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका प्रॉपर हमारे पर ध्यान है कि हमारी फिटनेस लेवल है वो बनी रहे, डाइटिशियन हमारे साथ है, हमारी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिटनेस बनाए रखना, अगर आपकी फिटनेस अच्छी है तो आपको इंजरीज के चांसेस भी कम होंगे।
1: अभिषेक, भारत की तीरंदाजी टीम की बात करें तो पुरुष रिकर्व टीम में धीरज बोम्बदेवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगे, महिला रिकर्व टीम में कीर्ति शर्मा, कुमकुम मोहोद, अंकिता भगत शामिल हैं। वहीं पुरुष कंपाउंड टीम में साहिल जाधव, कुशल दलाल, गणेश मणि रत्नम तिरुमुरु और महिला कंपाउंड टीम में ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपर्थी, पृथिका प्रदीप का नाम शामिल है। कुछ दिन पहले धीरज बोम्बदेवरा ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वो इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बने। धीरज की इस कामयाबी से भारतीय कैंप का जोश कितना हाई होगा?
0: बहुत ज्यादा हाई होगा, क्योंकि जब एक आपका खिलाड़ी वर्ल्ड कप फाइनल जैसे प्लेटफॉर्म से जीत के आता है, जिसमें सिर्फ टॉप 8 शूटर्स आर्चर्स खेलते हैं और वो आपके साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो एक मोटिवेशन आ जाता है कि एक हमारा आर्चर जाके इतने बड़े लेवल पे जीता है। और वहां से डायरेक्टली धीरज मेक्सिको से जापान पहुंच चुका है और ट्रेनिंग कर रहा है, और एक्सपीरियंस काफी है। पेरिस ओलंपिक्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था धीरज का, तो धीरज से उम्मीद है कि वो टीम को आगे लेके चलेगा, क्योंकि इस बार का जो टीम है आर्चरी का वो काफी नया टीम है। 3 प्लेयर ही जो है लास्ट एशियन गेम्स से इस बार खेल रहे हैं, उसमें से धीरज है, ज्योति सुरेखा है कंपाउंड वुमेन में, अंकिता भगत है, बाकी सारे नए आर्चर्स हैं। और लास्ट टाइम का जो आर्चरी का हमारा परफॉर्मेंस था वो काफी अच्छा था, 9 मेडल्स हमारे आए थे, हम लोगों ने कंपाउंड में स्वीप कर गए थे हम लोग। इस बार इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आर्चरी में एले क्वालिफिकेशन भी इस यहाँ से होगा, तो वो हमारी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ से बर्थ निकाल सके ओलंपिक्स का भी।
1: जी, और निशाने साधने के पारंपरिक खेल तीरंदाजी में पिछले एशियन गेम्स में भारत के धनुर्धरों ने 5 स्वर्ण समेत 9 पदक जीते थे। टीम कॉम्बिनेशन को देखते हुए क्या लगता है इस बार हम उससे आगे निकलेंगे?
0: हमें आगे निकलना चाहिए क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी है और कुछ नए भी है। ज्योति सुरेखा की अगर बात करें तो बहुत उनका एक्सपीरियंस है, उनके साथ हम लोगों ने, ज्योति और ओजस ने लास्ट टाइम मिक्स्ड फॉर्मेट में कंपाउंड में गोल्ड मेडल जीता था, वो साउथ कोरिया की टीम को हराया था। इस बार उनके साथ साहिल जाधव है जो कि नए प्लेयर है, लेकिन वो काफी टैलेंटेड है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उनका गोल्ड मेडल है, और यही वो फॉर्मेट है जहां पे हमारा एले ओलंपिक से क्वालिफिकेशन है। तो उम्मीद है अगर उस तरह का हम लोग परफॉर्मेंस करें तो हमें एले ओलंपिक से कोटा भी मिल जाए, तो काफी बड़ी जिम्मेदारी है जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स है आर्चरी के, क्योंकि 2-3 है, कि वो पूरा टीम को साथ में आगे लेके चले।
1: और सारिका, खेलों के विकास के लिए नए भारत में जिस तरह से खेल मंत्रालय, साई और तमाम खेल संघ काम कर रहे हैं, उससे खिलाड़ियों के लिए कितना माहौल बेहतर हुआ है?
2: खिलाड़ियों के लिए माहौल काफ़ी बेहतर हुआ है, काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं एंड स्कीम्स वगैरह बहुत अच्छी अच्छी निकाली गई हैं। जैसे अगर हम खेलो इंडिया स्कीम की बात करें तो उससे बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है, टॉप स्कीम है उससे बेनिफिट मिल रहा है, ना सिर्फ गवर्नमेंट बट प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी आ रहे हैं, तो काफी सारे स्पॉन्सर्स आ रहे हैं बच्चों को जो है, स्पोर्ट्स पर्सन को जो है वो बहुत फायदा मिल रहा है, एंड जो कैंप वगैरह लग रहे हैं हमारे, तो उससे बहुत बेनिफिट हो रहा है।

0: हर तरह से रिकवरी, ट्रेनिंग, डाइट सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और गवर्नमेंट की फैसिलिटीज भी बहुत अच्छे से हमें काम आ रही हैं।
1: और अभिषेक, बॉक्सिंग का जब भी नाम आता है तो पदकों की हमारी आस बढ़ जाती है। इस बार बॉक्सिंग दल में पुरुष वर्ग में जादूमणि सिंह 55 किलोग्राम, सचिन सिवाच 60 किलोग्राम, सुमित कुंडू 70 किलोग्राम, अंकुश 80 किलोग्राम, कपिल पोखरिया 90 किलोग्राम, नरेंद्र बेरवाल 90 से अधिक किलोग्राम भार वर्ग में भारत की चुनौती पेश करेंगे। महिला वर्ग में साक्षी चौधरी 51 किलोग्राम, प्रीति पवार 54 किलोग्राम, प्रिया गंगा 60 किलोग्राम, परवीन हुडा 65 किलोग्राम और लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम वर्ग में देश की झंडा बरदार होंगी। इन नामों को सुनकर बेहद दमदार दावा नजर आ रहा है, आप क्या मानते हैं?
2: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि इन बॉक्सिंग टीम की हमारी परफॉर्मेंस कॉमनवेल्थ गेम्स में काफ़ी अच्छी रही है, खास करके महिला टीम की जो 5 गोल्ड मेडल वहाँ पे जीता। लेकिन एशियन गेम्स बिल्कुल ही डिफरेंट चैलेंज होगा, एशियन गेम्स में कंपटीशन और भी ज़्यादा होने वाला है। अब पर हमारे एक एक्सपीरियंस प्लेयर्स है जैसे लवलीना बोरगोहेन, ओलंपिक मेडलिस्ट है, 75 किलो कैटेगरी में खेल रही है, लास्ट टाइम उन्होंने इसी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था, तो उनसे उम्मीद काफ़ी होगी। प्रीति पवार का मैं नाम लेना चाहूँगा, 54 kg में वो काफ़ी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है। एशियन चैम्पियनशिप में अभी वो गोल्ड मेडल जीती है इस साल, तो ये सारा परफॉर्मेंसेस वहाँ पे जाके एशियन गेम्स में एक और बड़े मंच में देना, ये हमारी तैयारी दिखाएगी कि हम लोग कितना परफॉर्म कर सकते हैं वहाँ पे। और वैसे ही प्रिया घनगस है, ये नए टैलेंट है, लेकिन इन्होंने भी एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, तो हमारी महिला टीम काफ़ी अच्छा करते हुए एशियन गेम्स तक अभी तक कर रही है, उम्मीद है इनसे काफ़ी अच्छा उम्मीद रहेगा। मेंस टीम नई टीम है, थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है, पर जादूमणि सिंह है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सचिन सिवाच एक्सपीरियंस्ड है उनके पास अगेन, और नरेंद्र बेरवाल लास्ट टाइम इन्होंने मेडल जीता था। उम्मीद हमारी रहेगी कि हालांकि कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है बॉक्सिंग में, कि वो लास्ट टाइम का जो हमारा आंकड़ा था 4 मेडल का उससे आगे जा सके।
1: हांगझो में मुक्केबाजी में हमने लवलीना बोरगोहेन के 1 रजत समेत 5 पदक जीते थे। इनमें से 4 मेडल महिला मुक्केबाजों के नाम थे। अभिषेक, वैसे तो दोनों वर्गों में पंच के एक से एक उस्ताद नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या मेरी तरह आपको भी लग रहा है कि महिला वर्ग में पदकों की हमारी ज्यादा तगड़ी और दमदार चुनौती है?
2: बिल्कुल, इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, वर्ल्ड कप्स जितने हो, उसमें हमारी जो वुमेन बॉक्सर्स हैं उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा आ रहा है, और बहुत कंसिस्टेंटली से ये परफॉर्मेंस आ रहा है। सारे टॉप बॉक्सर्स को आप अगर देखें, चाहे वो चाइना की हो, कजाकिस्तान हो, उज़बेकिस्तान हो, इनको हरा रहे हैं हम लोग। प्रीति पवार ने भी इनको हराया है एशियन चैंपियनशिप का, जब गोल्ड मेडल जीता, और जब एशियन टाइटल जीत के अगर आप जब एशियन गेम्स में जाते हो तो कॉन्फिडेंस ही कुछ अलग होता है कि मैं ये इस लेवल पे जीत चुकी हूँ तो यहाँ पे भी वही कर सकते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस रहेगा इनका कि एशियन चैंपियनशिप में हमारी टीम, महिला टीम ने काफ़ी अच्छा किया है और एशियन गेम्स में जाके हमें रिपीट करना है वो परफॉर्मेंस।
1: सारिका, एशियन गेम्स से ठीक पहले भारतीय कुश्ती दल को तगड़ा झटका लगा। 3 भारतीय पुरुष पहलवान डोपिंग के चलते एशियन गेम्स में उतरने से पहले ही बाहर हो गए। इसका कितना मनोवैज्ञानिक असर बाकी के पहलवानों पर पड़ सकता है?
0: इसका काफी असर पड़ेगा रेसलिंग पे, खास करके प्लेयर्स पे। जैसे एक बहुत अच्छी टीम हमारी तैयार हो गई थी और जो भी प्लेयर्स हमारे डोपिंग में फंसे हैं उनसे पूरी दावेदारी थी मेडल की। आप मुकुल दहिया को लगा सकते हैं, एशियन चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट हैं और उनको एक बहुत स्ट्रांग कंटेंडर हम मान सकते थे। 86 kg में पूरे भारत को उनसे उम्मीदें थी। दीपांशु 130 किलोग्राम भार वर्ग में जो कि खेलने वाले थे ग्रीको रोमन में, उन पे भी डोपिंग का बैन है। और दीपक ग्रीको रोमन के ही पहलवान हैं, उन पे भी बैन लगा है। तो एक बहुत बड़ा झटका भारतीय कुश्ती के लिए ये है। तो अभी उनका नाम तो रिप्लेस नहीं हो सकता क्योंकि टाइमलाइन जो होती है एशियन गेम्स में जाने की, एंट्रीज भेजने की, वो बंद हो चुकी है। लेकिन जो हमारी टीम अभी बाकी बची है, हमें उनसे पूरी उम्मीदें हैं कि वो इन सारे मेडल्स को कवर करें।
1: जी, और अभिषेक, अब बात स्क्वाश की, टीम की बात करें तो एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में सूरज कुमार चंद पुरुष टीम और मिक्स डबल्स, वीर चोटरानी मेंस सिंगल्स और मेंस टीम, वेलावन सेंथिल कुमार मिक्स डबल्स मेंस टीम, अभय सिंह मेंस सिंगल्स और मेंस टीम में शामिल है। महिला वर्ग में युवा अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा के अनुभव के साथ साथ तन्वी खन्ना और शमीना रियाज की भी चुनौती होगी। इस गेम में हमारे खिलाड़ियों ने एशिया में अपनी दमदार चुनौती पेश की है, तो अनुभव और युवा जोश वाली ये टीम कितना कमाल कर सकती है?
2: बहुत कमाल कर सकती है, और मैं इसलिए भी ये बोल रहा हूँ क्योंकि अगर अनाहत को देखे तो उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस साल वर्ल्ड जूनियर।

0: टाइटल जीती है अनाहत, और उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। और लाइक आर्चरी, स्क्वाश भी एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें एले ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन स्पॉट भी होगा, तो वो उसके लिए भी हम लोग फाइट करेंगे। हमारी मेंस टीम लास्ट टाइम गोल्ड जीती थी और वही टीम इस बार भी उतरी है, तो वो एक्सपीरियंस भी है, तो उनसे भी हमें काफ़ी उम्मीद रहेगी कि वो फिर से गोल्ड लेके आए। तो ओवरऑल स्क्वाश में मुझे लगता है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। जोशना चिनप्पा जो कि बहुत ही एक सीजन प्लेयर है और इस लेवल पे काफ़ी मेडल्स हमें दे चुकी है, वो भी मिक्स टीम में है, तो उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा स्क्वाश से भी।
1: 2023 की बात करें तो भारत ने स्क्वाश में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते थे। उस टीम के कई खिलाड़ी इस बार शामिल नहीं हैं। दूसरी तरफ अनाहत सिंह जैसी युवा प्रतिभा की अगुवाई में क्या भारत अपने मेडल्स के पिछले आंकड़े को पार करता दिखाई दे रहा है?
0: कंपटीशन काफ़ी टफ है स्क्वाश में, मलेशिया होगा, बाकी टीमें और भी होंगी, तो ये देखना पड़ेगा कितना हम लोग चैलेंज कर सकते हैं टॉप कॉम्पिटिटर्स को। बट इस लेवल पे जब आप खेलते हैं तो आपके अंदर एक मोटिवेशन अलग होता है कि आप टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एशियन गेम्स में, तो आपको परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा हो जाता है। तो ये देखते हुए मुझे लगता है काफ़ी अच्छा टीम परफॉर्म करेगी, और अनाहत के ऊपर तो काफ़ी फोकस रहेगा कि वो कैसा करती है। अगर वो एक सिंगल्स यहाँ से बर्थ निकाल सकती है ले ओलंपिक्स के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए।
1: सारिका, दबाव की परिस्थितियों में एक पहलवान के लिए अपने जज्बातों पर काबू बनाए रखना कितना जरूरी होता है, और जब आप मुकाबले में पिछड़ रही हो तब स्टैंड में लहराता एक तिरंगा और समर्थकों का एक जोश, जो आवाज उठती है स्टैंड से, वो आपके अंदर कितनी स्फूर्ति भरती है?
2: खिलाड़ियों के लिए दबाव की स्थिति में अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो दबाव में आके पिछड़ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कि मैं तो हार रहा हूँ। लेकिन तब आपको पीछे से शोर सुनाई देता है, चीयर सुनाई देता है, इंडिया इंडिया, तो वो आपके अंदर एक जोश लाता है कि नहीं, मुझे करना है, ना सिर्फ अपने लिए, अपने देश के लिए करना है। और तब आप वो इंडिया का कॉस्ट्यूम पहनकर मैट पे जाते हो या अपने रिंग में जाते हो। हर स्पोर्ट्स के इस पर्सन की फीलिंग सेम होती है, तो वो अपने लिए नहीं कॉम्पीट करता, वो अपने देश के लिए कॉम्पीट करता है। उसको ये होता है कि मेडल मेरा नहीं है, मेरा देश का है और मुझे अपने देश के लिए मेडल लाना है।
1: बिल्कुल
2: तो प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा मैं ये मानती हूँ कि जो अपने माइंड को कंट्रोल करता है, जो अपना माइंड सेट स्ट्रांग रखता है, वो हर एक सिचुएशन को टैकल कर सकता है, हर एक सिचुएशन में जीत सकता है। और रेसलिंग स्पोर्ट्स की मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो हमारे में ऐसा होता है कि लास्ट के 10 सेकंड में भी आप अगर स्कोर ले रहे हो तो आप जीत सकते हो। आपके पास ऑप्शन बचा होता है कि आप अटैक करके स्कोर ले सकते हो, और तब आपको पीछे से चीयर सुनाई देता है तो बहुत आपका मनोबल बढ़ाता है, बहुत आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि मेरे साथ इतने लोग खड़े हैं, मैं अकेला नहीं हूँ।
1: जी, और आपने एशियन गेम्स में भारतीय कुश्ती दल की तो तमाम बातें कर ली, अब आपने भी देश के लिए कई प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीतकर तिरंगे का मान बढ़ाया है। आपने आगे अपने करियर के लिए क्या लक्ष्य तय कर रखा है?
2: हर खिलाड़ी की तरह मेरा भी यही सपना है कि ओलंपिक्स में जाना है, देश को रिप्रेजेंट करना है और देश के लिए मेडल लेकर आना है। तो मेन फोकस तो एले ओलंपिक्स का ही रहेगा। मैं भी यही चाहूँगी कि मैं एले ओलंपिक्स में जाऊँ और अपने देश का मान सम्मान बढ़ाऊँ, गौरव बढ़ाऊँ और वहाँ से मेडल लेकर आऊँ।
1: और अभिषेक, चलते चलते एक सवाल कि क्या भारतीय दल आपको पदकों के मामले में पिछली बार से आगे निकलता दिखाई दे रहा है?
0: बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हमारी प्रिपरेशन हुई है, आई थिंक काफ़ी सब कुछ हम लोगों ने कवर किया है। हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया कि जिस तरह वहाँ पे हमें एकोमोडेशन मिलेगा क्रूज शिप में, कंटेनर्स में, हम लोगों ने हमारे साई सेंटर्स में, पटियाला में, बेंगलोर में एथलीट्स को उसी तरह का एकोमोडेशन दिया ताकि वो एक्रोमेटाइज कर जाए। बाहर हम लोग एथलीट्स को काफ़ी भेजा गया है इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए, जैसे कि सारिका ने बताया, फॉरेन कोचेस काफ़ी आए हैं, तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन हुआ है। तो ऐसा जब प्रिपरेशन होता है तो एथलीट के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये प्रिपरेशन तैयारी हम लोग करके जा रहे हैं, तो कुछ हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, अब सिर्फ वहां पे स्टेज में जाके हमें परफॉर्म करना है, मेडल जीतना है।
1: साथियों, एशियन गेम्स का मंच तैयार है। हमारे खिलाड़ी भी हर चुनौती को तोड़कर पोडियम तक पहुंचने की जोरदार तैयारी में हैं। उम्मीद है कि आईची नागोया में होंगझोंग में जीते पदकों का न सिर्फ आंकड़ा बढ़ेगा बल्कि मेडल का रंग भी और सुनहरा होगा। सारिका मलिक, आपको उज्जवल भविष्य की दुआ के साथ साथ स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद।
2: थैंक यू सर।
1: और अभिषेक रॉय, आकाशवाणी को समय देने के लिए आपका भी धन्यवाद।
0: थैंक यू।

0: अभी आप सुन रहे थे एशियन गेम्स 2026 पर आधारित विशेष कार्यक्रम चीयर फॉर भारत।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप से अपने स्मार्टफोन पे और डीटीएच पर आप हमारा ये प्रसारण सुन रहे हैं।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि के 8:30 हो गए हैं। अब लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सुल्तान फिल्म के इस गीत के साथ, जिसमें आवाज है पेपॉन की।

लाल सिंह चड्ढा। इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की युगल आवाजों में। आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का आखिरी गीत अब आपको सुनवाते हैं। सैयारा फिल्म से विशाल मिश्रा और हंसिका पारेख की आवाजों में।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह करने को मंजूरी दी। इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ की एक विशेष एनआईए अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई और दिग्गज कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे के मामले में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
2: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब

0: 51 लाख एम्प्लॉइज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
1: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा।
2: वेतन की सीमा बढ़ाने का फैसला देश में सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल अगर कोई नया कर्मचारी हर महीने 15,000 रुपए से अधिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है तो वह अपने आप कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के दायरे में नहीं आता था। वहीं अब वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने से अब बड़ी संख्या में कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था से जुड़ सकेंगे। इससे अस्थायी और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को भविष्य निधि में बचत, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन और बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते माध्यमों से निर्यात को सुगम बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार ये कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इससे पहले आज न्यूजीलैंड की संसद में भारत के साथ समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक विधेयक पारित किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान भाजपा द्वारा देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपना 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
4: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
1: जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत।

0: श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं।
1: आज देश के 5.25 लाख से अधिक गांव ODF प्लस मॉडल घोषित हो चुके हैं। साथ ही वर्ष 2014 से अब तक 12.22 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण हो चुका है। यह स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव को दर्शाता है। स्वच्छता इस सेवा 2025 में 18 करोड़ से अधिक नागरिकों ने भाग लिया, जिनमें से लगभग 14 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में से हैं। यह दिखाता है कि देश में स्वच्छता के प्रति जन भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है।
0: इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा के लिए एक आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक अनिवार्यता है।
2: दुनिया भर में लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं। अनुमान है कि साल 2040 तक बिकने वाली हर 10 नई कारों में से 4 कारें इलेक्ट्रिक होंगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हमारे देश के लोगों की नौकरियां बची रहें और ऑटोमोबाइल सेक्टर तरक्की करता रहे, तो हमारे ऑटोमोबाइल उद्योग को भी इन वैश्विक रुझानों के साथ बदलना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की जगदलपुर स्थित विशेष अदालत ने झीरम घाटी कांड के सभी 10 दोषियों को आज फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झीरम घाटी में माओवादियों के हमले में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी और 35 अन्य घायल हुए थे। NIA ने इस मामले में 11 माओवादियों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि ये पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: प्रेम प्रसंग हो या कॉमेडी या फिर सीरियस पात्र, अभिनेता अनंत नाग का सरल अभिनय पर प्रेक्षकों द्वारा प्रशंसा प्राप्त हुई है। मिंचिना ओटा, हमसे गीते, अंकुर, मंथन, मालगुडी डेज, गणेशन मधुवे, गौरी गणेशा और 250 से ज्यादा फिल्मों में उनका पात्र अभिनय ने अपनी अनोखी छाप छोड़ी है। अभिनेता ने 5 दशक के अपने फिल्म जगत के सफर में कई फिल्म इंडस्ट्री में अपना योगदान दिया है, जिसके लिए उनको आज ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सहज अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से कई दशकों से भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि ये पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए पुनर्गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि पुनर्गठित बोर्ड में विनोद अनुपम, मनोज जोशी, हंसराज हंस, प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी, रिकी केज, सुनील शेट्टी, रूपा गांगुली और प्रियदर्शन सहित 18 सदस्य शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव

ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। श्री शेखावत ने लोगों से ई नीलामी में शामिल होने का आग्रह किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह करने को मंजूरी दी। इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की। छत्तीसगढ़ की एक विशेष एनआईए अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। सभी सुनने वालों को प्रीति शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम आशा भोसले की आवाज के साथ। फिल्म का नाम है तवायफ, गीत हसन कमाल का है, संगीत रवि का।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में प्यार झुकता नहीं फिल्म का गाना, गीत SH बिहारी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कार्यक्रम का अगला गाना भूपेंद्र हजारिका की आवाज में है। फिल्म का नाम है रुदाली, गीत गुलजार का है, संगीत भूपेंद्र हजारिका का।

0: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में प्रेम कहानी फिल्म का गाना, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।
1: शर्म आती है मुझको

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: यह है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, गाते गाते आप इस दीवार से जाते हैं, जंप कर जाते हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

संगीतकार राम लक्ष्मण का असली नाम है विजय पाटिल। संगीत का शौक बचपन से ही था और वो पहले कॉलेज के जमाने में नागपुर में और फिर मुंबई में स्टेज प्रोग्राम्स दिया करते थे और उसमें बजाया करते थे। विजय पाटिल अकॉर्डियन बहुत अच्छा बजाते थे। फिर उन्होंने मुंबई में अपना एक दल बनाया और अपनी बनाई तर्जों को ही स्टेज पर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक कार्यक्रम में दर्शक थे दादा कोंड के। वो इनसे इतना प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म पांडु हवलदार का संगीत उन्हें सौंप डाला। उन्होंने ही विजय पाटिल का नाम भी बदला। वास्तव में राम और लक्ष्मण दो व्यक्ति थे, पर उनमें से एक साथ ही राम की मृत्यु हो गई, लेकिन नाम दोनों का ही चलता रहा, यानी राम लक्ष्मण के नाम से ही संगीत चलता रहा।

0: कैसी तबीयत है जनाब की?
1: संगीतकार राम लक्ष्मण का मानना था कि लोकप्रियता उसी गीत की होती है जिसे हर आम आदमी गुनगुना पाए। अपने संगीत में इस तत्व का उन्होंने हमेशा ही ख्याल रखा। राम लक्ष्मण की पहली सुपरहिट फिल्म रही राजश्री प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत तराना। ये आई थी 1979 में। इस फिल्म के लगभग सभी गाने बहुत ही मशहूर हुए और लोगों ने इस संगीत को बहुत बहुत पसंद किया।

संगीतकार राम लक्ष्मण ने अपने सुरीले रस भरे गीतों से ऐसी ही संगीत वर्षा की। हम आपको बता दें कि गीतकार असद भोपाली के साथ राम लक्ष्मण ने ढेर सारी रचनाएं तैयार की, लेकिन उनमें से अधिकांश तो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकी। राजश्री और दादा कोंडके के अलावा प्राण लाल मेहता और दीपक बहरी ने भी अपनी फिल्मों के लिए राम लक्ष्मण के संगीत को अक्सर चुना, इसलिए राम लक्ष्मण को मौकों की कमी कभी भी नहीं रही। अगर बात करें 80s की, तो बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में आई जिसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक उस समय बहुत बहुत सुना गया और सुनने वालों ने, दर्शकों ने बहुत बहुत सराहा। कुछ फिल्मों के नाम याद कर लें, जैसे उस्तादी उस्ताद से, इस फिल्म के सभी गाने बहुत अच्छे थे, और आंगन में तुलसी एक फिल्म थी, उसके गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए, और राजश्री प्रोडक्शन की सुन सजना और सुन मेरी लैला के गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए। और सबसे ज्यादा 80 के दशक में राम लक्ष्मण का जो गीत प्रचलित हुआ, सुना गया, सराहा गया और आज भी उसी चाव से सुना जाता है, वो है हमसे बढ़कर कौन फिल्म का। ये फिल्म आई थी 1981 में और ये गाना बहुत बहुत सुना गया और पसंद किया गया।

मराठी फिल्म पांडु हवलदार या माला घिउन ज्याला की अपार लोकप्रियता से प्रेरित होकर 1989 में राम लक्ष्मण ने मीनल राव के साथ स्वयं गाकर मराठी हिस्का नाम से एक मराठी पॉप एल्बम भी निकाला था। वैसे राम लक्ष्मण अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। हिंदी फिल्मों में असफल दौर भी उन्होंने देखा, पर राजश्री ने उनका साथ नहीं छोड़ा और 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया इसने तो लोकप्रियता के कीर्तिमान स्थापित किए और संगीत तो लाजवाब था। राग पहाड़ी और शिवरंजनी की लोक धुनों का इस फिल्म में राम लक्ष्मण ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आधुनिक रिद्म के साथ पहाड़ी के लोक सुरों से सम्मिश्रण से सृजित दिल दीवाना बिन सजना के मानिना गाना बहुत बहुत पसंद किया गया और मैंने प्यार किया की अभूतपूर्व सफलता ने राम लक्ष्मण को वर्षों बाद फिर से एक बार लोकप्रियता का स्वाद चखाया।

राम लक्ष्मण के संगीत में एक अपनापन, एक घरेलूपन सा होता था जिसे सुनने वाले बहुत बहुत पसंद करते थे। हम आपके हैं कौन उनकी ऐसी ही फिल्म थी जिसका एक एक गीत बहुत ही मशहूर हुआ। वैसे उनकी फिल्म सातवां आसमान भी एक उल्लेखनीय फिल्म है जिसके गाने बहुत सुने गए।

संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीत से सजी बहुत सारी फिल्में हैं। इस कम समय में उनकी सारी फिल्मों के गानों की हम एक एक लाइन भी नहीं सुनवा सकते हैं, पर फिर भी हमने कुछ कोशिश की।

0: कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
1: 47 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन AIR ऐप से आप अपने स्मार्टफोन और DTH पर हमारा ये प्रसारण सुन रहे हैं।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि के 10 बज गए हैं, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं कुछ चुनिंदा पुराने फिल्मी गीतों को। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म ब्रह्मचर्य।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना फिल्म ब्रह्मचारी से मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की युगल आवाज़ों में। आगे बढ़ते हैं और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म दिल देके देखो से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे कार्यक्रम का ये गीत ज्वेल थीफ फिल्म से। आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं चलती का नाम फिल्म से कार्यक्रम का अगला गीत। और आपको बता दें कि आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में जंगली फिल्म से कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं और अब कार्यक्रम का जो अगला गीत हमने लिया है वो है फिल्म तुम सा नहीं देखा से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये गीत, आवाज़ वही खूबसूरत सी खनकती सी मोहम्मद रफ़ी की।

कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सुन रहे थे तीसरी मंजिल फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 10:30 हो गए हैं। ये समय है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का। आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं अंकित सिंह का ख्याल गायन। राग आपको बता दें, राग है बिहाग।

अभी आप सुन रहे थे अंकित सिंह का ख्याल गायन। राग था बिहाग। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि कल रात 8 बजे विशेष कार्यक्रम चीयर फॉर भारत आप सुन सकेंगे। इसका प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा। उर्दू कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर समाप्त फरमाइएगा सेहतनामा। नामानिगार होंगे डॉक्टर इम्तियाज अहमद। जिले की हलचल का समय होगा सुबह 9:50। साप्ताहिक कार्यक्रम खेल जगत हम लेकर हाजिर होंगे कल शाम 7:31 पर।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में आप समाचार सुन सकते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा प्रौद्योगिकी अपनाने और

0: कलेक्टर गोल में इस बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर पर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमीकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने को वेतन सीमा 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रतिमाह कर दी है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रूपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रूपये पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाले डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब में मक्का के नजदीक ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत सऊदी अरब पर हमले में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1,40,00,000,000 भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इस समझौते से न्यूजीलैंड से भारत को होने वाले 57% निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके पूरी तरह से लागू होने के बाद 95% निर्यात पर शुल्क हटा दिए जाएंगे या काफी कम हो जाएंगे। सभी भारतीय वस्तुओं को न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि यह पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सहज अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से कई दशकों से भारतीय सिनेमा और खासकर कन्नड़ सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि यह पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of close collaboration between the government and the semiconductor industry in shaping India's technology future. Mr. Modi stated this while chairing the Semiconductor Roundtable with leading global CEOs in New Delhi today. Prime Minister called for greater industry participation in skilling, innovation and